हम पर मैं हूँ आपका साथी, अभी आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM साथ में रोवा पर। और आपको बता दें कि आज का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत है। जब मैं आ रहा था स्टूडियोज़ की ओर, और ऐसे में मेट सर्विसेज ने फोरकास्ट किया है आज का सनसेट रहेगा 5:18 PM पर, और जो मिनिमम ओवरनाइट टेम्परेचर्स 9 डिग्री तक रहेंगे, सिंगल डिजिट तक हो सकता है। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। पार्टली क्लाउडी भी हो सकते हैं कुछ एरियाज में, और ओट शावर्स नॉर्थ ऑफ फंग परोवा, ये सभी कुछ बताया जाता है। अगर जो नेशनली देखें तो यहाँ पर नॉर्थ आइलैंड साथ में साउथ आइलैंड के लिए हैमिल्टन में आज फोरकास्ट किया गया है कि दिन भर सनशाइन रहेगा, और इसके साथ में बाकी सारी एरियाज में मिक्स्ड वेदर कंडीशंस जैसे दिखा रहे हैं। गिस्बन में थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग दिखा रहा है, और इसके साथ में साउथ आइलैंड की ओर देखें तो इट विल बी अ डे ऑफ, यानी कि थोड़ी धूप, थोड़ी छाँव, थोड़े बादल भी गिरे रहेंगे ऑल ओवर साउथ आइलैंड। तो अगर जो आप भी कुछ प्लान करना चाहते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, तो आपको बता दें कि ओकलैंड में और साथ में तोरंगा और रोतरुआ में मिक्स्ड वेदर जैसा दिन रहेगा, थोड़ी बादल भी गिरे रहेंगे, काले काले बादल भी छाए रहेंगे, साथ में इन बिटवीन आपको सनशाइन की ग्लिम्स भी मिलती रहेगी।

हम पर आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कल जबकि ओकलैंड एफसी ने कमाल ही कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जबकि कल उनकी जीत हुई है ओकलैंड एफसी की जो फाइनल की खेल थी इसमें, और सिडनी एफसी को 1-0 से हरा कर ये जो ट्रॉफी है इस साल का उन्होंने अपने नाम कर दिया है। तो इसी जीत की खुशी में एक विनिंग परेड है आज जिसकी आयोजन की गई है, और यहाँ सिटी में सीबीडी में इनका जो परेड है ये रहेगा, और यहाँ पर फैंस को इनकरेज किया जा रहा है कि वो आकर इस परेड का हिस्सा बने, जो कि कुछ पिछले आधे घंटे पहले ये शुरू हुई है। और जो बस हुआ है यहाँ पर जो खिलाड़ी है बस में सवार होकर क्वीन स्ट्रीट में परेड करेंगे, इसके साथ में जो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन है ताकुताई स्क्वेयर में ब्रिटोमार्ट में रहेगी। तो ये सभी कुछ एक हाइप ऑफ फेस्टिविटीज़ यहाँ ओकलैंड सीबीडी में है। अगर जो आप भी आसपास है तो इस माहौल में आप भी आकर शामिल हो सकते हैं, यू कैन विटनेस दी हाइप, और यहाँ पर ओकलैंड एफसी के जो खिलाड़ी है प्लेयर्स हैं इनसे आप मुलाकात भी कर सकते हैं। हु नोज, शायद गिव अवेज में आपको जेसी वगैरह भी मिल जाए, ये सभी कुछ हो सकता है। लेकिन इसी को लेकर हमने बातें की हैं ओकलैंड एफसी के फुटबॉल कोच स्टीव कुरिका के साथ में, जिसका जो इंटरव्यू है हमने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप जाकर ज़रूर चेकआउट करना।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: जी हाँ हम पर आप सुन रहे मुझको मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपको बता दूं कि एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर हमने आपके लिए टिप्स रखे हुए हैं जहां पर व्हाइट हाउस पर आसपास एक शूटिंग हुई है एक इंसिडेंट हुई है जबकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट मौजूद थे और जो डेवलपिंग स्टोरी है इस पर टिप्स रखते हुए आपको ये बता दें कि टू पीपल हैव बीन क्रिटिकली इंजर्ड इस पर और भी जो जानकारी है ये आपके लिए अगले समाचार पर रहेगी जो स्केड्यूल है बिल्कुल दो के लिए तो इन बिटवीन आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे अभी का साथ है यह जस्ट चिल।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार, क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
1: Rebel Sport is everything you need to gear up for the winter season. Save on the essentials with deals on mouthguards, football and rugby boots, hockey shoes, training clothing and so much more. These deals on now only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply.

0: Just Chill.
1: जस्ट चिल लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में शामिल हो गया हूं और ये है पहला घंटे का जो सफर है ये तय हो चुका है, जबकि हमारे स्टूडियोज में एक बज चुके हैं। दो पर आपके लिए रहेगा एपिक बॉलीवुड चैलेंज, इसका भी आप बिल्कुल लुक फॉरवर्ड करते रहिएगा। और इस आवर की शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ में, आपके पास में जो थोड़ा भी है उससे खुश रहिए, जो कुछ थोड़ा भी है उससे आप खुश रहिए, क्योंकि अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं।

हम पर जश्न का समय है, मैं हूँ अभी आपके साथ में। जी हाँ, मस्त मलंग झूम। जबकि संडे काफ़ी दिन लोगों के लिए रिलैक्स करने का दिन होता है या फिर घर के कुछ छोटे मोटे कामकाज होते हैं जिसमें आप बिजी रहते हैं और हम के साथ में आप जुड़े रहते हैं, तो आप सभी को याद करते हैं। और जो न्यूज़ हमने आपको बताई थी जहाँ पर व्हाइट हाउस के आसपास कुछ फायरिंग के जो अपडेट्स है ये आ रहे थे, जहाँ पर गोलीबारी हुई और इस पर जो लेटेस्ट अपडेट है, जो सस्पेक्ट था उसे शूट कर दिया गया है। और जो यूएस सीक्रेट सर्विस है, अभी एक स्टेटमेंट थोड़ी ही देर पहले इन्होंने निकाला है कि जहाँ पर एक पेशेंट ने चेक पॉइंट को अप्रोच किया था और वहाँ से पहुँचने पर उन्होंने अपने बैग से एक वेपन निकाल कर और पोस्टेड ऑफिसर्स जो थे इन पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद में ऑफिसर्स ने रिटेन फायर किया जो सस्पेक्ट को लगा और उसके बाद में उनको हॉस्पिटल भी ले गया जहां पर उनकी मौत हो गई। तो ये सभी कुछ जो अपडेट है जो व्हाइट हाउस के आसपास जो फायरिंग हो रही थी उसको लेकर आप तक ला रहे थे।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
2: Get it sorted with Cheap As Deals. Save over 30% on a 25-litre number 8 recycled storage bin, now $5. Plus, paint like a pro and earn 10 times air points on Resene paint. Conditions and exclusions apply. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
3: Rebel Sport has everything you need to gear up for the winter season. Save on the essentials with deals on mouthguards, football and rugby boots, hockey shoes, training clothing and so much more. These deals on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Travision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Centre. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Eurotech front loader washing machine and 9kg heat pump dryer set, just $11.99. Eurotech bottom mount fridge freezer, $6.99. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Non-stop Bollywood.
8: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
7: हम playing Bollywood's biggest hits.
9: Just chill.
10: Riding the airwaves of Hum, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि मई का महीना है तो it is NZ Music Month. और ऐसे में इस महीने हमारे जितने local talent है, जितने भी talented artist है, इनको हम support कर रहे हैं with Back Your Backyard Beats. और यहाँ पर weekdays में हम पर आपके लिए जो local artist है, local talent से इनके गाने को हम बजाते हैं 8 बजे सुबह, 11 बजे दिन में, 2 बजे शाम को, 5 बजे शाम को, फिर 10 बजे रात को, जहां पर आप इनको सुनकर इनके लिए वोट कर सकते हैं. इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत है. तो अगर जो कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसे आप सुनना पसंद करते हैं हमारे चयन किए लोकल टैलेंट्स को, तो इनमें से जिसको भी आप पसंद करते हैं उनका नाम MM के साथ में लिखकर, जी हाँ, कीवर्ड MM है, तो MM के साथ में लिखकर 5599 पर आप टेक्स्ट करें. और इसके साथ में हमारे सोशल मीडिया पर भी आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं. ये सभी कुछ है NZ Music Month के अंतर्गत, और जो आपके वोट्स पर निर्धारित, बेस्ड ऑन योर वोट्स, टॉप 3 आर्टिस्ट का सिलेक्शन किया जाएगा. ये सभी कुछ आपके पास में करने का मौका है, जहां पर आपके चॉइसेस पर जो टॉप 3 लिस्ट है इसको तैयार किया जाएगा.

Just chill.

0: कोई ब्रांच नहीं है।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
3: With at least 40% off the entire store and a huge half price off all Manchester, go big at Briscoe's this weekend. Hurry, at least 40% off the entire store won't last. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's अप्लाई।
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
6: अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.

0: Just chill.
1: जो अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, हमने लिया है आपके लिए बैंड ऑफ बॉयज से, जहां पर आपने करण ओब्रॉय साथ में सुधांशु पांडे, सिद्धार्थ हल्दीपुर जैसे आर्टिस्ट को देखा था। और ये जो बैंड है, जब निकली थी तो काफ़ी पॉपुलर हुई थी और पहली बार एक्टिव थे 2001 से लेकर 2006 तक। और फिर उसके बाद में इनका जो दूसरा स्टिंट है 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसी एल्बम से, उसी बैंड से हमने अगला जो गाना है आपके लिए चुना है।

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में और समय की ओर देखते हैं तो 2:01 हो चुका है और ऐसे में अब समय हुआ कि आपके साथ में खेले एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ पर हर वीक कोई ना कोई नया गाना आपके लिए हम ढूंढ कर लेकर आते हैं जिसके बारे में आपसे बातें करते हैं। और लास्ट वीक गौरव ने पहचाना था राजा हिंदुस्तानी से परदेसी गाने को और उसी के साथ में वो एक विनर ठहरे थे। इस वीक एक नया चैलेंज है, नई वीक नया चैलेंज आपके लिए, एक नया गाना है और इसके बारे में आपको बताएंगे। और आपको सिर्फ ये करना है, आप जिस क्लूज को आप सुनेंगे उस क्लूज पर बेस आपको गाने को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ में आपको सबसे पहले मैसेज करना है 5599 पर बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेंडिंग अस द सॉन्ग, और उसके साथ में अपने नाम को भी ज़रूर भेजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्लूज बताना शुरू करेंगे तो समय उतना ही रहेगा जैसे ही हम क्लूज बताना शुरू करेंगे। एंड बिफोर प्लेइंग द सॉन्ग, इन बिटवीन जो समय है आपके पास में उतना ही टाइम है आपको अपने जवाब हमारे पास में भेजने होंगे। एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग इस वीक भी है इसके लिए, तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, 5599 पर आपको आइडेंटिफाई करके अपने जवाब भेजने हैं। 2015 में आई ये फिल्म एक अजीब तरीके से शुरू होती है। एक फैमिली पेट है जिसका नाम है प्लूटो मेहरा और प्लूटो मेहरा की नज़रिए से फिल्म के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अच्छा, प्लूटो मेहरा को वॉइस ओवर भी नन अदर देन आमिर खान ने किया है। एक फैमिली ड्रामा जिसे मेजोरिटी एक क्रूज लाइनर पर शूट किया गया। कास्ट में अनिल कपूर, रणवीर सिंह, फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा जैसे स्टार्स थे। और सपोर्टिंग कास्ट में आप एक फ्रेश यंग वाइब्रंट विक्रांत मेसी को सपोर्ट कर सकते हैं, मनोज पावा, परमीत सेठी और साथ में राहुल बोस जैसे और सारे कैरेक्टर्स भी इसमें हैं। फिल्म को डायरेक्ट जोया अख्तर ने किया है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय एक्सेल एंटरटेनमेंट और फिल्म के डायलॉग्स भी फरहान अख्तर ने लिखे हैं। शायद इससे आपको पता चल गया होगा कि किस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको सिर्फ अब अंदाज़ा लगाना होगा कि किस गाने की आज हम बात कर रहे हैं। इस सॉन्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने जो चूज़ किया है, इट्स एन आउट एंड आउट पार्टी नंबर। इसको पिक्चराइज भी क्रूज लाइनर पर किया गया है जहां मेजॉरिटी ऑफ फिल्म को भी शूट किया गया है। इस गाने को क्या स्पेशल या आइकॉनिक बनाता है कि इट्स अ वन टेक सॉन्ग। जी हां, मतलब जब आप इस गाने को देखेंगे तो इसे एक ही टेक में शूट किया गया है और बीच में कोई भी कट्स या एडिट्स आपको नहीं दिखेगी। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, जबकि इतने सारे एक्टर्स इस गाने में हैं तो सभी को सिंक्रोनाइज करना एक डोंटिंग टास्क है। अगर जो आपको जवाब पता लगता है तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजिएगा। इस गाने को म्यूज़िक से सजाया है शंकर ऐशान लोए ने और कोरियोग्राफ किया है बोस्को सीज़ा ने। ये गाना एक हाई एनर्जी पार्टी वाइब और कुछ पंजाबी तड़का लगाकर प्रेजेंट किया गया है। आफ्टर टेकिंग अस ऑन रोड ट्रिप्स, इस बार मेकर्स हमें क्रूज पर ले गए। इस पर्टिकुलर गाने के पीछे की आइडिया ये थी कि इट शुड लुक एंड फील लाइक एज इफ इट वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ होम वीडियो। तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि ये विदाउट कट्स शूट किया जाएगा और चैलेंजेस वाल शूटिंग दिस सॉन्ग ये था कि इस गाने को देखकर लगना चाहिए कि अर्ली इवनिंग का बैकड्रॉप है। इसको अचीव करने के लिए डोन और डस्क में 45 मिनट्स के स्पेस के बीच में शूट किया गया है। सोचिए, हर दिन डोन यानी कि सुबह और शाम को 45 मिनट्स के बीच में ही वन टेक आपको शूट करना है और फिर सारे करेक्टर्स और कैमरा क्रू को कोऑर्डिनेट भी करना है और एवरीवन हैज टू नो कि क्या करना है, सेम पेज पर भी होना चाहिए। इस गाने को शूट करने के लिए कास्ट एंड क्रू ने 6 दिन कड़ी रिहर्सल की और फाइनली जब गाना शूट हुआ 5 मिनट्स के अंदर अंदर इस गाने को रैप अप कर दिया गया। फरहान अख्तर एंड प्रियंका चोपड़ा ने इस गाने को गाया है अमोंग मेनी अदर सिंगर्स और इस सॉन्ग में काफ़ी बढ़ाई भी उनकी हुई जिस तरीके से उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। अपॉन रिलीज अनिल कपूर और शिफाली शाह को परफॉर्मेंस को अडोप भी किया गया और ढेर सारे अवार्ड्स भी दिए गए। इस गाने को लेकर या फिर इस फिल्म के टाइटल को लेकर एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया आपको बता दूं। इस मूवी का टाइटल दिल धड़कने दो को लिया गया है फ्रॉम अ सॉन्ग इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जहां पर इस गाने में एक लाइन आती है दिल धड़कने दो, और जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की टाइटल है वो लिया गया था एक सॉन्ग फ्रॉम रोकोन इन द ईयर 2008। तो इसी तरह से गाने की लाइन को फिल्म का टाइटल की तरह इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको पता चला कि किस गाने की हम बात कर रहे हैं? रिकैप करते हैं, क्रूज लाइनर पर शूट की गई है। आमिर खान प्लेज प्लूटो मेहरा और उनके नज़रिए से पूरी की पूरी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, इस गाने का जिस्ट आपको बता दे, आप फैमिली लेडा में किसी भी स्टेप पर हो, यू कैन ऑलवेज ग्रूव टू दिस सॉन्ग। तो अगर जो आपको जवाब पता लगा है तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजिएगा। और अब समय हुआ कि इस गाने को आपके लिए ओनिया प्ले करें।

हाँ, तो यही गाना था जिसे आपको पहचानना था, और कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहाँ पर ये गाना कुछ देर में शायद ना बजे, क्योंकि लोग इसको बिल्कुल पसंद करते हैं और इस पर फ्रीली जब नाचते हैं तो एक अलग साइट होता है। और एक इंटरव्यू में राहुल बोस ने बताया है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था, ये काफ़ी सीरियस एक्टर थे, कि मैं इस गाने में सीढ़ियों पर से विशल करते हुए स्क्रीन पर दिखूंगा। तो ये सभी कुछ इस गाने में हो रहा था और काफ़ी लोगों ने सही पहचाना, अपना अपना जवाब भेजा है। 5558 आपने सही जवाब हमारे पास में लिख कर भेजा है, थैंक यू सो मच। इसके साथ में काजल, आपका भी मैसेज हमारे पास हमको मिल गया है और आपने भी सही जवाब दिया है। इसके साथ में वी हैव गॉट टू गौरव्स प्लेइंग टुडे। गौरव, आपका भी जवाब हमको मिला है। इसके साथ में फाल्गुनी, आपने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे साथ में रहती है, खेलती रहती है और पार्टिसिपेट करती है। इसके साथ में आराधना, आपका भी जवाब मिल गया है। एश फ्रॉम वेलिंगटन, आशीष आप भी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच दोस्त, आपने भी अपना मैसेज भेजा है। इसके साथ में अमित जैन, आपका भी बिल्कुल मैसेज पहुंचा है, सबसे पहला तो नहीं, सेकंड पर आपका मैसेज आया था। और जो सबसे पहला मैसेज आज हमारे पास में आया है, गौरव नायक, आपका जवाब पहुंचा सबसे पहले, आपने सबसे पहले इस गाने को आइडेंटिफाई किया। जितने लोग ने हमारे साथ में इस गेम को खेला है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगले वीक एक बार फिर आपके लिए कोई एक नया गाना ढूंढ कर लेकर आएंगे और इसी तरह से एपिक बॉलीवुड चैलेंज को आपके साथ में खेलेंगे। इन द मीन टाइम आप सभी के लिए ये गाना इसमें आपको शामिल करते हैं।

0: and butchering.
1: Never buy investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ने चाहिए और यही हमारा आपके लिए एडवाइस रहेगा। और जस्ट चिल में आपको बता दें, कम्युनिटी न्यूज़ में ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है, ये अब की बार फ्राइडे 29 मई को रहेगी। शाम को 7:15 से इसकी शुरुआत होगी। आपको सिर्फ जाना होगा IRST कम्युनिटी हॉल, 53 स्किप्टन स्ट्रीट, मेंगरी पर। याद रहे डेट फ्राइडे 29 मई को टाइम 7:15 PM से जो रामायण संस्था ट्रस्ट की मासिक रामायण कथा है ये रहेगी। आप अगर जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, एक भक्ति रस प्रोग्राम, इसको जाकर आप इसमें भाग भी ले सकते हैं।

संडे 24 मई का ये सफर है, आप सुन रहे हैं जसशील अभी के साथ में। और कल जबकि सुपर रग्बी के कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं जिस पर अपडेट्स हमारे हाथ लगे हैं रिजल्ट्स, और ये जो मैचेस हुए थे मोना पैसिफिका साथ में रेड्स के बीच में, जहां पर एक क्लोज कॉन्टेस्टेड अफेयर ये था। रेड्स ने मोना पैसिफिका को 33-31 से हराया। इसके साथ में हरिकन्स और हाइलैंडर्स के बीच में जो खेल रहा, हरिकन्स केम आउट कन्विंसिंगली ऑन द टॉप 45-28 से इनकी जीत हुई। साथ में फोर्स और फ्यूजन ड्रुआ के बीच में जो कल खेल रहा, इसमें फोर्स की जीत 19-15 से हुई। और जो अगले वीक का जो मैचेस है, ये इस कंपटीशन का फाइनल राउंड ऑफ द मैचेस है। इसमें क्रुसेडर्स और हरिकन्स फ्राइडे को खेलेंगी, साथ में रेड्स और फ्यूजन ड्रुआ फ्राइडे को रात को 9:35 PM पर एक दूसरे का सामना करेगी। इसके साथ में ब्रम्बीज और मोना पैसिफिका सैटरडे 30 मई को 4:35 PM पर फील्ड लेंगी। इसके साथ में चीफ्स और ब्रूस के बीच में रात को उसी दिन रात को 7:05 PM पर जो खेल है ये रहेगा। इसके साथ में फोर्स और वोरोटास के बीच में द फाइनल मैच ऑफ द राउंड ये 9:35 PM पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं मोना पैसिफिका साथ में ड्रुआ के लिए ये कंपटीशन में आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल रहेगा, और जो टॉप फोर है या फिर जो टॉप सिक्स है राधा, इनमें से प्लेऑफ्स तक जो टीमें हैं ये मेक कर सकती हैं।

लाइट वाजिद की आवाज में आप सुन रहे थे मुख्तसर मुलाकात है, और जबकि हमारी और आपकी मुलाकात बिल्कुल मुख्तसर नहीं है, क्योंकि मुख्तसर का मतलब है कि ब्रीफ, और हम तो आपके साथ में 6 तक रहेंगे। अगर जो आपको भी कोई गीत सुनना है जिसे आपने काफ़ी दिनों तक ओने या नहीं सुना है, इसकी जो रिक्वेस्ट है आप हमारे पास में भेज सकते हैं 5599 पर, और आपके डेडिकेशंस को भी शामिल करते चलेंगे। अभी थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि आने वाली फीफा वर्ल्ड कप है जो जून में जिसकी शुरुआत हो रही है, इसके बारे में कुछ चर्चा के साथ में करेंगे। द हिट्स एंड मिसेस, यानी कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने टीम के लिए ये स्कोर में शामिल नहीं हुए हैं, और लोगों का कहना है कि शायद कहीं ना कहीं इनको मौका देना चाहिए था, इस पर भी बातें होंगी आपके साथ में।

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: फ्लाइट सेटर्स बिग रेड सेल हैज लैंडेड विद अप टू 50% ऑफ स्टेज क्रूजेस एंड टूर्स, प्लस sky high savings on flights, holidays and more. Book online or in store today. End 2nd June. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
3: Hot home deals are on now at The Warehouse. With 30% off selected bedding, including all winter underlays and toppers, refresh the kids' rooms with 30% off all children's furniture. Plus, check out more hot deals in store now. Hurry, ends today. Conditions and exclusions apply.
4: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
0: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी good dance नहीं है।
6: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जो वर्ल्ड कप शो का है ये शुरू होने को है जून 12 से, और जो ओपनिंग मैचेस रहेगी इसमें मेक्सिको और साउथ अफ्रीका 12 जून को सुबह न्यूजीलैंड टाइम 7 AM फिर लेगी, और इसी के साथ में कई वीक्स तक ये जो वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है ये जारी रहेगा। इसी समय तीन कंट्रीज इस बार होस्ट कर रही हैं, एक तो कैनेडा है, दूसरी है USA, तीसरी मेक्सिको, जहाँ पर ये गेम्स रहेंगे। और इसी दौरान मैं भी कनाडा में रहूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस टूर्नामेंट में इस गेम्स को मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि टिकट्स आर प्राइस्ड एज हाई एज 500 कैनेडियन डॉलर्स एक स्टैंडर्ड सीट के लिए। और मैंने कोशिश की थी कि न्यूजीलैंड साथ में बेल्जियम के बीच में जो खेल है इसके लिए टिकट लूँ, लेकिन आई एम स्टिल कीपिंग माई ऑप्शन ओपन। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूँ कि जबकि फीफा वर्ल्ड कप ये जारी रहेगी, तो ऐसे में काफ़ी जो टीमें हैं अपने अपने स्क्वाड को अनाउंस कर रही है, और एक टॉकिंग पॉइंट रही है जबकि इंग्लैंड स्क्वाड को अनाउंस किया गया। इस स्क्वाड को अनाउंस करते हुए जो थॉमस टुकल इनके जो मैनेजर है, इनका कहना है कि काफ़ी स्क्वाड में जो प्लेयर्स है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको इनके लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए चुना गया है, और इन नंबर्स में मिस आउट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर हैरी मगवाया ने। और ये जबकि इनका सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है, जबकि इनके लोकल क्लब में जब से इनके नए कोच आए थे तो काफ़ी अच्छा खेल ये दिखा रहे थे, एंड ही वॉज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। लेकिन इनको भी झटका लगा जब इनका नाम अनाउंस नहीं किया गया, जबकि एक प्रोटोकॉल है, जबकि किसी भी स्क्वाड को अनाउंस करने से पहले द मैनेजर्स हैव टू टॉक टू द प्लेयर्स पर्सनली वाया फोन कॉल्स, उनको पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने स्क्वाड मेक किया है या नहीं। तो ऐसा ही थॉमस टुकल ने किया था, इन्होंने कॉल किया हैरी मगवाया को एक दिन पहले अनाउंसमेंट से और उनको बताया है कि आप इस स्क्वाड में अब नहीं नज़र आएंगे। तो इस बात को लेकर हैरी मगवाया वेंट पब्लिक विच इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल किसी तरह से, और इन्होंने अनाउंस किया कि मेरा नाम स्क्वाड में नहीं है। और इस अनाउंसमेंट से काफ़ी पब्लिक वहां पर उनको शोक लगा, झटका लगा, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं हैरी मगवाया शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द स्क्वाड। लेकिन अपने डिसीजन को बचाव करते हुए थॉमस टुकल ने कहा है कि एक ऐसा टीम मैंने चुना है जो काफ़ी हद तक एक टीम की तरह खेल सकती है। तो ये सभी कुछ जो है वर्ल्ड कप के जो सीज़न है जबकि शुरुआत होने वाली है इस टूर्नामेंट की, तो इसमें ये चर्चा बनती रही है, और भी आगे जो डेवलपमेंट रहेंगे इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए फीफा वर्ल्ड कप पर हैरी मगवाया के लिए शायद ये जो ड्रीम है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ अभी 33 ईयर्स के हैं, और आपको अगर जो मालूम होगा कि 33 ऑनवर्ड्स आप अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप में खेलना काफ़ी मुश्किल की बात रहती है, अनलेस यू आर मेसी और क्रिश्चियानो रोनाल्डो।

प्यार किया तो निभाना। हम पर आप सुन रहे थे अरमान मलिक को और उनके साथियों को। और जबकि अगला गाना बजाने से पहले आपको बता दें, एसपी बाला सुब्रमण्यम ये ज़्यादातर के सलमान खान के एली डेज के मूवीज़ के लिए प्लेबैक सिंगिंग करते थे, जबकि इनको पहली बार आपने स्क्रीन पर सलमान के लिए गाया था मैंने प्यार किया में। और फिर उसके बाद में एक ट्रेंड सा चल चुका था कि अगर जो सलमान खान के लिए प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो एसपी बाला सुब्रमण्यम ही करेंगे। एंड दिस ट्रेंड कैरीड ऑन फॉर अ बिट, और हम आपके हैं कौन में भी इन्होंने इनके लिए गाना गाया था। और फिर कहीं बाद में चलकर फिर कई और मेल प्लेबैक आर्टिस्ट ने फिर सलमान खान के लिए गाया, लेकिन जब भी एसपी बाला सुब्रमण्यम गाते थे तो ऐसा लगता था कि इट नेचुरली फेल्ट राइट इन प्लेस।

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, 3:01 हो चुके हैं और वी आर हाफ वे थ्रू द शो. देखते ही देखते और इस आवा की शुरुआत करते हैं. एक ऐसे कलाकार के बारे में आपको बताते हैं जो किसी भी तरह का रोल कर लेते हैं. आप इनसे सीरियस करवाना चाहते हो तो सीरियस रोल भी कर लेंगे. आप इनसे कॉमेडी करवाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं. और कई बार तो इन पर ये आरोप लगा है कि ये डायलॉग बिना बोले काफ़ी समय अपने गर्दन से भी अभिनय कर देते हैं. तो चलो इस आवा की शुरुआत करते हैं. इनकी ही एक डायलॉग आपको सुनवाते हैं और आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कौन से कलाकार है जो आखिरकार अपने डायलॉग से ज़्यादा अपने गर्दन से अभिनय कर देते हैं.
2: कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक विषया हुआ करती थी. शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता. आखिर उसको एक ऐसा

0: मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया।
1: हाँ, तो कौन से ये कलाकार है अगर जो आपको पता लगा है तो 5599 पर जरूर भेजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग अभिनय करते हैं और काफ़ी समय भी लगा इनको फोर फ्रंट तक आने के लिए। 5599 पर अपना जो जवाब है अपने नाम के साथ में ज़रूर भेजिएगा। और अगर जो अभी भी आप फिगर आउट कर रहे हैं तो चलो एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं इनकी आवाज़ और पता लगाइए कि क्यों कौन से कलाकार ये हैं।
0: कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक विस्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया।
1: हाँ, तो ये एक बड़े मजेदार कलाकार हैं और अभिनय की दुनिया में काफ़ी लोगों का मानना है कि ये काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। और कुछ दिनों तक हमने इसकी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन शायद आने वाले दिनों पर कुछ इनकी जो रिलीजेज़ है ये आने वाली है। थोड़ी देर में इसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम अगर जो आपको पता लगा कि किस कलाकार की आवाज़ थी तो ज़रूर हमारे पास में अपना जो जवाब है 5599 पर भेजिएगा।

हम पर जश्न का कारोबार जारी है और जो आवाज़ हमने आपको सुनाई थी ये थी पंकज त्रिपाठी की और इसको सही गेस किया विमलेश पापाकुरा से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इसके साथ में विधि आपका भी जवाब आया है, आपने भी सही जवाब पहचाना और भेजा हमारे पास में, थैंक यू सो मच इसके लिए। राहुल आपका भी जवाब मिला इसके साथ में, अभी आपने भी सही जवाब लेकर भेजा। तो पंकज त्रिपाठी एक ऐसे अभिनेता जो काफ़ी दमदार काम करते हैं और इनकी शुरुआत हुई थी छोटे छोटे एक या दो सीन से। अगर जो आप इनके फिल्में देखना चाहते हैं, रावण में ये छोटे रोल में नज़र आए हैं और ढेर सारी ऐसी कई फिल्में हैं जहाँ पर एक या दो सीन का काम था। आक्रोश में भी मेरे ख्याल से ऐसा ही था। इसके साथ में ओमकारा में भी आप शुरू शुरू में इनको देख सकते हैं, एक में ब्लिंक एंड अ मिस तो नहीं कहूंगा लेकिन ये नज़र आते हैं एक सीन में। और इसके साथ में इनके आने वाली एक फिल्म जो तैयार होने में थोड़ी ही समय लगेगी और जबकि मिर्ज़ापुर ये रिलीज़ हो रही है फॉर द बिग स्क्रीन एज अ फुल फीचर मूवी, तो यहाँ पर आप इन्हें देख पाएंगे। तो आवाज़ थी पंकज त्रिपाठी की और सही अनुमान लगाया है विधि ने और साथ में विमलेश ने। आप सभी को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, इसके साथ में राहुल और अभी आपको भी।

0: show with VJ and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit AMI.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
6: Get it sorted with cheap as deals. Grab a 32-pack of Tui Wood and Wax Fire Lighters for just $2. Plus, paint like a pro and earn 10 times air points on Resene Paint. Conditions and exclusions apply. Limited stock. Cheap as deals. End Sunday at Mitre 10.
7: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
8: Beating pump prices is easy with 40% off bus, train and ferry fares for tertiary students.
9: Thanks, driver.
8: With free off-peak travel for seniors who have hot gold cards.
10: Thank you, driver.
8: 40% off and free weekend travel for kids under 16.
9: Thank you, driver.
8: And 50% off for community service card holders.
10: Thanks, driver.
8: Auckland Transport has 7 different fare discounts to make getting around even more affordable. See if you can save by searching AT Fair Discounts.
11: Martin didn't think he needed a DVS system.
12: I've got a brand new home.
11: Does your brand new home have condensation?
12: Yeah.
11: New homes are often built tight, but a healthy, comfortable home needs to be able to breathe.
12: Is that what DVS does?
11: Yeah, DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology will make your home drier, healthier and more comfortable.
13: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
0: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
14: That's right, आपके लिए हम Playing Bollywood's Biggest Hits का ये favorite dial है आपका, और इसके साथ में आपको Bollywood से ही नहीं, आपके लिए अक्सर कुछ important बातें लेकर आते रहते हैं जो आपके health से भी जुड़ी हो, या फिर कुछ advices, opinions जो markets में float हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताते रहते हैं। लेकिन अब की बार, क्या आप किसी को जानते हैं जो अक्सर AirPods लगाकर गाने सुनकर सो जाता है या सो जाती हैं? तो इनके लिए आप ये बताइए कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जो आप एयरपोड्स लगाकर सुनने की म्यूज़िक सुनने की सोने की आदत है तो आप इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ या इन्फेक्शंस होती है इसके कारण से। जबकि एयरपोड्स को आप सोने पर लगाते हो या फिर लगाती हो तो इससे जो मॉइस्चर है ये ट्रिप हो जाती है ईयर कैनल में, और इसके कारण से ईयर इन्फेक्शंस हो सकती है। और एक बात बताई गई है कि पोटेंशियल हियरिंग डैमेज, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है कि हेडफोन को आप लिमिट करें टू 60 मिनट्स और लेस, और इसके साथ में अगर जो जब भी आप सुनते हैं तो 70 डेसिबल्स से कम इसकी वॉल्यूम होनी चाहिए टू प्रिवेंट हियरिंग डैमेज। तो याद रहे 60 मिनट से कम आपको सुनना है एयरपोड्स को, और लगाकर इसके साथ में ऐसे वॉल्यूम पर रखना है जहां पर 70 dB से कम रहे ताकि आपको हियरिंग डैमेज ना हो। इसके साथ में यह भी बताते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स कि आपके नेचुरल स्लीप साइकिल से कहीं ना कहीं ये इंटरफियर करती है अगर जो आप ज़्यादा देर तक इसे लगा कर रखते हैं। तो ये सभी कुछ बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ताकि आप बिल्कुल हेल्थी रहें, फिट एंड फाइन रहें, हमारे साथ में हमके साथ में हमेशा जुड़े रहें। तो अगर जो आप इवनिंग में सोने से पहले अगर जो आप अपने बेड स्टूल पर रेडियो लगा लेते हैं या फिर मोबाइल पर भी हल्का सा म्यूज़िक आप सुनना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं रादर देन यूजिंग एयरपोर्ट्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. ये कुछ बातें थी जो आपके साथ में हम शेयर कर रहे थे.

हम पर आप सुन रहे थे अल्ताफ राजा को, और इस गाना को सुनते ही क्वीन ने हमारे पास में मैसेज किया है और लिखा है सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ये शॉपिंग करने निकल पड़ी है और हम के साथ में गाड़ी में हम करते हुए सुपरमार्केट की ओर बढ़ रही है और इस गाने को बिल्कुल पसंद किया है। आपको भी कुछ सुनना है गजो तो 5599 पर हमारे पास में अपना जो मैसेज है ज़रूर भेजिएगा, आपके लिए बिल्कुल प्ले करेंगे। इसीलिए तो आज हम आपके साथ में हैं हम पर, और लेकर आए हैं जस्ट चिल, ताकि आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ से हम बजाते रहें।

और हाँ, मैं हूँ अभी कीपिंग यू कंपनी। और अब की बार आपसे बातें करना चाहते हैं इस बारे में कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को फुटबॉल क्लिनिक्स के लिए लेकर जाते हैं या फिर किसी और स्पोर्ट्स क्लिनिक पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वीकेंड्स पर अक्सर कोचिंग क्लिनिक्स होती है और यहाँ पर बच्चे जाकर खेलते हैं। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई और बच्चों के जो पेरेंट है काफ़ी लाउड है या फिर काफ़ी बोसी हो जाते हैं या फिर कोच से ज़्यादा बातें करने लगते हैं, ऑन टॉप ऑफ द कोच ये ओवररूल करने लगते हैं या फिर किसी तरह से अपने बच्चों को या फिर और बच्चों को भी डांटने लगते हैं? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यह आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा रिपोर्ट हमारे हाथ लगा है जहाँ पर वेकातो में आज के दिन वेकातो जूनियर रग्बी लीग को कैंसिल किया है, जितने भी गेम्स बच्चों के लिए होने थे, क्योंकि पेरेंट्स जो थे ये साइडलाइंस पर कार पार्क्स में आपस में फिजिकली फाइट कर रहे थे। तो इनके बिहेवियर को लेकर जो बच्चों के गेम है उसको कैंसिल किया गया है। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या ऐसा कोई फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस आपके साथ में भी बीता है जहां पर आप अपने बच्चों को कोचिंग क्लिनिक पर लेके गए हैं, वहां पर जो आधा पेरेंट्स थे ये काफ़ी लाउड या फिर यूँ कहें ओवर पेशनट हो जाते हैं और अपने बच्चों को साथ साथ में दूसरे के बच्चों को भी ये कोच साइडलाइन से ही करने लगते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? इसके बारे में 5599 पर ज़रूर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा या फिर आप उन्हें अभी आकर बातें करना चाहते हैं। इट वुड बी गुड टू हियर फ्रॉम यू।

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: With at least 40% off the entire store and a huge half price off all Manchester, go big at Briscoe's this weekend. Hurry, at least 40% off the entire store won't last. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Before winter really sets in, make sure your windows and doors are ready. From drafty window gaps to doors that won't close properly, Exceed fixes windows and doors to help keep your home warm. Call 0800 Exceed.

हम पर मैं हूँ आपके साथ में अभी और ये है जस्ट चिल वीकेंड का ये प्रोग्राम आपके साथ में है और अक्सर इस प्रोग्राम में आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में भी लेकर जाया करते हैं। तो ऐसे में बीबीसी फुटबॉल ने बताया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस को जबकि पहला पहल इनको अवार्ड दिया गया था फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एलिया दिस मंथ और इसके साथ में अब इनको एक और एक खिताब मिला है प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीज़न। जी हाँ, इनको ये अवार्ड भी दिया गया है और जबकि फर्नांडिस के लिए ये सीज़न ईपीएल का इन्होंने अभी तक इक्वल किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्ट, जबकि 20 गोल्स को इन्होंने असिस्ट किया है अभी तक, जबकि ये रिकॉर्ड इक्वल है और अभी भी एक गेम बाकी है तो इसको ये तोड़ भी सकते हैं। इसके साथ में इस सीज़न इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे चांसेस क्रिएट किए हैं, कुछ कुल मिलाकर 132 चांसेस इन्होंने क्रिएट किए हैं, जबकि स्टेट्स की माने तो ये 43 चांसेस मोर देन द सेकंड बेस्ट है, जबकि लिवरपूल के डोमिनिक सोबोस्लाई ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है, इन्होंने कुछ 43 चांसेस कम क्रिएट किए हैं देन ब्रूनो फर्नांडिस। इसके साथ में ब्रूनो की जो टीम है ये थर्ड प्लेस पर फिनिश की है इस सीज़न को, इसके अलावा ये चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो ये सभी कुछ फुटबॉल की दुनिया से जो नवीनतम जानकारियां हैं आप तक लाते रहते हैं।

हम पर जश्न का कारवां है, 6 मिनट बाकी है 4 बजने में और 4 पर आपके लिए समाचार भी रहेंगे। और जल्दी से याद कर लेते हैं, रीता शर्मा को आपका भी मैसेज आया है, आपने अगले इस गाने की फरमाइश की है, एंड यू आर टेकिंग अ ड्राइव प्रोग्राम को आप सुन रही है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, इसी तरह से हमारे साथ में बने रहे जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। तो आपकी फरमाइश पर, आपकी डेडिकेशन पर आपने याद किया है, आपके फ्रेंड्स है साथ में प्रीति और साथ में कोमल है, आप सभी को याद करते हैं अगले इस गाने में।

0: You're listening to Avineet.
1: हमारे हम स्टूडियोज में जस्ट आफ्टर फोर और अभी से लेकर छह तक हमारा और आपका साथ रहेगा. सो टू मोर आवर्स टू गो, ऐसे में इस हवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं. मैं हूं अभी आपके साथ में और हम ये है जस्ट चिल.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और एक प्यारा सा मैसेज आया है जैक्सन की ओर से। आफ्टर हार्ड डेज वर्क ये ड्राइव कर रहे हैं, घर की ओर बढ़ रहे हैं, आपको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में और आपको थैंक यू कहते हैं फॉर ऑल योर हार्ड वर्क टुडे। और जो इवनिंग है आप इसे बिल्कुल इंजॉय कीजिएगा जैक्सन, और हम के साथ में जुड़े रहिएगा।

पर हम आपके चॉइसेस का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, इसीलिए आपको बताते हैं हम म्यूजिक स्टेशन जहां पर आप 80s के नंबर्स सुन सकते हैं हम 80s जुक बॉक्स पर, और साथ में 60s और 70s के गाने आपके लिए हम रिवाइंड पर स्टोर किया गया है। फिजी भजन्स आप सुनना पसंद करते हैं, इसका भी एक चॉइस आपके पास में है, जबकि फिजी भजन्स भी आप ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके साथ में पंजाबी हिट्स फॉर ऑल द चढ़दी कला आपके लिए, और जितने भी पंपिंग नंबर्स हैं यहाँ पर स्टोर किए गए हैं, ये सभी कुछ है। और इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह है और राहत फतेह अली खान की अलग खूबसूरत खूबसूरत गाने, सूफी गाने, कवालियाँ, ये सभी कुछ आपके लिए स्टोर किया गया है। तो आपको सिर्फ रोवा पर जाकर इसे चेकआउट करना है।

बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। जी हाँ, जबकि एक ब्रिटिश करेक्टर है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, एक फ्रेंचाइज जेम्स बॉन्ड 007, और इस करेक्टर को लेकर एक नए एक्टर की तलाश की जा रही है। और ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम जेम्स बॉन्ड। तो सबसे पहला पहल इन्होंने कहा है कि क्योंकि ये एक ब्रिटिश करेक्टर है तो एक्टर का ब्रिटिश होना ज़रूरी है, ताकि ये इनका जो एक्सेंट है और ये नेचुरली इस पार्ट को प्ले कर पाए। इसके साथ में दूसरी बात ये बताई गई है कि बिटवीन द एजेस ऑफ 29 and 44 एट द टाइम ऑफ कास्टिंग आपको होना चाहिए, ताकि आप ढेर सारे फिल्मों में इनके काम कर सकें। इसके अलावा ये भी बात बताई गई है कि आप नवन नहीं हो सकते, यानी कि एक नवन करेक्टर, एक नवन एक्टर इस कैरेक्टर को नहीं प्ले कर सकते हैं। और इसके साथ में ये भी बताया गया है कि विटी होना ज़रूरी है, यानी कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये अलग लेवल पर होना चाहिए। तो ये सभी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जेम्स बॉन्ड की कास्टिंग के लिए। और इसको लेकर शेखर कपूर ने मजाक मजाक में कहा है कि हमारे अपने जॉन अब्राहम बिल्कुल तैयार हैं टू प्ले जेम्स बॉन्ड, और सभी तरह से सभी बॉक्सेस को ये टिक करते हैं।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम पर मैं हूँ अभी कीपिंग यू कंपनी और आपको बता दें कि आपके ब्रेकफास्ट केचअप के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट करना होगा BF ऑन 5599 जहाँ पर विजय और पूजा अक्सर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं और इसके साथ साथ अगर जो आप अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिखकर 5599 पर ज़रूर भेजें और यहां से आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप पूरा का पूरा एपिसोड देख सकते हैं सुन सकते हैं। यहां पर सेंडी और रुजबे अक्सर कम्युनिटी से लेकर सोसाइटी से लेकर अच्छी अच्छी डिस्कशंस लेकर आते हैं और ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं ऐसे मेहमान को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमको कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमेशा देते रहते हैं।

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

पर मैं हूं आपका साथी अभी, और कहते हैं हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक सबक छिपा होता है। पहले उस डिफिकल्ट सिचुएशन को निपटाइए और फिर उसके बाद में जो सबक छिपा होता है उसके पीछे उसको अपनाइए।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Intaha ho gayi
1: intezaar ki. And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
2: हाँ. अच्छा,
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
2: Mrs. Singh.
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
5: Prezi cards just leveled up. You can now add every card design to your digital wallet, making it easy to recognize each card, stay organized, and let your personality shine when you tap to pay. Shop now at prezicard.co.nz.
6: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
7: Playing

0: You're listening to Avineet.
1: हम्पर मैं हूँ आपके साथ में अभी एंड दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो जबकि इट्स जस्ट आफ्टर फाइव तो छः तक हमारा और आपका साथ रहेगा. आपने 12 बजे से हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस आवर को भी साथ में मिलकर तय करेंगे. छः तक हमारा और आपका साथ रहेगा 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. इस आवर पर भी आपका खास स्वागत करते हैं.

हम पर मैं हूँ अवि, कीपिंग यू कंपनी। और सच के बारे में लोगों का अपना अपना एक अलग परसेप्शन होता है, तो इसी को लेकर आपको कुछ सुनवाने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। सच सुनने से ना जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ चाहे झूठी हो सुनकर मुस्कुराते हैं लोग। समथिंग टू वंडर अबाउट।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TCs, fees and credit criteria apply.

0: love story that's not perfect, not planned, just a little real. Chand Mera Dil, starring Ananya Pandey and Lakshya.
1: Pyar mein thoda pagal to hona hi padta hai.
2: Hamari love story to legendary ban gayi.
0: An intense love story of the year, Chand Mera Dil, now showing in cinemas.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
0: Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
4: हम्बर रवि के साथ है और आपको बता दें जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड स्टेशन है ऐसे में बॉलीवुड की दुनिया से जो नवीनतम एक फिल्म रिलीज होने को है इसका नाम है जवानी तो इश्क होना है जिसे डायरेक्ट डेविड धवन ने किया है और इसमें आप वरुण धवन को देख सकेंगे और इस फिल्म को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो चुकी है जबकि आपको ख्याल होगा बीवी नंबर वन के प्रोड्यूसर वासु भगनानी जो 90s के एक सुपर प्रोड्यूसर हुआ करते थे और जबकि इन्होंने डेविड धवन के साथ में काफ़ी काम किया है गोविंदा को लेकर और इनका ये कहना है इनका ये चैलेंज है कि डेविड धवन ने इनके फिल्म बीवी नंबर वन से गाने को इनसे बिना पूछे इस आने वाले फिल्म में इस्तेमाल किया है जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है और इस गाने को उन्होंने अपलिफ्ट किया है विदाउट आस्किंग हिम और विदाउट टेकिंग हिज कंसेंट तो इस बात को लेकर वासु भगनानी ने कोर्ट को भी अप्रोच किया है और काफ़ी विवाद भी खड़ी हुई है अब जबकि ये फिल्म रिलीज होगी तो देखने वाली बात रहेगी क्या इस फिल्म में बीवी नंबर वन का जो गाना है जिसके बारे में बातें हो रही इसको इस्तेमाल किया गया है या नहीं जो भी हो एक नवीनतम रिलीज कॉमेडी मूवी जहां पर आप वरुण धवन को देख सकेंगे एक बार फिर से बड़े पर्दे पर और डायरेक्ट किया है डेविड धवन ने जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और अक्सर आपके साथ में ऐसे बातों को भी लेकर शेयर करते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो अगर जो किसी यूटिलिटी बिल को लेकर आप परेशान हैं, आपको लगता है आपके सर्विस प्रोवाइडर्स ने आपको ओवरचार्ज किया है या फिर किसी तरह का कोई ग्रीवियंस है अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर, तो एक नाम याद रहे, सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो। यहाँ पर आप जाकर उनसे बातें कर सकते हैं और ये आपको सही तरीके से एक गाइडेंस देंगे और आपके लिए शायद मीडिएट भी कर सकते हैं बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर्स और आपके बीच में। तो सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो इज़ द प्लेस दैट यू नीड टू गो और हर एक शहर में ये अक्सर रहते हैं। तो अगर जो आप गूगल भी करेंगे आपको इनका ऑफिस का लोकेशन भी मिल जाएगा।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में 104.2 FM साथ में रोवा और थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा साथ देते रहिए।
1: छत पक्षियां रंगादी धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया, वो दोनों को ही चार

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था और आपको छोड़े जा रहे हैं, ये वादा किए कि एक बार फिर अगले वीकेंड पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। जब भी आपके साथ में होते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम जस्ट फ्लाइज, क्योंकि समय को पर लग जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगले वीकेंड का जो प्रोग्राम रहेगा हमारे साथ में, ये थोड़े दिनों के लिए आखिरी रहेगा, जबकि हम छुट्टियों पर जा रहे हैं और ऐसे में कुछ वीक्स तक आपके साथ में नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारा ब्रेक ओवर होगा एक बार फिर वापस आपके साथ जुड़ जाएंगे। इन द मीन टाइम आज के लिए आप बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, औरों का ख्याल रखिएगा, एंड डू टेक केयर। बाय।

आपके जिंदगी में हर चीज आपके चुने हुए फैसले की झलक है। अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हैं तो फैसले, आपके चॉइसेस भी अलग होने चाहिए, क्योंकि हर बार एक ही तरह की कोशिश करने के बाद परिणाम भी आपको एक ही तरह का मिलना है। अगर आप परिणाम अलग चाहते हैं तो कोशिशें भी, टेक्निक्स भी अलग होनी चाहिए। बहुत ही सोचने वाली, बहुत ही विचार करने वाली ये बातें हैं। हमेशा नहीं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यार ये फिर से ऐसा ही हो गया, ये ऐसा ही हो गया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस रिज़ल्ट के पीछे आपने जो मेहनत की थी, आपने जो टेक्निक्स यूज़ किए थे, क्या उसमें आपने चेंजेस किए हैं? तो अगर रिज़ल्ट आपको अलग चाहिए तो टेक्निक्स और आपके चॉइसेस भी अलग होने चाहिए। एंड आज आपने चूज़ किया है टू बी विथ मी हियर ऑन संडे नाइट मेलोडीज़, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं हम। संडे नाइट मेलोडीज़ में मैं जिकाश आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। 104.2 FM रोबा के ज़रिए आप हमें सुन रहे हैं। आपके समय के लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं, आपके प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके इसी प्यार के चलते हुए हम, दैट इज़ हम 104.2 FM एंड हम ऑन रोबा, वी हैव बिकम द बेस्ट हिंदी रेडियो स्टेशन इन न्यूजीलैंड। अभी लेटेस्ट रिजल्ट जो आया हुआ है सर्वे के चलते हुए, तो

यही पाया गया है कि जिसे आप पसंद करते हैं पूरा न्यूजीलैंड उसी को पसंद करता है, यानी कि हमको। तो सेलिब्रेट करते हैं आज इस छोटी सी जीत को, और आपका प्यार आपको हम लौटाएंगे इन दिस सिक्स आवर्स इन संडे नाइट मेलोडीज। स्वागत करते हुए आप सभी का इस्तकबाल कर रहे हैं, और आइए शुरुआत करते हैं संडे नाइट मेलोडीज की विद दिस ऑसम ऑसम ट्रैक। वंस अगेन अ बिग विना का वकलेवू, एंड आप सभी को नमस्कार, क्योरा स्वागत कर रहे हैं।

0: Pin Chikash.
1: What a weekend this has been so far in terms of sports. क्योंकि A-League ये कल खत्म हुआ. अगर आपकी टीम ने जीत हासिल की है, well, congratulations. अगर आपकी टीम ने जीत हासिल नहीं की है, I'm pretty sure they will be working even harder for next year's A-League competition. तो all the best to the losing team and congratulations to the winning team. Winning team के fans को भी हम congratulate कर रहे हैं. आपके प्यार के जरिए आपकी टीम ने इतनी सफलता हासिल की है. इसके अलावा the final round of Super Rugby ये next week होने वाला है. This week was the second last week और अभी तक four teams they have cemented their place in the top six और the last two teams ये क्या कुछ करने वाली है. Are they gonna fiddle around with the third place and the second place holders at the moment? लगता तो नहीं है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है. तो नेक्स्ट वीक जो खेल होने वाले हैं इस पर हम जानकारी आपको देंगे. NRL के अपडेट्स भी आपके साथ में हम शेयर करेंगे. तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ में शामिल रहिए. वैसे हरिकेन्स के फैंस दे आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग क्योंकि They are through to the quarterfinals. Blues ke fans are through to the quarterfinals. Chiefs and Crusaders as well. So these four teams are right up there. They have locked their quarterfinal places. और बाकी जो दो टीम है ये कौन सी होने वाली है ये नेक्स्ट वीक हमें मालूम पड़ेगा. तो जानने के लिए बस थोड़ा सा डिसाइफर करेंगे हम कि टीम स्टैंडिंग्स क्या है. प्लस नेशनल रग्बी लीग ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. हमारी अब्दावास वॉरियर्स हैव बीन प्रीटी ऑसम और क्या अपना ऑसमनेस ये बरकरार रखती है इन दी कमिंग वीक्स ये देखने वाली बात रहेंगी. मैं हूं जिकाश. सनडे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं.

उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरी

वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज़। मैं हूँ जिकाश एंड ऑन एट दिस पॉइंट हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अबाउट स्कूल टर्म। दिस इज़ द सेकंड टर्म ऑफ दिस ईयर 2026 का। स्कूल का सेकंड टर्म चल रहा है। दिस वीक फिफ्थ वीक ख़त्म हो चुका है। सेकंड टर्म इज़ फॉर 11 वीक्स, तो 6 सप्ताह बाकी रह चुके हैं फॉर सेकंड टर्म टू कम टू एन एंड। बस यूँ ही आपको याद दिला रहे थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बातें आम हो जाती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, होमवर्क करते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं एंड रूटीन हो जाता है। और एकदम से जब फाइनल वीक आता है तब रियलाइज़ होता है कि अरे बाप रे फाइनल वीक आ गया है और स्कूल हॉलीडेज़ में क्या करना है, स्कूल हॉलीडेज़ के लिए डे क्लासेस या फिर डे क्या हमें ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अभी से आप प्रिपेयर करने लगे, लुक अराउंड, काफ़ी नए डे केयर्स खुले हुए हैं जहां पर शायद आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल सकते हैं और आपकी पैसों की बचत हो सकती है। यही नहीं, अपना हॉलीडेज, अपना जो लीव है, एनुअल लीव, ये भी आप प्लान आउट कर सकते हैं कि किस तरह से उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं वाइल द किड्स आर एट होम। क्या आपको कहीं ट्रिप पर जाना है, इसके लिए एयरफेयर्स अभी से आप देखने लगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले से अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो बचत आपकी होती है। लेकिन कभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से आप बुकिंग कर लेते हैं वन वे की, रिटर्न फेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, हड़बड़ी ना करें, अभी से ढेर ज़्यादा समय बाकी है। प्लान इट आउट नाइसली, अपने सेविंग्स के बारे में भी आप ध्यान दें और अपने टाइम विथ योर किड्स इसके बारे में भी आप प्लान कर सकते हैं।

2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्या जानते हुए इसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं? वेल, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या है? वेल, दिस एजेंडा वॉज अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015, जिसमें इट प्रोवाइड्स अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। इसके कोर वैल्यूज या फिर एट द हार्ट ऑफ दिस एजेंडा आर 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो कलेक्टिवली मीट करने की कोशिश की जा रही है बाय द ईयर 2030, ताकि दुनिया को और भी बेहतर बनाया जा सके इन टर्म्स ऑफ अ हैप्पियर एंड अ हेल्थियर प्लेस टू लिव। तो इसके लिए 17 गोल्स है, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। आई वोंट गो इन डेप्थ क्योंकि शायद समय कम पड़ जाए, लेकिन वी विल जस्ट शेयर दीज 17 गोल्स क्या है। एंड इसके बारे में आप तो जानकार लोग हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी ओर से आप क्या कर सकते हैं। कहावत तो आपने सुनी होगी कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है फॉर द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में बातें हम आज कार्यक्रम में करने वाले हैं।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras Manuko and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
5: Big Points Blitzes on now. Get big bonus points at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run. Boost the offers in your everyday rewards app. Shop and collect up to 4,000 bonus points. Hurry, Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
6: Rebel Sport has everything you need to gear up for the winter season. Save on the essentials with deals on mouthguards, football and rugby boots, hockey shoes, training clothing and so much more. These deals on now only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने कहा था आपको हम बताएंगे। देर आर 17 गोल्स जिसको कलेक्टिवली और ग्लोबली अचीव किया जाने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है बाय द मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं इन द यूनाइटेड नेशंस के लिस्ट में, इन सभी द्वारा इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द ईयर 2015। तो 15 सालों के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया जा रहा है और वेरी क्लोजली इसको मॉनिटर किया जा रहा है। 2016 से लेकर 2025 तक, लास्ट ईयर तक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट इश्यू किए गए हैं ऑन द SDGs.UN.ORG वेबसाइट पर। इसके बारे में पढ़िए, यू विल बिकम मोर नॉलेजबल। और अब जब आप ट्री ब्रेक पर जाते हैं अपने कोलिग्स के साथ में, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वीकेंड कैसा था, बच्चों ने क्या किया, यू नो, इंस्टेड ऑफ हैविंग स्मॉल टॉक यू कैन हैव सम रियली सीरियस और एनलाइटिंग कन्वर्सेशन। तो SDG 17 SDG, पहला है नो पॉवर्टी। सुनने में तो शायद इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन अगर इसके बारे में कुछ नहीं किया जाएगा तो कुछ होगा नहीं। तो नो पॉवर्टी इज द फर्स्ट डेवलपमेंट गोल। नंबर टू इज जीरो हंगर। नंबर थ्री इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। नंबर फोर इज क्वालिटी एजुकेशन एंड नंबर फाइव इज जेंडर इक्वालिटी। ऐसे ऐसे 17 है जिसके बारे में आपको हम बताते चलेंगे। जानने से ही कुछ नहीं होता है। इन गोल्स के बारे में किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराने से कुछ नहीं होता है। इन गोल्स को लेकर आप पर्सनली क्या कर सकते हैं एट अ पर्सनल लेवल या फिर आपके हाउस होल्ड लेवल पर। नो पॉवर्टी इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं? क्या कहीं पर आप दान कर रहे हैं रेड क्रॉस को, चाहे यूनिसेफ को, क्या आप थोड़ा मोड़ा पैसा भेज रहे हैं ताकि वो लोग जो पॉवर्टी के शिकार हैं उनको थोड़ी सी मदद की जाए? क्या आप एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पीपल कैन गेट एजुकेटेड एंड गेट आउट ऑफ पॉवर्टी? जीरो हंगा के लिए आप क्या कर रहे हैं? नाउ जीरो हंगा मैं ये नहीं कहता कि आप जाए बस देश भर के लोगों को खाना बांट दे। आर यू सेविंग फूड ताकि फूड वेस्ट ना हो और फूड वेस्ट ना होते हुए इट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर पीपल हु नीड देम। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन गोल्स को लेकर आप इसके बारे में सोच सकते हैं और पर्सनल लेवल पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिलहाल संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

वेलकम बैक टू हम जहाँ पर संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। पिछले घंटे पर हमने बातें करनी शुरू की थी अबाउट दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कलेक्टिवली दी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज ये अचीव करने की कोशिश कर रही है बाय द ईयर 2030। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड गोल्स नहीं है, बहुत ही सीधे साधे रीचेबल गोल्स है। अगर इस पर सभी लोग काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो शायद ये सब गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। एंड अगर ये 17 गोल्स अचीव हो गए तो भाई ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। पीपल, लोगों को दिक्कतें कम हो जाएंगी और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दिस विल बी इन अबंडेंस। तो क्या है 17 सस्टेनेबल गोल्स फ्रॉम दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में बातें करेंगे। पांच हमने आपके साथ शेयर किया है: नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, ये पांच हुए हैं। बाकी 12 क्या है इस पर हम बातें करते चलेंगे ऑन दिस आवर। इसके अलावा पर्यावरण, हमारे नेचर, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम ये खूबसूरत दुनिया तोहफे में देकर जाए, ना कि एक उजड़ा हुआ चमन उनके हाथ लगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं राइट हियर लोकली इन ऑकलैंड, प्लांट मोर नेटिव ट्रीज। ये एक कैंपेन है जहां पर बिल्कुल मुफ्त में आप सीडलिंग्स ले सकते हैं एंड यू कैन प्लांट एंड ग्रो अ नेटिव ट्री अराउंड यू, या फिर कलेक्टिवली ग्रुप के साथ में होकर आप कलेक्टिव प्लांटिंग भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी हम आपके साथ में शेयर करेंगे ऑन दिस आवर। फिलहाल सन एंड मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। अभी आपने ट्यून इन किया है, आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं। क्योरा

0: सन एंड मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं। हमने कहा था आपको बताएंगे कि किस तरह से आप नेटिव ट्रीज प्लांट कर सकते हैं इफ यू हैव इंटरेस्ट इन गेटिंग मोर ग्रीनरी अराउंड ओकलैंड। तो संडे 7th of June को ये कैंपेन हो रहा है एट द ओकलैंड बोटेनिक गार्डन्स। ये तो आप जानते हैं कहाँ पर है, 102 हिल रोड द गार्डन्स ओकलैंड में, मनोरोवा की ओर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा। संडे 7th June को सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 2 बजे के बीच में आप नेटिव ट्रीज सीडलिंग्स प्लांट कर सकते हैं। ये एक रीजन वाइड मूवमेंट है जून में एंड इट हेल्प्स टू ग्रो द सिटीज नाहिरे बाय प्लांटिंग अ फ्री नेटिव सीडलिंग एट होम। ये अपन ने घर पर भी आप लाकर बो सकते हैं। Through Auckland Council's Plant More Natives campaign, community nurseries across Tamaki Makaurau will be giving away thousands of native plants. Aur yahan par you can come along for friendly advice, inspiration to help you bring more birdsong and biodiversity back into your neighborhood. Limit hai, limit of 1 native seedling per household. Kitna acha rahega ki aap ek native seedling laye aur agar aapke ghar par aangan mein jagah hai उस पौधे को लगाए और उसकी देखभाल करें और फिर 5-10 सालों में वो खिलकर निखरकर एक बड़ा सा पेड़ हो जाएगा एंड आप बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि भाई ये बीज मैंने डाला था, ये पौधा मैंने लगाया था और आज इसकी छांव में हम बैठ रहे हैं। तो थ्रू आउट द मंथ पार्टिसिपेटिंग नर्सरीज है जहाँ पर ओपन डे होस्ट किया जाएगा, जहाँ पर आप जाकर लोकल एक्सपर्ट्स को मिल सकते हैं। You can learn how to care for your seedling and discover how native planting connects to wider ecological restoration efforts. So the first one happening 7th June at Auckland Botanic Gardens, subha 10 se din mein 2 baje ke beech. Take your family there, you get educated aur ek pyara sa paudha aap apne ghar le jaakar ise paudhe ko laga sakte hain, isko bo sakte hain, isko plant kar sakte hain. First one Sunday 7th June. सैटरडे 6th June को ओफिटू लैंड केयर ओफिटू रोड ओकलैंड में है। फिर फ्राइडे 12 जून, 19 जून, 26 जून ये ओफिटू लैंड केयर में रहने वाला है। तो ourauckland.aucklandcouncil.gov.nz इज दी वेबसाइट जहां पर इनके बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: You're listening to Chikash.

0: चाहे आप हमके दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Woolworths has savings in every aisle. Get Meadow Fresh Carlo Greek Yogurt 800 gram for $7 each and Huggies Bulk Ultra Dry Nappies or Nappy Pants 24 to 54 pack 2 for $32. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
2: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
3: Thank you.
4: It's all I can think about.
3: What does it sound like?
4: Yeah, I'd rather not.
3: Go on, why don't you have a crack?
4: Okay, got a plumbing problem.
3: Oh, I need a bit more than that.
4: They've got your back.
3: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
4: Oh, okay.
5: There's no better plumber to give it a crack.
3: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
4: No, I want a plumber.
6: Advertise with
7: MediaWorks.
6: New Zealand listens to us.
8: Playing

बॉलीवुड की ओर देखें तो कर्तव्य नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आ चुकी है। आई हैव वॉच्ड इट। और अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को एंड यू आर ए सैफ अली खान फैन तो ये फिल्म आप एंजॉय करेंगे। इसमें सैफ अली खान है, राशिका दुग्गल, मनीष चौधरी, जाकिर हुसैन जी भी इसमें नज़र आएंगे। ऑल इन ऑल एन एवरेज मूवी, ऐसा ही क्रिटिक्स का कहना है। एन एवरेज यूजर रेटिंग, इसको 3 out of 5 स्टार्स मिले हैं। वॉच टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ बेहतर है करने को, डू दैट एंड देन वॉच दिस फिल्म लेटर। दूसरी फिल्म आई हुई है सिस्टम। आई एम नॉट श्योर ये कहाँ पर आई है। सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारकर की ये मूवी है। दिस इज़ अ ड्रामा थ्रिलर मूवी और 22 मई को ये मूवी रिलीज हुई, दैट इज़ ऑन फ्राइडे। 8 मई को रिलीज़ हुई मैं एक्टर नहीं हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और इसके साथ में चित्रंगदा इस मूवी में नज़र आई है। एवरेज यूज़र रेटिंग 2.5 stars out of 5 इसको दिया गया है। दादी की शादी, ये इस मूवी का ट्रेलर मैंने देखा है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी रिव्यू नहीं देखा है, ऑनलाइन ट्रोल्स भी नहीं देखे हैं, तो शायद लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। दादी की शादी में नीतू सिंह, कपिल शर्मा, रिद्धिमा कपूर, साहिनी और सादिया खातिब को आप देखने वाले हैं। ठीक ठाक इसकी एवरेज यूज़र रेटिंग आई हुई है, 3 stars out of 5 इस मूवी को मिले हैं। और भी अपडेट्स अबाउट बॉलीवुड हम आपके साथ में शेयर करेंगे। वैसे अनदर मूवी दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर, वेटिंग फॉर, इज़ माँ बहन। इसका ट्रेलर बड़ा ही मज़ेदार था। मदर डिस्ट्रिक्ट इस मूवी में दिखने वाली है। Yeah.

लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द सस्टेनेबल गोल्स जो आपके साथ में हम शेयर कर रहे थे. फर्स्ट वन वाज नो पॉवर्टी, दूसरा गोल है जीरो हंगा, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, नंबर फोर इज क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन, नंबर फाइव इज जेंडर इक्वेलिटी, नंबर सिक्स पर आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, दिस शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, नंबर सेवन है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. फ्यूल के प्राइसेस, फ्यूल क्राइसिस, ये तो दुनिया भर अभी इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो ऐसे में अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं. अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो एनर्जी क्रिएशन में काम करती है, विक्टा में आप काम करते हैं, या फिर आप ऐसे कोई है जो सोलर पावर जनरेशन के बारे में जानते हैं, मे बी यू हैव सम आइडियाज़ जो आप अदर पार्टी होल्डर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन हेल्प इन अचीविंग अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. नंबर एट इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सभी के पास होना चाहिए, एक अच्छा खासा काम और ग्रोथ करने का मौका, ये सभी को अवेलेबल होना चाहिए. तो दिस इज़ दी गोल नंबर एट. इसके बाद में और सारे गोल्स क्या है ये भी आपसे हम शेयर करेंगे. नंबर एट हमने कहा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर नाइन इज़ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर टेन इज़ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, ऊँचा नीचा बड़ा छोटा और काम पर इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन वीमन किड्स एंड अडल्ट, इसको कम कैसे किया जाए इस पर भी गौर किया जा रहा है. इसको अचीव करने के लिए भी सभी कंट्रीज़ काम कर रहे हैं. सो दीज वेयर 10 आउट ऑफ 17. बाकी सारे थोड़ी देर में आपके साथ में हम शेयर करेंगे.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Big points blitzes on now. Get big bonus points at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run. Boost the offers in your everyday rewards app. Shop and collect up to 4,000 bonus points. Hurry, big points blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ। बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in।
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Oakland।
7: Non-stop Bollywood।
8: ऊंचों के करते शिद्दत के साथ करते हैं।
7: हम Playing Bollywood's biggest hit।

0: Hey, welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। फिल्मों के बारे में हम बातें कर रहे थे अबाउट सम मूवीज जो रिलीज हुई है एंड सम मूवीज जो रिलीज होने वाली है एंड ऑन माई लिस्ट आई हैव माँ बहन। ये एक अपकमिंग हिंदी डार्क कॉमेडी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर 4th ऑफ जून को रिलीज होने वाली है। सुरेश त्रिवेणी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड इट फॉलोज ए स्ट्रगलिंग मदर एंड हर टू एस्ट्रेंज्ड डॉटर्स हु मस्ट वर्क टुगेदर टू कवर अप अ डेड बॉडी फाउंड इन देयर किचन। फिल्म में स्टार कर रहे हैं माधुरी दीक्षित एज द मदर रेखा अलोंग विद तृप्ति डिमरी एंड धरना दुर्गा एज हर डॉटर्स। इसको इस ट्रेलर को आप चेकआउट करें एंड आई एम प्रीटी श्योर वंस यू वॉच द ट्रेलर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार करने लगेंगे। इस फिल्म में रवि किशन भी है तो भाई सुने पर सुहागा और ही इज एक्टिंग एज द नोजी नेबर ऑफ माधुरी। आदर्श पुरुष गुप्ता भी इस मूवी में नज़र आने वाले हैं तो अ ग्रेट कास्ट। तृप्ति डिमरी इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, माधुरी दीक्षित ये तो अपनी जगह पर है और फिर रवि किशन इनको कौन नहीं पसंद करता। तो जून 4th को नेटफ्लिक्स पर ये मूवी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो ये मूवी आने वाले सप्ताह रिलीज होने वाली है। जैकी श्रॉफ, प्रतीक बब्बर और शरद सक्सेना इस मूवी में नजर आने वाले हैं। इसका भी ट्रेलर मैंने चेकआउट किया है एंड आई कांट रियली फिगर आउट इफ देयर इज रियली अ सुपर हीरो इन दिस मूवी या बस मनगढ़ंत कहानी कुछ है जो will be played out on the screen। तो जैकी श्रॉफ है तो मूवी अच्छी ही होगी, शरद सक्सेना भी है और प्रतीक बब्बर इनको जितनी ख्याति जितना सम्मान मिलना चाहिए शायद उतना मिल नहीं रहा है। आई प्रीटी मच लव हिज एक्टिंग। तो जैकी श्रॉफ, प्रतीक बब्बर और शरद सक्सेना इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। द अदर वन दैट आई वॉज रीडिंग वॉज अबाउट बंदर बॉबी देओल। दो तीन साल पहले इन्होंने एनिमल की है, अब बंदर कर रहे हैं। क्या अब जू का पूरा लाइनअप ये करेंगे, किसी ने ऐसा कमेंट किया था। तो बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा, इंद्रजीत सुकुमारन, सबा आज़ाद और जितेंद्र जोशी। फिल्म बंदर 5th जून को ये मूवी रिलीज होने वाली। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर सम गुड मूवीज जो आप देखने वाले हैं इन सिनेमास। तो बंदर इज अनदर वन रिलीजिंग वेरी सून, 5th ऑफ जून को ये मूवी रिलीज होगी।
1: हम पर आपके साथ हैं जिकाश।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स You're listening to Chikash.

बोला, वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। इस घंटे पर हम बातें करेंगे अबाउट सम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स जो इस साल हो रहे हैं। एंड इवन दो मैं खुद रग्बी फॉलो करता हूं, लेकिन समथिंग रियली स्किप्ड माय माइंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, रग्बी लीग वर्ल्ड कप भी इसी साल खेला जा रहा है। इसके साथ में और कौन कौन से वर्ल्ड कप खेले जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर अ लॉट ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज एंड अ लॉट ऑफ स्पोर्टिंग नेशंस, क्योंकि वर्ल्ड कप्स भाई चार साल में एक दफ़ा आता है और बहुत सारी टीमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करती है टू गेट टू क्वालिफायर्स, क्वालिफाई होना, फिर टीम को तैयार करना एंड देन एट अ वर्ल्ड स्टेज परफॉर्म देयर बेस्ट। तो हम बातें करेंगे अबाउट सम डेट्स एंड वेन्यूज ऑफ अ फ्यू वर्ल्ड कप मैचेस या फिर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स इन जनरल। कौन सी टूर्नामेंट किस खेल के लिए कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, क्या आपकी टीम इस वर्ल्ड कप में नज़र आएगी या नहीं, ये बातें इस घंटे पर हम करने वाले हैं। 5599 पर अपना भी मैसेज हमारे पास भेजते रहें कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आपकी फेवरेट टीम क्या है, आपको भी हम शामिल करते चलेंगे राइट हियर ऑन हम संडे नाइट मेलोडीज़ में। जिकाश का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। क्योरा की

वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के बारे में हमने कहा था इस घंटे पर हम बातें करेंगे, तो लेट्स किक ऑफ विद द फर्स्ट वन एंड द प्रोबेबली द बिगेस्ट वन जो होने वाला है, जहां पर इस दुनिया की बहुत सारी टीम खेलने के लिए आने वाली है इन अमेरिका, मेक्सिको एंड कनाडा। आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप 2026। ओपनिंग होगा 11 जून को, 12 जून को फर्स्ट मैच होने वाला है बिटवीन मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये जून महीने में खेला जाएगा, 11th को ओपनिंग होगी। और क्या आपकी टीम जिसको आप सपोर्ट करते हैं, हैव दे मेड द कट, हैव दे विल दे बी फीचरिंग इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप, यस और नो, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। वैसे ग्रुप्स की ओर देखें तो इन टोटल ऑफ आई से लेकर 11 पूल्स हैं फीचरिंग 4 टीम्स इन ईच पूल, तो 11 टाइम्स 44 इज 44 कंट्रीज इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप ए में है कनाडा, बोस्निया, कतार और स्विट्जरलैंड, सॉरी दैट्स ग्रुप बी। ग्रुप ए में है मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड जेकिया। नंबर 2 यानी कि ग्रुप बी में है कनाडा, बोस्निया, कतार, स्विट्जरलैंड। ग्रुप सी में ब्राज़ील, मोरक्को, हाइती, स्कॉटलैंड है। ग्रुप डी में यूएसए, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड तुर्की। ग्रुप ई में है जर्मनी, क्यूरासाओ, आइवरी कोस्ट एंड इक्वाडोर। ग्रुप एफ में है नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन एंड ट्यूनीजिया। ग्रुप जी में है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। यस, वी आर इनटू द वर्ल्ड कप 2026। ग्रुप एच में है स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे। ग्रुप आई में है फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे। ग्रुप जे में है अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन। ग्रुप के में है पोर्टुगल, डीआर कॉन्गो, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। वहीं पर द फाइनल ग्रुप, ग्रुप एल में है इंग्लैंड, क्रोएशिया, गाना और पनामा। तो पूल मैचेस होने के बाद फिर नॉकआउट स्टेजेस आ जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वे अवे, लेकिन जून में ये तहलका शुरू हो जाएगा। और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो TVNZ+, यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप पास आप खरीद सकते हैं एंड बाय डूइंग दैट यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द मैचेस लाइव। फ्री नहीं है, TVNZ ऐप आप डाउनलोड करें, स्मार्ट टीवी है तो उस पर आपको उसको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पास खरीदना पड़ेगा। TVNZ+ पर फीफा वर्ल्ड कप पास खरीदने से आपको सभी खेल देखने को मिलेंगे एंड दैट इज़ लाइव।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज़। मैं हूं जिकाश एंड कार्यक्रम की शुरुआती पर हमने बातें करना शुरू किया था अबाउट दी 17 SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसको लेकर हमने 17 गोल्स के बारे में बताना शुरू किया था। वी वेंट थ्रू 10। नंबर 11 पर है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। नंबर 12 पर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 पर आता है क्लाइमेट एक्शन। नंबर 14 पर है लाइफ बिलो वाटर, हमारे मरीन, हमारे ऐसे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं। 15 पर है लाइफ ऑन लैंड। नंबर 16 इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और नंबर 17 विच इज द लास्ट वन इज पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो इन 17 गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जा रही है बाय द ईयर 2026 तक हम आ पहुँचे हैं। 2015 में इसके बारे में बातें शुरू हुई थी। तो क्या आर वी ऑन ट्रैक ऑफ टू अचीव दिस? शायद नहीं। इसके बारे में पूरा रिपोर्ट आया है स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 में शुरू हुआ, तो एक साल बाद 2016 में रिपोर्ट दिया गया कि कैसे हम इसको अचीव करने जा रहे हैं, क्या हम अचीव कर लेंगे या नहीं। 2016 से लेकर 2025 तक के रिपोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको इसको पढ़ना चाहे आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी ईयर UN सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट करते हैं। एक एनुअल SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट विच इज़ डेवलप्ड इन कोऑपरेशन विद द UN सिस्टम एंड बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डाटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट एट रीजनल लेवल। तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट, दैट इज आपको मिलेगा SDGs.UN.ORG के वेबसाइट पर।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं ऑल्सो, एंड हमने बातें की अबाउट रग्बी, सॉरी फीफा वर्ल्ड कप 11th को ओपनिंग होगा, 12th से पहला गेम खेला जाएगा। उसी महीने में इन द मंथ ऑफ जून वीमेंस T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। 13 तारीख जून को पहला मैच खेला जाएगा बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका। आई एम टॉकिंग अबाउट वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। इसमें काफ़ी सारी टीमें हैं एंड इन टोटल 12 टीम्स है। पहले पूल में, पूल वन में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका है, और पूल टू में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें हैं। तो मैचेस, जैसे कि मैंने कहा, विल बी किकिंग ऑफ ऑन द 13th ऑफ जून इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में। उसी दिन स्कॉटलैंड और आयरलैंड खेलने वाले हैं। 5:30 AM पहला मैच, सेकंड मैच 9:30 PM। 14 जून को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेलेंगे। वेस्ट इंडीज़ एंड न्यूजीलैंड आर प्लेइंग ऑन द 14th ऑफ जून सुबह 5:30 AM पर। तो जैसे जैसे ये मैचेस नज़दीक आते जाएंगे, बिल्डअप और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे यूं ही, राइट हियर ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा। प्लस हमारे जितने भी सोशल हैंडल्स है, इस पर भी बिल्डअप्स हम आपके लिए शामिल करते चलेंगे एज दीज मैचेस कम क्लोजर।

संडे नाइट मेलोडीज का सफर जारी है एंड टूर्नामेंट्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं अबाउट वर्ल्ड कप जो इस साल खेले जा रहे हैं. हमने स्टार्ट किया ऑफ किया था विद फीफा वर्ल्ड कप. 12 जून को पहला मैच खेला जाएगा. 13 जून को वीमेंस टी ट्वेंटी का टेनिस होता ही नहीं है. टी20 का टेनिस होगा भी कैसे, नहीं हो सकता. यस, टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप वीमेंस डिवीजन का ये शुरू हो जाएगा 13 जून से. एंड द नेक्स्ट बिग वन फॉर अस देर इज न्यूजीलैंड. ऑफ कोर्स फीफा में भी हम हैं, लेकिन रग्बी लीग वर्ल्ड कप ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है फॉर न्यूजीलैंड. ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कुक आइलैंड्स, इंग्लैंड, सामोआ, लेबनान, टोंगा, पापुआ न्यूगिनी और फ्रांस के लिए, क्योंकि ये सारी टीमें खेलने वाली है इन दिस ईयर्स रग्बी लीग वर्ल्ड कप. पूल ए में है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और कुक आइलैंड्स. पूल बी में है सामोआ, इंग्लैंड और लेबनान. पूल सी में है टोंगा, पापुआ न्यूगिनी और फ्रांस. और इस साल रग्बी लीग वर्ल्ड कप दिस विल बी रनिंग फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर 2026 अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पापुआ न्यूगिनी. ये तीन कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही है. इट इज़ द लार्जेस्ट टूर्नामेंट इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री फीचरिंग 26 पार्टिसिपेटिंग नेशंस अक्रॉस 3 साइमल्टेनियस कॉम्पिटिशंस. तो रग्बी लीग वर्ल्ड कप में मेंस डिवीजन होने वाला है, वीमेंस डिवीजन होने वाला है एंड ऑल्सो द व्हील चेयर वर्ल्ड कप एज वेल. दैट इज गोइंग टू बी रिमार्केबल. आई एम वेटिंग फॉर दैट एज वेल. तो की फीचर्स में टूर्नामेंट स्केड्यूल फीचर्स ये जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे आपको हम बताते रहेंगे. वैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये खेलने वाली है इन सिडनी. टोंगा, सामोआ, पैरामेटा ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले हैं और मेंस फाइनल विल बी टेकिंग प्लेस इन द सनकोप स्टेडियम इन ब्रिस्बन. तो इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जैसे जैसे नवंबर का महीना हमारे और भी नज़दीक आता रहेगा. हुम आर यू बेटिंग ऑन? वैसे देखा जाए तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि मेजॉरिटी ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज आर इन दिस टूर्नामेंट. ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, फिजी, कुक आइलैंड्स हो गया, सामोआ हो गया, टोंगा हो गया, पापुआ न्यूगिनी, ये इक्वेटर के नीचे वाले कंट्रीज हैं. तो 10 कॉम्पिटिंग टीम्स हैं इन द मेन मेंस पूल और इन टोटल मेंस, वीमेंस और व्हीलचेयर टीम्स को मिलाकर 26 पार्टिसिपेटिंग नेशंस रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने वाले हैं.

रग्बी लीग वर्ल्ड कप के बारे में हम बातें कर रहे थे, तो इट्स वेरी फिटिंग कि हम ऑल्सो बातें करें अबाउट दी नेशनल रग्बी लीग, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की ढेर सारी टीमें हैं एंड न्यूजीलैंड की सिर्फ एक टीम सभी को जोर लगा रही है। पैंथर्स एट द टॉप ऑफ द टेबल एट द मोमेंट विथ 22 पॉइंट्स। वॉरियर्स इन्होंने अच्छा खेल खेला है कल और दे आर मेंटेनिंग देयर पोजीशन। इसके अलावा लेट्स लुक एट द गेम्स जो खेले जा रहे हैं फ्रॉम फ्राइडे 29th ऑफ मे, अगले सप्ताह। दिस वीक वॉज वीक 12, नेक्स्ट वीक विल बी वीक 13 ऑफ 27। शार्क्स आर किकिंग ऑफ विद सी ईगल्स ऑन फ्राइडे 29th मे 10 बजे रात को। सैटरडे दिन में शाम को 5 बजे नाइट्स और ईल्स खेलने वाले हैं। वेस्ट टाइगर्स सैटरडे 7:30 PM अगेंस्ट बुल्स। स्टॉर्म और रूस्टर्स 9:35 PM ऑन 30th ऑफ मे सैटरडे को। और संडे को दिन में 4 बजे ब्रोंकोस और ड्रैगन्स खेलेंगे। राइडर्स और काउबॉयज 31st मई संडे को 6:05 PM पर। एंड द वीक ऑफ वीक 13 इट इज़ कमिंग टू अ क्लोज विद पैंथर्स टेकिंग ऑन वॉरियर्स। टॉप ऑफ द टेबल क्लैश ये होने वाला है। एंड आई सीरियसली थिंक कि अगर आप बेटिंग करते हैं वॉरियर्स पर एंड इफ दे विन, अच्छा खासा मोटा रकम आप उठा सकते हैं। ना आई एम नॉट प्रोमोटिंग गैम्बलिंग, लेकिन अगर आप यूं ही फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस बेटिंग करते हैं, पुट योर बैट्स ऑन वॉरियर्स। बहुत ज़्यादा नहीं, बस $10-15 लगाइए, क्योंकि अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जीत गए तो भाई यू कैन कॉल मी आउट फॉर डिनर और लंच। वॉरियर्स एंड पैंथर्स प्लेइंग ऑन द 31st ऑफ मे रात को 8:15 PM पर।

0: या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood.

0: 24 तारीख मई का ये सफर है संडे नाइट मेलोडीज में। मैं चिकाश आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रहा हूं दिल से। मैं 9 से 10 बजे के बीच हम गज़लों की बारिश करते हैं और गज़लों के साथ में कुछ प्यारे प्यारे शेर व शायरी पोइट्री भी आपके साथ में हम शेयर करते हैं, विच इज़ समथिंग आई पर्सनली लव टू डू, रीडिंग पोइट्रीज। ये 3-4 लाइनों वाले वो व्हाट्सएप वाले शायरीज नहीं, बल्कि यू नो दिल को छू लेने वाले जिसमें गहरे जज्बात छुपे होते हुए होते हैं, ऐसी पोइट्री कविता ये पढ़ना और लिखना मुझे बहुत ही पसंद है। तो आइए एक घंटे के लिए खो जाते हैं और गज़लों में डूब जाते हैं, कुछ दिल की बातें सुनते हैं, कुछ दिल में रहने वालों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं विद सम ऑसम ऑसम लाइनअप इन दिस आवर। इस घंटे पर और भी हम बातें करेंगे अबाउट द वेदर, आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है। वी हैव बीन प्रीटी लकी इन ऑकलैंड क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है। हाँ, मुझे चलता है, ठंड चलती है, लेकिन जब तक बारिश ना हो आई एम ओके विथ ऑटम एंड विंटर। बारिश होने लगती है तो कभी कभी मज़ा आता है, आप घर पर बैठे हैं, कहीं जाना नहीं है तो ठीक है, अगर कहीं बाहर जाना है, आउटडोर वॉक करना है और ठंडी में बारिश हो जाए तो भाई मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो एनीवे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेदर फॉर द कमिंग वीक इन अ शॉर्ट वाइल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस गज़लों के आवा को विद दिस ऑसम ऑसम पोएट्री एंड दिस ऑसम गज़ल बाय आशा भोसले एंड जगजीत सिंह। तुम्हारी याद आती है, ये इस कविता का टाइटल है। शाम क्षितिज पर जब लालिमा छाती है, रुख बदलकर पश्चिम से हवाएं आती है, धरती सूरज को अपनी गोद में सुलाती है, प्रीतम मुझे तुम्हारी याद आती है। जब रात अपने बाल बिखराए आती है, काले आंचल में सबको मीठी नींद सुलाती है, मेरी जागती आंखें तुम्हारा दीदार चाहती है, प्रीतम मुझे तुम्हारी याद आती है। सवेरे ठंडी हवा जब मन को लुभाती है, सूरज की किरणें सुनहरे रंग बरसाती है, पेड़ की डाल पर कोई चिड़िया गाती है, प्रीतम मुझे तुम्हारी याद आती है। जब सावन की घंघोर घटाएं छाती है, चमकती बिजलियां दिल को चीर जाती हैं, दिल के सागर में मौजे तूफान मचाती हैं, तड़पाती है, तरसाती हैं, मुझको बेचैन कर जाती है, प्रीतम मुझे तुम्हारी याद आती है, बहुत याद आती है।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले,

0: Jobby swag is on.
1: Hey.

संडे नाइट मेलोडीज में 9 से 10 बजे के बीच में हम गजलों का समा बांधते हैं, तो इसको एंजॉय करते रहिएगा। जल्द से हम विल हैव अ क्विक लुक एट द वेदर फॉर द कमिंग वीक। मंडे से फ्राइडे तक आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। मंडे को ऑकलैंड के लिए मोस्टली फाइन रहने वाला है, चांस ऑफ अ शावर इन दी आफ्टरनून, अन्यथा मौसम साफ ही रहेगा। मंगलवार को धूप ही धूप आप देखने वाले हैं, ऑसम डे फॉर ट्यूजडे। वेंसडे को फिर से बदली छाने लगेगी और शायद कुछ बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। थर्सडे को बदली ज़्यादा होने लगेगी और दिन में शाम के समय कुछ बारिश हो सकती है, रात होते होते बारिश साफ होता नजर आएगा। फ्राइडे को अगेन बदली और धूप का लुका छुपी का खेल चलता रहेगा। तो ऑल इन ऑल अ गुड वीक अहेड एज वेल इन टर्म्स ऑफ वेदर। थर्सडे को और वेंसडे को थोड़ी मोड़ी बारिश होगी, अन्यथा होल ऑफ दिस वीक इज गोना बी लवली क्लाउडी अ बिट, लेकिन ठीक ठाक वेदर रहने वाला है। टेम्परेचर्स की ओर देखें तो ऑन एवरेज अगले सप्ताह दिन में 17 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। ओवरनाइट टेम्परेचर फॉर नेक्स्ट वीक एवरेज 8 से 10 डिग्रीज तक रेंज करने वाला है। तो ठंड अब बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं आप भली भांति जानते हैं। एडोक्वेट अमाउंट ऑफ क्लोदिंग आप ज़रूर पहने, एंड ठंड में प्यास बहुत कम लगती है तो मेक श्योर कि रेगुलरली आप पानी पीते रहे ताकि आपके बॉडी को पर्याप्त हाइड्रेशन मिलता रहे और आपकी सेहत को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। देयर वॉज द वेदर इन स्टोर फॉर अस फॉर दिस कमिंग वीक। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ें हैं इस बार हम पर आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं इन दिस नेक्स्ट गज़ल।

0: भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: A love story that's not perfect, not planned, just a little real. Chand Mera Dil, starring Ananya Pandey and Lakshya.
2: Pyar mein thoda pagal to hona hi padta hai.
3: Hamari love story to legendary ban gayi.
1: An intense love story of the year, Chand Mera Dil, now showing in cinemas.
4: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
1: Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
5: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
1: The Beds R Us King's birthday sale is on now, with up to 60% off selected sleepyhead beds, like Serenity Breeze, queen size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.

गजलों के इस महफिल को और भी आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं जिकाश। संडे नाइट मेलोडीज में रात 9 से 10 बजे के बीच आपके लिए हम गजल लेकर आते हैं। एंड इफ यू लव देम डू लेट अस नो कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। 5599 पर मैसेज करें या फिर हमें ईमेल्स भेजें, हमारे फेसबुक पर जाकर कमेंट करें, क्योंकि आपका प्रोत्साहन, आपका फीडबैक हमें जब मिलता है तो हमें और भी मोटिवेशन प्राप्त होती है। आइए दो और गज़ल आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। पंकज उदास की आवाज़ है इन द नेक्स्ट वन, उसके बाद गुलाम अली की आवाज़ हम शामिल करेंगे। तो उससे पहले ये अंतिम कविता आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं। तुझ पर ही मरते रहे हैं हम, तुझ पर ही मरते रहे हैं हम, और तुझको ही अपना बनाना है। जानता हूँ रंग होते हैं खुशी बिखेरने के लिए, पर मुझे तेरी सादगी का रंग ही लगाना है। कटती नहीं ये अंधेरी सर्द रात, सुबह होते ही चांद को भी जगाना है। तू कहे तो सुबह को शाम कर दूं मैं, पर याद रखना तेरा भी कोई दीवाना है। दोस्त बैठे हैं महफिल में लोगों की तरह, तेरा साथ ना होना तो बस एक बहाना है। छुप जाता हूँ मैं रोज तुझे देखकर, छुप जाता हूँ मैं रोज तुझे देखकर, ये मेरा बचपना नहीं ये प्यार में शर्माना है। लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं लोगों की तरह, तुझे पाकर अपनी किस्मत को बताना है कि ये तेरा आशिक कोई नया नहीं है, ये पागल तो जमाने से भी पुराना है।

यो वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। दिल से कार्यक्रम में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन, 10 बजने को आए हैं तो कुछ हमारे जो लिसनर्स है, यू मस्ट बी गियरिंग अप फॉर योर नाइट शिफ्ट, या फिर यू हैव क्लॉक्ड इन, 10 बजे आप काम शुरू कर देते हैं। तो आई होप यू हैव डन योर सेफ्टी चेक्स, आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आपका हाईवीज है, हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ है और आपके सेफ्टी ग्लासेस है। इफ़ यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर ये सब कुछ रिक्वायर्ड है, इसे आपने सही तरह की तरह से पहना है एंड दीज आर ऑल अप टू डेट, ये एक्सपायर्ड नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में आए, हम नहीं चाहते हैं कि आप कॉर्नर्स कट करें, आप रिस्क लें एंड बदले में आपको लेने के देने पड़ जाए। तो हम आपका हमेशा भला ही चाहते हैं, बस आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो शुरू कर दिया है, शुरू करते हुए मेक श्योर कि ऑल दी सेफ्टी सिस्टम्स, ऑल योर चेकलिस्ट्स आर डन एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग योर वर्क वेरी सेफली, और काम ख़त्म करके दोबारा कल सुबह जब आपकी शिफ्ट ख़त्म होगी, सेफली सिक्योरली अपने प्यारे फैमिली के पास आप वापस जाए। कई सारे लोग देश से दूर आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई बात हो जाए जहाँ पर आप लौटकर अपने घर नहीं जा सके। तो छोटी सी बात है, ऑन अ वेरी इमोशनल नोट आपको हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। उधर वायोरू में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है ऑन अ रोड इन अ रोड एक्सीडेंट। अभी पिछले सप्ताह ही एक भाई साहब की मृत्यु हुई जहां पर एक टूटता हुआ पेड़ का डाल उनके सिर से टकराया और उनकी मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी। तो अनहोनी हो सकती है, लेकिन अपनी ओर से आप पूरा प्रयास करें कि आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। तो इतनी फिलोसफी, इतना ज्ञान, इतना लक्ष्य हमने दे दिया है, दिमाग में आपके घुस जाना चाहिए कि भाई जो भी करे, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन संडे नाइट मेलोडीज़। मैं हूं जिकाश क्योरा।

0: Do Chikash.
1: कुछ गोल और सेमी गोल गाने आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं गोइंग डाउन मेमोरी लाइन. और मेमोरी लाइन से याद आया मंथ ऑफ मई. नाउ नथिंग टू डू विद मेमोरी लाइन. मंथ ऑफ मई इज एनजेड म्यूजिक मंथ. और दिस वीक कमिंग वीक ये आखिरी सप्ताह रहेगा फॉर द म्यूजिक मंथ. आज है 24th और अगले संडे को 31st मई का महीना एंड हो जाएगा. तो एक हफ्ता आपके पास है टू सपोर्ट आवर शॉर्ट लिस्टेड आर्टिस्ट जिनको हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन आवर एयरवेव्स. इसमें शामिल है संदीप लुबाना, आंचल मारवा, अक्षत महाजन, मनप्रीत और मनप्रीत जी, मनु सिंह जी ये लिरिसिस्ट हैं, शाश्वत राय लव्स राइटिंग ही इज़ अ लिरिसिस्ट एज वेल, प्लस नील पटेल. इनके द्वारा रचाए गए कुछ गाने आपके लिए हम पेश कर रहे हैं ऑन एयर. इनको आप अपना प्यार देख सकते हैं, इनके लिए आप मैसेज भेज सकते हैं 5599 पर. आप बस MM लिखे और आर्टिस्ट का नाम लिखे, दैट विल बी योर वोट फॉर दैट आर्टिस्ट. और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फेसबुक पर आप जाए, उनके कुछ हमने वीडियोस डाले हैं, उनके वीडियोस पर आप लाइक कमेंट शेयर करें, दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज अ वोट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट. एंड एट द एंड ऑफ न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ, बेस्ड ऑन योर लाइक्स, कमेंट, शेयर्स एंड वोट्स, हम विनर घोषित करेंगे जिनको हैम्पर्स दिया जाएगा एंड इनको और भी प्रोत्साहित किया जाएगा टू क्रिएट मोर म्यूजिक, टू क्रिएट मोर आर्ट. सो दिस इज हैपनिंग इन द बैक योर बैकयार्ड बीट्स ड्यूरिंग द एनजेड म्यूजिक मंथ.

0: Hollywood's biggest hits. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
0: Available at selected branches. T's and C's apply. ऑकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: हाँ, अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहोहो. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.nz.

बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है फॉर दी मंथ ऑफ जुलाई। आने वाला सप्ताह मई एंड हो जाएगा, बीच में जून पड़ा है, उसके बाद में जुलाई। एंड जुलाई में क्या कुछ स्पेशल हो रहा है? वेल, जुलाई 25th को ट्रस्ट एरेना में एक तहलका मचने वाला है, जहां पर आपके रूह को छूने वाली आवाज़ राहत फतेह अली खान की आवाज़ आप सुनने वाले हैं। एंड दैट इज लाइव जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस की ओर से राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट आप एंजॉय करने वाले हैं। एज आई सेड, 25th जुलाई को ट्रस्ट अरेना में टिकट्स बहुत ही ज़ोरों से बिक रहे हैं। dryticketsdotcom पर आप जाकर टिकट्स ले सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू ट्राई योर लक टू विन 2 double passes, वेल, यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे फेसबुक पेज पर जाए, फेसबुक पेज पर राहत फतेह अली खान के लिए हमने एक पोस्ट डाला है, वहाँ पर हमने कुछ इमोजीज डाली है जिसको आपको देखकर पहचानना है कि किस गाने के लिए हम संकेत कर रहे हैं। इमोजीज को देखें, इमोजीज को देखते हुए ये पता लगा कि ये इमोजीज किस गाने को सिग्नल कर रहा है। एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट, किसी को आप टैग भी कर सकते हैं ताकि वो भी आकर अपना कमेंट डाल सके। एंड टुगेदर यू ऑल हैव द चांस टू विन 2 double passes फॉर दिस ऑसम ट्रस्ट एरेना में होने वाला कॉन्सर्ट राहत फतेह अली खान का ऑन द 25th ऑफ जुलाई।

काफी सारे लोग हैं जिनको कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना बहुत ही पसंद है एंड दे आर अ लॉट ऑफ पावरफुल पीपल जो लोगों की फिरकी लेते हैं। एक ऐसे शख्स है इलोन मस्क और अभी हाल ही में काफी इंस्टाग्राम यूजर्स को इन्होंने नाराज किया है। इलोन मस्क ही हैज स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। इन्होंने ये कहा कि इंस्टाग्राम इज फॉर गर्ल्स व्हाइल मॉकिंग मैन हु शेयर देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स विद हिम। Musk made the comment on X during a viral discussion about social media habits, food posts, thirst traps, and constant Instagram stories. Later, he added another comment saying that when grown men send him their Instagram profiles, he wonders if they are transitioning or what. Well, ye X, yani ki formerly known as Twitter, ko own karte hain. Obviously, he will say bad things about his competitor, which is Instagram. Lekin आई एम नॉट सेइंग कि इनके बात से मैं सहमत हूँ। एक बात मुझको बहुत खटकती है, लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा फिल्टा मारते हैं एंड गर्ल्स को मैं नहीं कह रहा हूँ, दे वॉन्ट टू लुक प्रिटी, मेकअप करते हैं एंड ओबियसली एवरी वन लव्स लुकिंग एट प्रिटी गर्ल्स। लेकिन कुछ मर्द ऐसे हैं जो लड़कियों वाले फिल्टर डालकर एकदम से पाउट करके, होठ लाल करके, शेड्स वाले गाल पे क्या वो पिंक पिंक डाल देते हैं और चेहरे की झुर्रियाँ एकदम से मिटाकर अपना फ़ोटो डालते हैं और कुछ हद तक ट्रांजिशनिंग ओ व्हाट वाला जो कमेंट है इनके ऊपर लागू हो सकता है। हैव यू कम अक्रॉस बॉयज़ या मैन जो एकदम से लड़कियों वाले फिल्टर डालकर और बहुत ही प्राउडली अपना फ़ोटो डालते हैं? आई हैव सीन मैनी ऑफ देम और एकदम से इक का एक फीलिंग आता है, यू नो बट इक इज आई सी के वैसी वाली फीलिंग आती है उसको देखकर। मन करता है कि फ़ोन में हल कर उनके चेहरे से फिल्टर निकाल कर और पूछ कि भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ शायद फीलिंग्स सेंटिमेंट शेयर कर रहे हैं एलन मस्क भी। मैनी यूजर्स ऑफ इंस्टाग्राम इन्होंने क्रिटिसाइज किया है द कॉमेंट्स एंड कॉल्ड हिम सेक्सिस्ट व्हाइल अदर्स मॉक्ड मस्क विद जोक्स about Brostagram and alpha male selfies. This controversy also brought back discussion about Musk's repeated criticism of Meta platforms and his strained relationship with his transgender daughter Vivian Jenna Wilson. Now, whatever I've said, I'm not criticizing or किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। I'm just after those people, या फिर it seems concerning जो हद से ज़्यादा फिल्टर मारते हैं, especially boys। आपका क्या सोचना है इसके बारे में?

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

कितने लोगों ने फिल्म पीके देखी है, वो आमिर खान वाली देखी है। काफ़ी आइकॉनिक सीन्स उसमें से आपको याद होंगे, जैसे कि मंदिर के दान पेटी में से वो डंडा डालकर पैसे निकालते थे, है ना। एक और एक सीन उसमें था डांसिंग का वाली सीन। नाउ इस पर आई वॉन्ट गो इन एनी फर्दर डिटेल, आप जानते हैं कि वो सीन क्या था और डांसिंग का क्या है। वेल, नियो ET9 ये एक ब्रांड है एंड एक कार है। दिस इज अ व्हीकल, द नियो ET9 नोन एज द डांसिंग का। दिस अमेज्ड एवरीवन व्हेन विद इट्स एडवांस्ड सस्पेंशन, जहां पर इट वाज सीन डांसिंग। इसका वीडियो आप चेकआउट करें, लुकअप NIO ET9। ये कार किसी के मदद के बगैर खुद ही नाच रही है, तो हैव अ लुक, यू विल बी स्माइलिंग आफ्टर लुकिंग एट दैट। और पीके का डांसिंग का सीन आपको याद आ जाएगा। बीजिंग ऑटो शो में इस नियो ET9 गाड़ी को रिवील किया गया और इट्स क्वाइट रिमार्केबल कि इसका सस्पेंशन सिस्टम खुद ब खुद ऐसा कर सकता है।

वेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक,

Palenhe on the airwaves of 104.2 FM and on Rover. Rover download kiya hai aur Churl agar aapne abhi tak nahi khela hai, well, you are missing out on some really good opportunities to win some cash. Churl game jari hai, aap Rover par jaye Churl khole aur bas apni buddhi mein se kuch words nikale jiske bare mein wahan par question diye gaye hain. Kuch aise words hai jo specifically New Zealand mein use kiye jate hain, Kiwi slangs hai. To kya inke bare mein aap jante hain? देखो कि आप कितना जानते हैं इस कंट्री के बारे में. तो बस आंसर देते हुए यू विल गो इनटू द ड्रॉ. अगर दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर हिंट्स भी दिए जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी है. इसको फॉलो करते हुए आप सही आंसर दे सकोगे विदाउट हिंट्स. और एकदम फटाक से जल्द से अगर आप आंसर दे देते हैं तो आपको डबल एंट्रीज मिलेगी टू विन $100 ऑन अ डेली बेसिस. रोज आप खेलते हैं, रोज आप जीत सकते हैं. तो गो चेक आउट चर्डल ऑन रोवा. आइए शुरुआत करते हैं इस घंटे की विद दिस ऑसम ऑसम ट्रैक जो आई थिंक सबके दिल के करीब है. अलका याग्निक की आवाज़ है. क्योरा

संडे नाइट मेलोडीज के अंतिम घंटे में हम आपका सुकून आपको वापस करते हैं। आई हैव गॉट अ ऑसम ऑसम ब्यूटीफुल लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स फॉर यू टू एंजॉय। और इन गीतों में हम ज़्यादातर शामिल कर रहे हैं पीपल हु आर वाइंडिंग डाउन। हफ्ता भर आपने कड़ी मेहनत की है, एकदम से दिमाग को भूज कर आपने काम किया है एंड देह को आपने तोड़ कर काम किया है, खून पसीने लगाकर आपने मेहनत की है और अब आराम फरमा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दिमाग को आप आराम दे रहे हैं, अपने शरीर को आराम दे रहे हैं, ट्राइंग टू गेट रेडी फॉर द वीक दैट इज़ येट टू कम। तो आप सभी को हम शामिल कर रहे हैं इस हसीन से पल में, especially all our ride share operators, जितने भी long haul operators हैं, truck drivers हैं, जितने भी ride share operators हमारे Uber, Ola, taxi drivers हैं, रात को आप काम कर रहे हैं, लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के लिए चीज़ें उन तक पहुंचा रहे हैं, भाई thank you so much। आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं।

ऑकलैंड काउंसिल द्वारा एक इनिशिएटिव लागू किया गया है, एक रीजन वाइड मूवमेंट है इस जून में, जहां पर यू कैन हेल्प टू ग्रो द सिटीज नेचर बाय प्लांटिंग अ फ्री नेटिव सीडलिंग एट होम। ये सीडलिंग आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा, वन सीडलिंग पर हाउस होल्ड। एंड दिस नॉट दिस संडे, 7th of June को ऑकलैंड बोटेनिक गार्डन्स में आप जाकर अपने लिए एक नेटिव प्लांट का सीडलिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोकल एक्सपर्ट्स को मिल सकते हैं। यू कैन लर्न हाउ टू केयर फॉर योर सीडलिंग एंड डिस्कवर हाउ नेटिव प्लांटिंग कनेक्ट्स टू वाइडर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एफर्ट्स। आई विल डेफिनेटली बी गोइंग देयर। मेरे घर पर मेरे पास बड़ा सा आंगन है, आई विल डेफिनेटली प्लांट अ नेटिव ट्री, ताकि 10-15 सालों में अगर जान रही तो बच्चों को बता सकूंगा या फिर खुद अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम से एंजॉय कर सकूंगा और बड़े फख्र से कह सकूंगा कि यार ये पेड़ मैंने डाला था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस दुनिया में आप अपना नाम छोड़कर जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। सोचिए इसके बारे में एंड दिस विल गेट यू मोटिवेटेड। तो संडे 7 जून बोटनिक गार्डन्स में सुबह 10 से 2 बजे के बीच में आप जाइए, अपने लिए एक पौधा आप लाइए और यू कैन हेल्प मेक दिस वर्ल्ड बेटर बाय प्लांटिंग वन ट्री एट अ टाइम। अलग अलग जगहों पर और भी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको टू गेट प्लांट्स। यू कैन हेड टू ourauckland.auckland.council.gov.nz, इस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

और अब तो हमारा भी जाने का वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए। एक बार फिर से आपको हम याद दिला दें कि आपके साथ और आपके प्यार के लिए हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपके प्यार से हमें ये खिताब प्राप्त हुआ है कि हम न्यूजीलैंड में नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन है। सबसे ज़्यादा लोग हमें सुनते हैं, सबसे ज़्यादा लोग हमें पसंद करते हैं। तो गेट ऑन टू दी वैगन ऑफ पीपल हु लव द बेस्ट, क्योंकि यहाँ से हम आपको बेस्ट देते हैं, क्योंकि यू डिज़र्व नथिंग लेस। तो यूं ही अपना प्यार हमें देते रहे, अपना साथ हमें देते रहे, और यूं ही हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, और यूं ही हम आपके सुख दुख में आपसे कदम मिलाकर चलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड, और तब तक के लिए आप ख्याल रखें। याद है ना, आने वाला वीकेंड किंग्स बर्थडे है, मंडे को छुट्टी रहने वाली है, नॉट टुमारो द वीकेंड उसके बाद वाला। तो इन्जॉय करें, प्लान आउट करें, फैमिली टाइम इन्जॉय करें, बस काम ही ना करते रह जाए। ऐसा ना हो कि बस ज़िंदगी आपके काम में ही बीत जाए। समय निकाले खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, क्रिएट सम मैजिकल मोमेंट्स, सम मेमोरीज, जिसके बारे में बाद में चलकर आप सोच कर मुस्कराएंगे। मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए आप अपना ज़रूर ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑसम। शुभ रात्रि, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: नट खट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा
1: ए छोरा।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: अब अगर नेट जियो सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा. हॉन्ट क्या करेगा? हॉन्ट.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड.
2: तुम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
3: जलवा.

0: भीड़भाड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Budget gaane. Night Flight.

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे
0: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: बेस्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

6 to 10 AM. रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार, क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर। Night Flight.

चाहे आप हमके दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021 769 755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.

0: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स .co.nz.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 AM
4: Reliance Ventilation System।
5: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: Oh, that's not good। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
8: The Beds R Us King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manikau and Pukekohe.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The government is being accused of hiding meetings with major emitters ahead of a law change. The planned legislation would stop big corporations being sued for climate-related damage. Newly released documents show the Prime Minister's office met with lobbyists from Fonterra and Z Energy, which were not disclosed. They only came to light through court action, despite Official Information Act requests. The closure of the Strait of Hormuz is taking a major toll on more than fuel. An ASB report suggests household spending is about to come under further pressure with supply chain costs rising. Senior economist Kim Mundy says people should prepare for ongoing volatility.
10: That's sort of feeding into our forecast for a contraction in economic growth in Q2 of this year.
9: There's a sigh of relief from federated farmers over the government's pledge to help tackle wildling pine infestations. It's stumping up $79 million. Pest spokesperson Richard Dawkins says it finally takes aim at a major cause of the issue.
11: For the first time, there is specific funding to target the actual seed sources. If that just continued, we'd just continue to see the spread.
9: A man has died after being attacked by a shark in far north Queensland. Police believe he was spearfishing when he was bitten near Cairns yesterday. In sport, after 14 years in the Premier League, West Ham have been relegated to the Championship on the final day of the season. A 3-0 victory over Leeds wasn't enough as Tottenham scored a 1-0 win over Everton to ensure their survival. Football updates brought to you by Hisense. And the Cowboys have leapfrogged the Rabbitohs into 6th place with a 30-18 win to complete round 12 of the NRL.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
13: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय वर्की वरीद की पुत्री स्वर्गीय कृष्ण नायडू की पत्नी यानी डेविड नायडू, जोन नायडू, कैथरीन, आयरीन, एलिजबेथ और फ्लेविया की मां वर्जीनिया नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आज शाम 6 बजे आप होली क्रॉस चर्च करूथ रोड पापाटोईटोई जा सकते हैं। प्रार्थना सभा कल दिन में 11 बजे होली क्रॉस चर्च करूथ रोड पापाटोईटोई में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार 1 बजे मैंग्री लोन शमशान भूमि 85 मैकेंसी रोड मैंग्री में किया जाएगा। स्वर्गीय वर्की वरीद की पुत्री यानी स्वर्गीय कृष्ण नायडू की पत्नी और डेविड नायडू, जोन नायडू, कैथरीन, आयरीन, एलिजबेथ और फ्लेविया की मां वर्जीनिया नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आज शाम 6 बजे आप होली क्रॉस चर्च करूथ रोड पापाटोईटोई जा सकते हैं। प्रार्थना सभा कल 11 बजे होली क्रॉस चर्च पापाटोईटोई में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार 1 बजे मैंगरी लोन शमशान भूमि 85 मैकेंजी रोड मैंगरी में किया जाएगा। ये रही शोक सूचना।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
14: शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
13: 11.5 degrees temperature Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain aaj ka high. 18 overnight kam se kam 7 degrees. Generally a fine day. Subah ke waqt ho sakta hai kuch halke badal chhaye rahe. Sunrise 7:19 AM par aur sunset aaj ka 5:17 PM par hoga.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune Fuel. Everyone, big or small, bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
13: 3:30 हो रहे हैं, 6 बजकर नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज मंडे है, 25th of May, आज की ये सुबह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी आज के सुबह की बहुत सही शुभकामनाएं हमारी ओर से, और वेलकम टू अ न्यू वीक, अ न्यू बिगिनिंग,
13: अ न्यू डे, अ न्यू मॉर्निंग। और वीकेंड अच्छा रहा आपका?
2: मेरा तो अच्छा था, एंड उम्मीद है कि आप सबका भी अच्छा गया हो। समथिंग दैट यू डिड दिस वीकेंड दैट स्टूड आउट फॉर यू, समथिंग दैट यू अचीव्ड दिस वीकेंड, जिसके लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, एंड फाइनली यू गॉट इट। सो इफ इट हैज हैपेंड फॉर यू एंड यू आर हैप्पी टू शेयर अबाउट दैट, तो याद भी हमारे साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं 5599 पर, या फिर कुछ ऐसा आपने किया जो आपको इतना मेजमराइजिंग लगा दैट यू थिंक कि लाइफ में एक बार तो ये चीज ट्राई करनी ही चाहिए। And if you'd like to share the details with everyone, so remember again, 5599 is the number जिस पर आप हमें text कर सकते हैं।
13: और आज के इस सफर, आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं, अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ होने वाला है। ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। आज की सनी साइड अप कहानी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए होने वाली है थोड़ी ही देर में, जिसके बाद ग्लोबल हेडलाइंस आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: Sunnyside Up.
1: आज की कहानी एक पति और पत्नी की है. पत्नी का नाम है कैरल, शी इज 60 ईयर्स ओल्ड, और उनके पति का नाम है डेविड. कैरल जो है, इनको एडवांस हंटिंगटन डिजीज है और उन्हें देखभाल के लिए शी बेसिकली इज फुल टाइम इन हर व्हील चेयर, और एक फुल टाइम केयर गिवर की ज़रूरत पड़ती है. तो कुछ साल पहले उनके पति जो हैं डेविड, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो फुल टाइम अपनी पत्नी का ख्याल रख सकें.
2: ओके.
1: अभी हाल ही में क्या हुआ, उनके लोकल हॉस्पिस ने ये अनाउंसमेंट किया कि दे वे शॉर्ट ऑन फंडिंग. तो डेविड ने डिसाइड किया कि वो एक बहुत ही ग्रूलिंग 160 माइल वॉकिंग चैलेंज में हिस्सा लेंगे ओवर 7 डेज. 160 माइल्स. और क्या हुआ कि उनकी पत्नी को फुल टाइम किया की जरूरत है. कैरल को उन्होंने घर पर नहीं छोड़ा. ही पुश्ड हर व्हीलचेयर फॉर 10 to 15 miles अ डे. मौसम चाहे जैसा भी हो, हवाएं चल रही हो, बारिश हो, हर दिन 10 to 15 miles ओवर 7 डेज उन्होंने उनको पुश किया. एंड ब्रॉट हर बैक फॉर हर मेडिकल चेक्स एंड देन वेंट राइट बैक आउट अलोन टू फिनिश द डेली माइलेज. और जब डेविड जो है ये फिनिश लाइन पर पहुंचे आफ्टर 7 डेज, जो हॉस्पिस के स्टाफ है दे गैजेट एट द फिनिश लाइन, और कैरल भी थी वहां पर. डेविड ने रिपोर्टर्स को बताया कि कैरल अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, बट शी स्टिल ट्राइज टू टोक मी ऑन द रोड. अगर वो धीरे धीरे मंबल करते हुए अपने व्हील चेयर से मुझे एनकरेज नहीं करती तो आई वुड हैव स्टॉप्ड ऑन डे 3.
2: At least that is such a beautiful story. Ki at least they are there for each other. Aur apne apne tarike se ek dusre ko encourage kar rahe, look after kar rahe, which is a big deal.
1: Obviously, dusri cheez ye bhi ki at least jab unke local hospice ko pata chala ki ya hospice ko madad ki zarurat padi, to David ne ye nahi socha bhai main kaise part le sakta hu, mujhe to full time Carol ki dekhbhal karni hai. Carol to bahar ja nahi sakti, wo to full time wheelchair par hai. You know, he beat all the odds to take part in that fundraiser.
2: Absolutely. So aise kuch khoobsurat kahaniyan hoti hai aur aise hi kuch khoobsurat relationships hote hai जो बस यू ही बन जाते हैं. एंड व्हेन दे हैपन देन मैजिक इज डेफिनेटली देयर. एंड इन दैट सिचुएशन वो हमारे लिए एक सनी साइड अप स्टोरी बन जाती है जो हम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं ऑन द शो. सो चलिए ऐसे और भी बहुत से इंटरेस्टिंग खबरें और खूबसूरत खबरों के साथ हर सुबह की शुरुआत हम जरूर करने की कोशिश करते हैं. दैट्स व्हाट वी विल ट्राई एंड डू टुमारो एज वेल. बट फॉर टाइम बीइंग थोड़ी देर बाद आज के ग्लोबल हेडलाइंस.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: ए देखो आ गए.
3: Gentlemen,
5: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के.
6: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
5: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
7: The red hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
8: Beating pump prices is easy when you take a bus. And with 45 Auckland Transport bus routes that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week, chances are there's one going your way. Check the AT Journey Planner.
5: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, ईरान और अमेरिका ने एक लॉन्ग लास्टिंग सेटलमेंट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेहद करीब होने के संकेत दिए हैं, जिससे चल रही फाइटिंग को रोका जा सके और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को धीरे धीरे खोला जा सके. हालांकि ईरानियन स्टेट मीडिया का कहना है कि अभी एक दो क्लॉजेस पर मतभेद बाकी है, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि यूएस जल्दबाजी में कोई अग्रीमेंट नहीं करेगा. वुडवे के कंट्रोल और यूएस ब्लॉकेड हटाने की टाइमिंग को लेकर दोनों देशों के दावे अलग हैं। जहां ट्रंप फाइनल साइन होने तक ब्लॉकेड रखने पर अड़े हैं, तो वहीं ईरान स्ट्रेट पर अपना दबदबा बरकरार रखना चाहता है। दिल्ली में यूएस इंडिपेंडेंस के 250th एनिवर्सरी के एक इवेंट के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव फोन कॉल कर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया। इस इवेंट में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शामिल थे, जहां ट्रंप ने कहा कि इंडिया उन पर 100% भरोसा कर सकता है और दोनों देश पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। फिजी के एजुकेशन मिनिस्टर असेरी रनरोनरो को 14 मई को फाइकिक ने एक इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिसमें उन्होंने वॉलंटरिली शामिल होकर पूरा कोऑपरेट किया और कहा कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइकिक ने उनसे 2022 और 2023 के असेट डिक्लेरेशन पर सवाल किए, जिस पर रनरोनरो ने साफ किया कि उनकी कंपनी फाइनेंस लिंक कंसल्टेंसी 2014 से बंद पड़ी थी और उसमें कोई असेट्स या लाइबिलिटीज ना होने के चलते उन्होंने उसे डिक्लेयर नहीं किया था। आईपीएल के मैचेस सप्ताहांत एक बार फिर खेले गए। शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद की जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 55 रन से हुई। कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया और एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 रन से हुई। आज सुबह दिल्ली कैपिटल्स की जीत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 40 रन से हुई। प्लेऑफ के मैचेस इसी बुधवार से खेले जाएंगे। पहला प्लेऑफ मैच बुधवार की सुबह 2 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद थर्सडे को दूसरा प्लेऑफ का मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने को है। इन मैचेस पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
5: Bollywood's most wanted.
0: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
4: Main laun apna A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 28 मिनट हो रहे हैं अभी 6 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और अभी वक्त है देखिए बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है. डिड यू मैनेज टू वॉच समथिंग ओवर द वीकेंड?
1: नो अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट. एक्चुअली नहीं, एक्चुअली आई डिड बट प्रोबब्ली इट वाज सो बैड कि मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने वो देखा. आई वॉच्ड देसी ब्लिंग ऑन नेटफ्लिक्स. एक ये एक वेब सीरीज है, नॉट अ वेब सीरीज है लाइक अ रियलिटी शो ऑन OTT जिसमें बहुत सारे अलग अलग यू नो वो है रिच पीपल है एंड इनकी लाइफ स्टाइल, इनके फ्रेंडशिप्स, इनके इक्वेशंस जो है ये आपको दिखाई देंगे इसमें. एंड टू एडिशन जो इसमें हुआ है बेसिकली बिकॉज दे हैव मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू दुबई रिसेंटली फॉर देयर बिजनेस एंड फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑल इज करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश. सो काफी जाने माने यू नो टीवी पर्सनैलिटीज हैं ये. तो ये मूव हुए हैं दुबई जहाँ पर इन्होंने एक पर्टिकुलर सर्कल को ज्वाइन किया एंड वहाँ पर कैसी लाइफस्टाइल है, क्या बिजनेस कौन करता है एंड दे हैव ट्राइड टू ग्रो देयर ओन बिजनेस एंड ऑल उसके बारे में है ये. बट मेरे को ये सच में इतना ऐसा लगा कि मैंने ये क्या देख लिया. मैंने काफी एपिसोड्स, 7 एपिसोड्स थे आई थिंक एक सीजन के पहले सीजन में और मैंने काफी एपिसोड्स भगा भगा के देखे बिकॉज आई जस्ट कुडंट टेक इट एनीमोर. देयर इज अ कपल जिनके बारे में दिखाया जाता है कि दे क्वाइट रिच, क्वाइट नहीं इनफेक्ट बहुत ज्यादा रिच है एंड जो वाइफ है उनके पास 40 किलोज का गोल्ड है.
0: अच्छा.
1: एंड उनके हस्बैंड के पास एक प्राइवेट यॉट है और उस यॉट पर वो एवरी वीकेंड पार्टी करने जाते हैं. इनफैक्ट एवरी वीकेंड अलग अलग यू नो ग्रुप्स के साथ जिसमें अलग अलग लड़कियां भी होती हैं उनके साथ वो पार्टी करते हैं एंड शी सेज शी हैज नो ऑब्जेक्शंस, शी इज ऑल गुड विद इट एज लॉन्ग एज शी इज नॉट पार्टिंग विद वन सिंगल पर्सन और एक लड़की के साथ बार बार. सो यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव सेड दैट दे हैव शोन व्हिच आई फील लाइक यार इसकी क्या जरूरत थी बट या too much drama in fact.
0: Okay. वैसे तेलुगु डायरेक्टर वंशी पैडपली ये काम कर रहे हैं सलमान खान के साथ.
1: अच्छा.
0: ये एक बिग बजट एंटरटेनर है. अभी इसको टेंटेटिव नाम जो दिया गया है SVC 63, तो नाम अभी पूरा पता नहीं है कि क्या होगा. और इस प्रोजेक्ट में सलमान के साथ नयनतारा भी काम कर रही हैं और अगर जो रिपोर्टें आ रही हैं उसकी माने तो दो बहुत ही प्रोमिनेंट कंपोजर्स जो हैं इस फिल्म के म्यूजिक प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं. जो रिपोर्ट से उसके मुताबिक जो दो कंपोजर्स हैं अनिरुद्ध रविचंदर और थमन. तो थमन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है. आई हैवंट हर्ड मच अबाउट इट. मे बी ज़्यादा उन्होंने साउथ में ही काम किया हो बट अनिरुद्ध रविचंदर बॉलीवुड सर्कल्स में काफ़ी पॉपुलर हैं. ऐसी बातें कही जा रही है कि अनिरुद्ध शायद इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हैंडल करे जबकि थमन जो है इस फिल्म के गाने जो हैं ये कंपोज कर सकते हैं. हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उनकी ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है रिगार्डिंग द म्यूजिक टीम. और पहले ये खबर आई थी कि इस फिल्म को शायद टाइटल दिया जाए द मैसेंजर्स, उसे भी अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है. तो नयनतारा हैं इस फिल्म में, सलमान खान हैं और ज़्यादा कुछ डिटेल्स अभी रिवील नहीं किए गए हैं. सो लेट्स सी क्या होता है.
1: आपके लिए और भी अपडेट्स डेफिनेटली हम लेकर आएंगे कुछ और अपकमिंग मूवीज के बारे में. इनफैक्ट एक और एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे विच इज ऑलरेडी आउट देयर, रिलीज हो चुके हैं ये. एंड अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं देखने के लिए तो ये आप जरूर कर सकते हैं. बट फिलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हुए अभी बारी है कि थोड़ी देर बाद आपके लिए एक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट जो है ये हम लेकर आए और इस अपडेट के साथ साथ आपके साथ एक सवाल भी हम करेंगे जिसका जवाब देते हुए हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका भी है आपके पास.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Denza premium plug-in hybrid SUVs.
6: Fine weather all day, just patchy cloud, a high of 18 degrees. Coming in on the northwestern, looks like we've got an incident just before the causeway. Quite heavy, messy to Te Aratu South. And then once you get past there, pretty clear into the city. 34 minutes in from Massey is slow for this time. Southern 22 in from Manukau, slow patches from Papakura to Papatoetoe. Northern 19 from Constellation, slow Greville to Waido Valley.
5: Visit Denza, Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
7: Everything you love about Auckland.
4: Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
7: The Beds R Us King's Birthday Sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's Birthday Sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
8: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
9: Cooking ka asli flavor chahiye? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean, natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
10: From the age of 10, I knew you would come. I didn't know when, but you arrived. Almost identical twins. Not quite. One just slightly bigger than the other. But you are the bravest part of me. The older I get, you're not always first into the room, but sometimes, if I give you the support you need, you'll be first into the room. You're close to my heart, and I love you. My name is Ursula Carlson, and this is a love letter to my breast.
11: Get to know yours, visit breastcancerfoundation.org.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज गुड मॉर्निंग के आपके जो मैसेजेस आए हैं, राम राम, जय श्री कृष्ण, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे. मिस्टर मटा मटा की ओर से मैसेज आए हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
3: और इनके अलावा अगर देखा जाए तो आज हमारे पास बॉबी मान जी ने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है हर सुबह की तरह भेजा है. जय शिव शंभू, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव एन ब्यूटीफुल वीक अहेड, शिव शक्ति ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए बॉबी जी, आपको भी आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से.
2: जय भोलेनाथ, विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू अ वंडरफुल डे. विमलेश और प्रिया, आपके भी मैसेज के लिए, आपके वक्त के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. आज के इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको हम दे रहे हैं. और आज 25th ऑफ मई है, आज किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है. ख्याल रखें कि मैसेजेस जो हैं ये आप हमें भेज दें. 7:30 बजे के बाद आपको हम विश करेंगे इस प्रोग्राम में, तो आपके मैसेजेस तब तक या उससे पहले आ जाए तो बढ़िया होगा. आज 25th ऑफ मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है. यू लाइक फुटबॉल?
3: I like it, but not that much, क्योंकि I'm not really into sports. That's another problem. Like मुझे you know ज़्यादा नहीं पता होता है चीज़ों के बारे में.
2: आपको पता है इस साल FIFA World Cup जो है ये भी खेला जाएगा.
3: Yes, this is the year for FIFA World Cup. वो पता है. In fact, the official song है FIFA World Cup का, which every year is a big deal. वो भी release हो चुका है.
2: Every year कहाँ? चार साल.
3: I'm sorry, every 4 years.
2: तो वो भी रिलीज हो चुका है. और आज वर्ल्ड फुटबॉल डे है. वर्ल्ड फुटबॉल डे, यूनाइटेड नेशंस ने आज के इस दिन को वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया है. एंड एक रेजोल्यूशन है ऑन द स्पॉट एज एन एनेबलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे चार्टर्स वगैरह होते हैं. बेसिकली ऑल वी नीड टू नो कि आज वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है ये मार्क किया जा रहा है. और वर्ल्ड फुटबॉल डे के मौके पर एक सवाल भी कुछ देर बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे.
3: ओके, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे जो है ये भी मार्क किया जा रहा है. और प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है. और प्लास्टिक फ्री डे आज इंटरनेशनली जबकि सेलिब्रेट किया जाता है, मार्क किया जाता है, तो इससे जुड़े बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप भी अपने तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट आप एक नेबरहुड क्लीन अप ड्राइव जो है ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पर्टिकुलरली, या फिर आप चाहें तो यू कैन सपोर्ट बिजनेसेस दैट मिनिमाइज प्लास्टिक यूज़, या फिर सोशल मीडिया एंड इवेंट्स के थ्रू भी आप इससे रिलेटेड अवेयरनेस जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं. बट आई पर्सनली लाइक दिस वन, जो आप ज़रूर कर सकते हैं, विच इज़ चैलेंज योरसेल्फ टू अ प्लास्टिक फ्री डे. आज के दिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप खरीदते हैं या करते हैं जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, देन यू हैव राइटफुली कम्प्लीटेड द चैलेंज एंड यू शुड गिव अ पैट ऑन योरसेल्फ, अ पैट ऑन योर बैक बेसिकली फॉर डूइंग दैट. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो दिस इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ मच मोर हैप्पी एंड ब्यूटिफुल एनवायरमेंट अराउंड अस.
2: Alright. So, Dharmendra Acharya ji, a very good morning. Namaskaram. Thank you so much. आपके भी मैसेज के लिए 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. आपने कहा था कोई सवाल है आपके पास?
3: नहीं, ऐसा करते हैं, आप जो फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो कर लेते हैं, rather than you know some other question that will make more sense.
2: तो आज वर्ल्ड फुटबॉल डे के मौके पर आपको ये बताना है, इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 3 कंट्रीज में होस्ट किया जाएगा.
3: Yep.
2: आपको कम से कम किसी एक कंट्री का नाम बताना है.
3: मेरे को तीनों कंट्रीज का नाम पता है for a change.
2: Wow, you're so smart.
3: Yeah.
2: तो आप किसी एक कंट्री का नाम अगर तीनों बताएं तो तीनों बता सकते हैं, लेकिन
3: तीनों में से अगर कोई एक पता है तो वही एक आप बताएं.
2: हाँ, मिनिमम कम से कम एक कंट्री जो इस साल का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही है वो आपको हमारे पास भेजना है. सबसे पहले लिखना है BF, उसके बाद अपना जवाब लिखें और अपना नाम लिखकर 5599 पर आप हमारे पास अपना आंसर जो है ये भेज सकते हैं.

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience Southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Breakfast catch up. Throwback.
4: अभी 13.5 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और अभी एक इंटरेस्टिंग खबर जो है ये हमारे हाथ लगी है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं. लेबर पार्टी के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जो है स्टुअर्ट नैश इज मेकिंग अ रिटर्न टू पॉलिटिक्स.
5: ओके,
4: अवकाश ले चुके थे बट ही इज मेकिंग अ कमबैक but not in red.
5: Then he's changed the party.
4: Yes. Ye contest karne ja rahe hain elections for New Zealand first.
5: Ooh, that's interesting.
4: Yeah, New Zealand first. Napier electorate mein ye contest karne ja rahe hain. Aur ye contest karenge the seat he held for 3 terms as a Labour MP. इस बिफोर बीइंग सेक्ट फ्रॉम कैबिनेट उस समय पर जो प्राइम मिनिस्टर थे और करंट लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस इन 2023 कुछ मिनिस्ट्रियल ब्रीचेस के बाद उनको सेक किया गया था जैसे कि एनजेड हेरल्ड ने रिपोर्ट दी थी. और नैश 58 ईयर्स ओल्ड ये पहली बार पार्लियामेंट आए थे एज अ लिस्ट लेबर लिस्ट एम पी इन 2008 और फिर 2014 में जाकर नेपिया में इन्होंने जीत जो है ये हासिल की. ही हैज हेल्ड सम सीनियर पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग पुलिस रेवेन्यू फिशरीज ड्यूरिंग लेबर्स टाइम इन गवर्नमेंट. उस टाइम पर एनजेड फेस्ट भी इस कॉलिशन में था. और न्यूजीलैंड फर्स्ट लीडर विंस्टन पीटर्स ने बताया है कि उन्हें यकीन है नैश कुड रिटर्न टू कैबिनेट अगर न्यूजीलैंड फेस्ट इज पार्ट ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट. नो डाउट अबाउट इट. सो लेट्स सी. Stuart Nash is making a comeback to politics.
5: That's very interesting. And that too, कि वो same party के साथ नहीं contest करने वाले हैं. वो अपने party को बदल रहे हैं जिस party को support कर रहे थे. Now why is it interesting for me? क्योंकि ideologies इन दोनों parties की बहुत अलग अलग है. What Labour Party believes in certain चीजों में New Zealand First Party जो ये believe नहीं करती है. And if अ पर्टिकुलर पर्सन जो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो अब डिफरेंट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैज चेंज्ड. बट एनीवेज आने वाले दिनों में और भी अपडेट्स आपके लिए जरूर हम लेकर आएंगे.
4: फिलहाल आपने सवालों के जवाब जो हैं ये हमारे पास आप भेजते रहें 5599 पर. और सवाल है 3 कंट्रीज आर होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप दिस ईयर. उनमें से कम एटलीस्ट एक कंट्री तो शायद आपको पता हो.
5: किसी एक कंट्री का नाम आप हमें बता सकते हैं. एंड बाय द वे दीज ऑल 3 कंट्रीज आर वेल नोन कंट्रीज. ऐसा नहीं कि ये छोटी छोटी कंट्रीज है दैट्स व्हाई 3 मिलकर होस्ट कर रहे हैं. नो, इट्स लाइक ऑल 3 आर क्वाइट वेल नोन. इनफैक्ट एक कंट्री तो भी कुछ ज्यादा ही चर्चे में है. लाइक वे टू मच इन चर्चा आई गेस बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन हु रिप्रेजेंट्स दैट कंट्री उनकी वजह से. बट हाँ, काफी चर्चे में है.
4: तो अपने आंसर्स जो हैं ये हमारे पास आप भेज सकते हैं BF उसके बाद अपना जवाब और अपना नाम ये लिखकर भेजे. धर्मेन आचार्य जी थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए. शिखा हैं, ऐश हैं और नील आपने भी अपना जवाब हमारे पास भेजा है.
5: थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. और इनके अलावा हमारे पास द गार्डन्स से नितिका आपका आंसर जो है ये आया है. साथ में रोनल्ड आपका भी जवाब हमें मिल चुका है. एक बर्थडे ग्रीटिंग आया हमारे पास वेरी क्यूट वन. तो ये हम अगले घंटे आपके लिए जरूर करेंगे.
4: तो इंतजार करें, ये सब कुछ रहेगा। फिलहाल थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आएंगे। 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस जो है ये खेला जाएगा। ओवर द वीकेंड बहुत बहुत बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो है ये हुए। यू नो ऑकलैंड एफसी के लिए व्हाट अ ग्रेट वीकेंड, यू नो डबल डबल सेलिब्रेशन जो है ऑकलैंड एफसी के लिए रहा। एक तो आई लीग का जो ग्रैंड फाइनल है गोमीडिया स्टेडियम में, ये ऑकलैंड एफसी ने जीता, और वहीं पर ओएफसी प्रो लीग को भी ऑकलैंड एफसी ने जीता बाय डिफीटिंग साउथ मेलबर्न इन द फाइनल। तो डबल विन्स फॉर ऑकलैंड एफसी। उसके अलावा सुपर रग्बी कॉम्पिटिशन के भी कई ज़बरदस्त मैचेस वगैरह जो है ये खेले गए हैं, और धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं जो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भी। तो इस पर भी कुछ चर्चा आज बाद ऑन द शो हम करने वाले हैं। फिलहाल आज सोनू निगम से हमारा पहला थ्रोबैक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। एंड फॉर दिस थ्रोबैक वी टेक यू बैक टू से 2000।
5: और फिल्म आई थी उस जमाने में क्या कहना, बहुत ही अलग टॉपिक पर बेस्ड, इट वाज समवट बेस्ड ऑन टीनेज प्रेगनेंसी। और इस पे इस पूरी कहानी को जब इन्होंने शोकेस करने का डिसाइड किया, देन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस प्रीति जिंटा जो है, इन्होंने इस कहानी को रिप्रेजेंट करने का जिम्मा लिया। शी डिड इट क्वाइट ब्यूटिफुली, क्योंकि आज भी इनकी ये फिल्म और इनका ये कैरेक्टर याद है। और उसी फिल्म का ये गाना इस बार आपके लिए, जिसमें ना केवल प्रीति जिंटा थी लेकिन चंद्रचूड़ सिंह और सैफ अली खान ये भी नजर आए थे। Get on the dance floor. Get up, get up. Get on the dance floor. Get up, get up. Get on the dance floor.

0: www.radio.nz.
1: 3 मिनट हुए हैं 7 बजकर। वेलकम टू द मॉर्निंग मैडनेस आरपीएस टायर्स की ओर से द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर।
2: तो आप भी उम्मीद है कि इस सुबह की शुरुआत को एंजॉय कर रहे हैं जहां कहीं भी है जिस किसी भी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी ओर याद रहे मॉर्निंग मैडनेस में भी आपके लिए कई जरूरी अपडेट्स हम लेकर आएंगे। इनफैक्ट 7:30 न्यूज हेडलाइंस जो है ये भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है उसके लिए आप तैयार रहेंगे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट इसी घंटे आपको हम विश करने वाले हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: मैसेजेस अगर आपने नहीं भेजे हैं, वक्त है आपके पास, वक्त रहते अपने मैसेजेस जो है ये आप हमारे पास भेज दें। 7:30 बजे के बाद आपको हम विश करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बट पिछले घंटे सवाल हमने आपसे पूछा था
2: जी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये होने जा रहा है और इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 3 डिफरेंट कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही हैं। तो आपको उन तीनों में से किसी एक कंट्री का नाम या फिर अगर आपको तीनों पता है तो तीनों का नाम जो है ये बताना है।
1: तो कुछ और लोगों ने आप में से अपने जवाब जो है ये हमारे पास भेजे थे एंड
2: मैनी का आंसर आया है, फिर उसके बाद रवि ने अपना जवाब भेजा है और संजीव इन्होंने भी अपना आंसर भेजा है।
1: एंड आपने तो आज बड़े गर्व के साथ कहा आई नो।
2: हाँ मेरे को तीनों पता है, इट्स यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो जो ओपनिंग सेरेमनी है ये कनाडा में होगी।
1: अच्छा
2: टोरंटो में मेरे ख्याल से।
1: और आपकी फेवरेट टीम?
2: नहीं है कोई भी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड आई वाज फॉलोइंग अ लॉट, तो उस टाइम के फीफा वर्ल्ड कप में डेविड बेकहम एंड ऑल वर प्लेइंग यू नो।
1: माय गॉड, आप उस जमाने की हो।
2: उस जमाने की हो, या ट्रू, ही डजंट लुक लाइक ही इज फ्रॉम दैट जमाना, तो मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप। बट देयर वाज अ टाइम दैट आई थिंक दैट वन पर्टिकुलर टाइम जब नेमार जूनियर वाज वेरी पॉपुलर, वो ही वाज द न्यू थिंग यू नो। So I was watching उस टाइम पे। अभी तो आई डोंट नो कौन है कौन नहीं है, कौन किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया।
1: ओके, न्यूजीलैंड टीम है वर्ल्ड कप में?
2: आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। अब न्यूजीलैंड तो दुनिया का हिस्सा है तो होना तो चाहिए, बट आई डोंट नो यहाँ क्या फुटबॉल जो है ये रग्बी जितना ही पॉपुलर और आगे है या नहीं।
1: 5 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर और 3 कंट्रीज यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको ये मिलकर होस्ट कर रहे हैं इस साल का फीफा वर्ल्ड कप। तो अपडेट्स और भी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे ऑन द शो, बस हमारे साथ ही आपको शामिल रहना है इस प्रोग्राम में।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: So here are your Rashi Vibes for today. सबसे पहले मेष यानी एरिज, आपके काम को ऑफिस में काफी प्रेज किया जाएगा, काफी क्रिएटिव रहेंगे आप, नए आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, इनकम के कुछ नए सोर्सेज आपके लिए तैयार हो सकते हैं और खाना बढ़िया एंजॉय करेंगे आज आप।
3: ऋषिनी टोरस, आपके लिए कहा गया है कीमती चीजों को संभाल कर रखे, काम में मन नहीं लगेगा और दूसरे से ज्यादा उम्मीद ना रखे, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीद आप रखेंगे, उम्मीद नहीं पूरी होने पर उतनी ही बड़ी निराशा और उतना ही डिसअपॉइंटमेंट जो आपको होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, काफी मान सम्मान आपको मिलेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, काम को प्रेज किया जाएगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन ख्याल रखे रश बिल्कुल ना करे किसी भी चीज को लेकर।
3: कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि घर में मेहमान आएंगे जिनके साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा, हैप्पी रहेंगे आप इनफैक्ट, और ये एक्साइटमेंट बना रहेगा आज। वैसे एक और एक चीज बताई जा रही है कि लेजीनेस की हवा जो है ये आज आप पर छाई रहेगी, तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ जरूरी काम समय पर पूरे ना हो, इन आने वाले दिनों में इसका असर आप पर पड़ेगा। सो इफ यू कैन शेक ऑफ योर लेजीनेस ऑफ यू फ्रॉम टुडे, तो डेफिनेटली वो कोशिश करें। अगर ऐसा हो गया तो आपके काम जो है ये हो जाएंगे और आगे चलकर आपको परेशानी नहीं होगी। दूर से कोई अच्छी खबर मिलेगी, ऐसा भी आज आपके लिए बताया गया है।
2: सिंह यानी लियो, आज काम कुछ ज्यादा होगा आपके पास दफ्तर में, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, फायदा होगा, लेकिन कोई एक काम होगा जिसको लेकर आप थोड़े टेंस्ड हो सकते हैं।
3: एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। आज आपके लिए ये भी बताया गया है कि काफी खर्चे सामने आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियली तैयार रहना है, किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आपके लिए काफी नुकसानदायक रहेगा।
2: तुला यानी लिब्रा, फायदे के मौके आपको मिलेंगे, किस्मत का साथ रहेगा, कोई बड़ा काम करने के लिए आप काफी इंस्पायर्ड रहेंगे और साथ ही में आज बिजनेस ट्रेवल आपका अच्छा जाएगा।
3: एंड आफ्टर दैट, आज वैसे देखा जाए तो बताया गया है वृश्चिक ने स्कॉर्पियो के लिए मान सम्मान मिलेगा, कुछ नए तरीके आप अपना रहे हैं अपनी लाइफ को और आसान और अच्छा बनाने के लिए, तो ये तरीके आपके लिए जरूर काम आएंगे और इसी तरह से आप इन पर अपना ध्यान बनाए रखें। वैसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में आज आपको सलाह दी जा रही है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, जितनी जल्दी जल्दी रश में आप चीजें करेंगे उतना नुकसान आपका हो सकता है।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, आज बिजनेस से अच्छा फायदा मिलेगा, फैमिली वालों का पूरा सपोर्ट रहेगा, ख्याल रखें कि गलती से भी आप किसी दूसरे के काम में इंटरफियर ना करें और किसी बड़े काम में कोई रुकावट थी ये भी आज खत्म हो सकती है।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज आपके लिए कहा गया है कि कीमती चीजों को संभाल कर रखे, इधर उधर रखने से गुम हो जाएंगे या चोरी हो सकते हैं, इसीलिए यू हैव टू बी अलर्ट। और आज आपके लिए ये भी कहा गया है कि शारीरिक कष्ट यानी कि फिजिकल हार्म संभव है, पुराना रोग भी आपको वापस से परेशान कर सकता है, तो इससे भी आपको बचकर रहना है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, काफी पीसफुल रहेगा आज ऑफिस में आपका दिन, बिजनेस अगर करते हैं ये तो ये भी ठीक ठाक ही चलेगा, घर बाहर खुशियां होंगी, लेकिन फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन आप लेते हैं बहुत सोच समझ कर ले, अदरवाइज लॉस आपको हो सकता है, और लेन देन में किसी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
3: मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि नौकरी में आज आपका जो पोजीशन है ये और स्ट्रांग होगा, सो इसी तरह से मेहनत करते रहें एंड यू विल गेट गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ योर जॉब, जो आपको लाइफ में बढ़ने में, आगे बढ़ने में इनफैक्ट काफी हेल्प कर सकते हैं। और आपके लिए ये भी बताया गया है कि किस्मत भी आपका साथ दे रही है, जिसकी वजह से जो कोशिशें आप कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करेंगे, लाइफ में कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आज होंगे, घर बाहर दोनों ही ओर हैप्पीनेस आपको जरूर मिलेगा। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ चलिए थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का सेलिब्रिटी अलार्म,
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
4: हम
0: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. वक्त हो चुका है आज का सेलिब्रिटी अलार्म हम आपके लिए लेकर आए. एंड द फर्स्ट डे ऑफ द वीक आई थिंक आज का सेलिब्रिटी अलार्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है.
1: लेट्स सी आज के सेलिब्रिटी अलार्म का अंजाम क्या होता है, क्योंकि पिछले पास्ट डेज से ऐसा हो रहा है कि हम आपके लिए एक आवाज लेकर आते हैं. वी आर सो कॉन्फिडेंट कि इतना इजी है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये पहचान जाएंगे. बट अपेरेंटली क्या हो रहा है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ही हो रहा है. इतने ही लोग इस गाने को आवाज को पहचान रहे हैं और फिर कम लोग जो है अपने आंसर्स हमारे पास सही आंसर्स जो है कि हमारे पास भेज रहे हैं. एक्सपेक्टेशंस हमारे कुछ और होते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ और होता है. तो लेट्स सी क्या आज जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट होता है या उसका विपरीत ऑपोजिट रिजल्ट जो है ये हमें मिलता है.
0: तो आज के सेलिब्रिटी की आवाज पहले आप सुन लें.
2: I don't know. I'm look touch with you know with God grace. I'm feeling better when I wake up every morning. There is no complaint so far. So yeah, body is feeling well. My mind is really focused. So you know, like I said, I'm just taking day by day. But at the moment, I don't think it's gonna be anytime soon.
0: तो ये है आज के हमारे celebrity.
1: I think it's gonna be really difficult for anyone to guess this voice today. तो हो सकता है कि ये एक आवाज हम कुछ और दिनों तक लोगों को सुनाते रहे. बट लेट्स सी.
0: हाँ अभी तो शुरुआत है एंड ये सेलिब्रिटी इतना तो आपको सुनकर ही पता चल चुका होगा कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं बिलोंग करते हैं. और इतना आपको बताएं कि दिस सेलिब्रिटी बिलोंग्स इज फ्रॉम स्पोर्ट्स.
1: ओके, स्पोर्ट्स फील्ड को बिलोंग करते हैं.
0: स्पोर्ट्स फील्ड को बिलोंग करते हैं. आवाज एक बार फिर आप अच्छी तरह से सुन लें.
2: I don't know. I'm look touch with you know with God grace. I'm feeling better when I wake up every morning. There is no complaint so far. So yeah, body is feeling well. My mind is really focused. So you know, like I said, I'm just taking day by day. But at the moment, I don't think it's gonna be anytime soon.
0: तो अब अपना जो जवाब है ये आपको हमारे पास भेजना है. BF अपना आंसर और अपना नाम.
1: तो जल्दी जल्दी मैसेजेस सेंड कर दीजिए. देखते हैं आज कितने लोग इस आवाज को पहचान पाते हैं. अगर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया इसके लिए तो यही आवाज आपके लिए कल हम जरूर लेकर आएंगे एक बार फिर. पर हमारी ओर से उम्मीद तो यही है कि कोई ना कोई इसे पहचान ले. एंड वी कम विद द न्यू वॉइस टुमारो. बट लेट्स सी सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज पहचान ली है तो बस BF अपना जवाब और अपना नाम 5599 पर हमारे पास भेज दे.
3: सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना ए गेम.
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: RNZ.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में एक पार्टी लीडर डेविड सिमो ने कहा है कि टेम्पररी माइग्रेंट्स पर $6 डेली से चार्ज, ओवरस्टेयर एनफोर्समेंट यूनिट और नए इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स के प्रस्ताव के बाद भी उनकी पार्टी प्रो इमिग्रेशन बनी हुई है। उन्होंने माना कि $6 डेली चार्ज से वोकर्स पर बड़ा बोझ पड़ सकता है, लेकिन इसका फाइनल डिटेल पार्टी के पूरे मैनिफेस्टो में रिलीज किया जाएगा। सिमो के मुताबिक देश की तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए ये कदम जरूरी है और वो इमिग्रेशन पर किसी भी तरह की पॉपुलिस्ट बहस के खिलाफ हैं। ऑकलैंड की मशहूर लेवेन आर्टिसनल बेकरी ने कबूल किया है कि सबसे खराब ई फूड सेफ्टी ग्रेड मिलने की वजह से उन्हें अपना ब्लॉक हाउस बे आउटलेट टेम्पररली बंद करना पड़ा है। को ओनर शोन वो ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए माना कि पहले दिया गया फैमिली रीजंस का बहाना डर और शर्म की वजह से था, जबकि काउंसिल इंस्पेक्टर्स को वहां पेस्ट कंट्रोल से जुड़ा बड़ा रिस्क मिला था। बेकरी ने अब पूरी तरह से डीप क्लीनिंग कर ली है और स्टाफ को रीट्रेन किया है और वो जल्दी से दोबारा री इंस्पेक्शन करवाकर दुकान खोलने के लिए काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुपर रग्बी कंपटीशन के अंतर्गत सप्ताहांत कई दिलचस्प मैचेस खेले गए। शुक्रवार को क्रुसेडर्स की जीत चीफ्स के खिलाफ 36-32 से हुई और ब्रम्बीज ने वारेटास को 21-14 से हराया। शनिवार को मोना पैसिफिका की हार रेड्स के खिलाफ 33-31 से हुई। हरिकन्स ने हाइलैंडर्स को 45-28 से हराया, जबकि फोर्स की जीत फिजियन रुआ के खिलाफ 19-15 से हुई। इस सप्ताहांत या इस वीक के मैचेस की ओर देखें जो कि अंतिम राउंड के मैचेस होंगे। उसमें शुक्रवार को क्रुसेडर्स हरिकन्स को होस्ट करेगा, जबकि रेड्स की भिड़ंत फिजियन रुआ से होगी। शनिवार को 4:35 PM पर ब्रम्बीज मोना पैसिफिका को होस्ट करेगा। रात 7 बजे वाइकाटो में चीफ्स ब्लूज को होस्ट करेगा और शनिवार को रात 9 बजे से फोर्स और वारेटर्स का मैच खेला जाएगा। आई लीग कंपटीशन का ग्रैंड फाइनल शनिवार को गो मीडिया स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में ऑकलैंड एफसी की जीत सिडनी एफसी के खिलाफ 1-0 से हुई। उधर ओएफसी प्रो लीग के फाइनल में ऑकलैंड एफसी की जीत साउथ मेलबर्न के खिलाफ 2-1 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
5: Ice hockey games this weekend.
6: A high of 18, fine and sunny all day. Northwestern motorway, 35 minutes messy to the city. A crash after Te Aratu has been cleared. We're heavy upper harbour to the causeway and slow near the city. Southern 35 in from Monaco. Slow patches, Papakura on and off right to the city. Southwestern slow northbound from the southern up to Puanui. Northern 32 from Constellation, slow at Silverdale. Heavy on and off from Greville.
5: Big hits, fast plays, edge of your seat, family friendly fun. Search ice hockey tickets.
7: Trade Depot brings you Midea, the world's number one smart home appliance brand. Midea heat pump dryer, $599. Matching 8kg washing machine, $599. French door fridge freezer with Wi-Fi, just $999. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: TradeDepot.co.nz. At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an Adored Fabric Draft Stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
9: Schools use fibre to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
10: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
0: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island, like chicken nibbles, $9.99 per kilo, or whole crown pumpkin, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: The beat of Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: Birthday greetings.
11: Iska birthday bhai?
12: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
11: Happy birthday to you.
2: चौबीस मिनट रह गए हैं अभी 8 बजे में. आज 25th ऑफ मई आपका बर्थडे है या शादी की सालगिरह है, कुछ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको बहुत सारी बधाइयां इस दिन की. सबसे पहले विशिंग माय लिटिल मिस्चीफ मेकर इन द हाउस माय डॉटर विनीशा हैप्पी 9th बर्थडे. यू ब्रिंग सो मच जॉय, लाफ्टर एंड एनर्जी टू आवर होम इन फ्लैटबुश. Enjoy your last year being in single digits. We all love you so much and are sending you the biggest hugs today. Mom hai aapki Vishalini, dad hai Janesh, bahan Janisha hai Fiji se. Sweet birthday wishes all the way from Nosori, Suva, from your nana nani, mama mami, mausi hai, aur cousins hai Nishil, Nishit aur Vayushi. May your day be filled with lots of fun, laughter and cake. So Vinisha, a very very happy birthday, many many happy returns of the day. Ek aur message aaya hai, wishing my youngest granddaughter a very happy 7th birthday. रूथ अरोहा चंद, सालगिरह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो रूथ. आज खुशी के इस मौके पर आपके आजा आजी हैं, खासतौर पर मिस्टर मिसेस रमेश चंद, उन्होंने आपको याद किया है और सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं. हम सभी की ओर से आज का ये स्पेशल डे आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. इसी तरह से सालों साल आप अपनी सालगिरह की खुशियाँ मनाते रहें और आपकी सालगिरह में हम शामिल होते रहें, यही हमारी कामना है आपके लिए. देवी का प्रसाद, आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आपको भी ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. आज खुशी के इस मौके पर स्वीटी हैं, साथ में जोया हैं और इनके अलावा आशिका हैं, नीलेशनी हैं, सभी ने आपको याद किया है और सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं दी हैं. हमारी ओर से भी ये दिन आपको और आपके साथ आज तमाम जितने भी लोग अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको ये दिन शुभ और मुबारक हो.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Accurate traffic.
2: Mildale House and Land Packages.
3: Patchy cloud, final day with a high of 18. Into the city, Northern Motorway, 35 minutes from Constellation Drive, hour from Silverdale. Slow at Silverdale, heavy gravel to the bridge. Northwestern, 39 in from Massey, heavy patches, Upper Harbour to the CBD, not bad along the causeway. Southern, 44 in from Monaco, slow from Papakura with heavy spots quite frequent. Southwestern, slow northbound from the southern to Puanui.
2: Award-winning builders, wide range of homes, Mildale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
4: The Specsavers Specstravaganza store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends May 30. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
5: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island, like chicken nibbles, $9.99 per kilo, or whole crown pumpkin, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Save up to 20% on fuel with the self-charging Hino Hybrid Electric. The Hino 300 Series Hybrid Electric Light Duty Truck is the perfect solution for your business, reducing your fuel and emissions by up to 20% with no recharging or range limitations. New Zealand's only hybrid electric truck that reduces your operational costs to give you a genuine competitive advantage. Harness the Hino Hybrid Electric. Head to hino.co.nz/hybrid.
7: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
8: जबरदस्त हिट्स
9: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
8: Playing Bollywood's biggest hits.
10: हम 14 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजे में और आज जो सेलिब्रिटी अलार्म आवाज हमने आपको सुनाई वो थे बहुत ही फेमस फिजियन फुटबॉलर रोय कृष्णा। So, कई लोगों ने सही आंसर्स भेजे थे, थैंक यू सो मच। सुख और खुश हैं बैंगरी ईस्ट से, थैंक यू सो मच आपके गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए।
8: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड

0: तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो फिलहाल सर्कुलेट हो रही है ऑन इंटरनेट, एंड व्हेन आई केम अक्रॉस इट आई वाज लाइक यार दिस इज सो क्यूट. अपेरेंटली एक भारत की किसी एक गांव के गांव में ये वीडियो जो है ये बना है, जहां पर एक कावश है, एक लोकल कावश है. और वहां पर क्या होता है कि लोग अपनी गाड़ियां तो धुलाने के लिए लेकर आते हैं, बट एक गाय है जो हर रोज शाम के समय वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच जाती है नहाने के लिए, और ये कावश वाले जो है ये उसको नहलाते हैं, बेसिकली उसको वॉश करते हैं. तो जब उन्होंने ये नोटिस किया कि ये चीज़ जो है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे ये होने लगा है, तो उन्होंने डिसाइड किया इसका एक वीडियो बनाए. और फिर वीडियो बनाते उन्होंने दिखाया कि ये गाय जो है यहाँ पर हर रोज आती है नहाने के लिए, और जब इसका नहाकर मन भर जाता है तो अपना सिर हिलाती है टू लेट अस नो, टू हिंट अस कि मेरा हो गया अब रुक जाओ. तो हाँ, तो इसके एक वीडियो बकायदा इन्होंने बनाकर इंटरनेट पर डाला. इट लुक सो क्यूट ऑनेस्टली, एंड इट फील्स गुड एज वेल, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी कि नॉट जस्ट द ह्यूमन बींग्स बट द एनिमल्स आर ऑल्सो फीलिंग, यू नो, फीलिंग द हीट. तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है. एंड व्हेन समवन लुक्स आफ्टर देम लाइक दिस, जो उनका उस जानवर से या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट फिर भी वो उनको ऐसे यू नो छोटी छोटी चीजों में इनका देखभाल करते हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता होगा.
1: या एग्जैक्टली, ऐसे और भी कई कहानियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आएंगे थोड़ी देर बाद. न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट भी होगा.

0: tyres.co.nz.
1: Yeah. Jab chahe tab.

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता अमा हासला A1 लाइफस्टाइल A1 आई मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल कटोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11 degrees temperature आप feel कर रहे हैं आज का high 18 overnight कम से कम 7 degrees होने वाला है और आज सुबह के वक्त कुछ हल्के बादल छाए रहेंगे otherwise it's going to be a fine day. Sunset आज का 5:17 PM पर होगा.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja
2: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: द रश अब आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और ऐसे में आप हमारे साथ दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. जहां कहीं भी आप हैं साथ हमारे बने हुए हैं तो इसके लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे इस घंटे रश आवा में आपके लिए आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक जो है ये भी हम लेकर आएंगे थोड़ी देर में एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर कि आपका टेक उस टॉपिक के बारे में क्या है एंड 0800 004866 पर आप हमारे पास कॉल करते हुए उसका हिस्सा बेशक बन सकते हैं.
1: बट राइट नाउ एक ऐसी खबर जो दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है इज अबाउट अबिन अल अजाबिन जजाऊ. अबिन अल अजाबिन जजाऊ जिनको महमूद सदीस अबूब के नाम से भी जाना जाता है नाइजीरिया के हैं. पिछले महीने से इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी बिकॉज ऑफ इस वीडियो और इनकी जो ओल्ड प्रोग्रेसिवनेस कांग्रेस पार्टी है फॉर ए सीट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ये वायरल हुआ इनका वीडियो सोशल मीडिया पर. लेकिन जो शुरू हुआ एक एज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल ये बहुत जल्द टर्न्ड इनटू ए नेशन वाइड स्कैंडल. क्या हुआ कि इन्हें स्क्रीनिंग वीडियो बूबा जो नाइजीरिया के हैं उन्होंने बताया कि ही हेल्ड ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एज अ ड्राइवर इन्होंने काम किया और उन्होंने दावा किया कि उनकी उम्र 30 ईयर्स है लेकिन वो दिखने में बहुत ही छोटे कद के हैं.
3: अच्छा
1: बहुत छोटे कद के. उन्होंने कहा ये मेरे बारे में नहीं इट इज़ फ्रॉम द पीपल पीपल कॉल्ड मी टू सर्व देम एंड आई विल सर्व. ये उन्होंने कहा कि वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं. टू रन फॉर अ सीट इन नाइजीरियन नेशनल असेंबली कैंडिडेट की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए. बट इन द केस ऑफ अबिन अल अजाबिन जजाऊ या जजाऊ ये मेन इशू नहीं था. अगर उनका जन्म 2010 में हुआ तो दैट वुड मेक हिम अ माइनर. तो क्या हुआ कि बूबा का दावा था कि उनका जन्म जो है ये अगस्त 2 को 1995 में हुआ था मेकिंग हिम ओवर 30 ईयर्स. लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उनसे लिंक्ड पाए गए और जो लीक किए गए ऑनलाइन उसमें ये दिखाया गया कि ही वॉज एक्चुअली बोर्न इन 2010.
3: ओके
1: अब 2010 देखे तो अभी तो कम से कम
3: 16 साल ना.
1: हाँ तो उसके बाद अभी चलकर इनके बारे में खबर काफी ट्रेंड कर रही है कि भाई ये भी क्या है कि और फिर 16 साल का अगर कोई है तो उनके पास इतना पॉलिटिक्स का नॉलेज
3: कहाँ से आया. इंटरेस्ट होगा इसीलिए इनके पास इतना नॉलेज है
1: हो सकता है. तो ऐसी ट्रेंडिंग खबरें जो हैं ये ट्रेंड पेट्रोल में आपके लिए हम लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: celebrating local artists.
1: Back your backyard beats.
2: The final week of New Zealand Music Month और अपने कलाकारों को भरसक हमारी कोशिश है कि हम जहां तक हो सके प्रमोट कर सके, उनको प्लेटफॉर्म दे सके ताकि उनकी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में अपने फेवरेट आर्टिस्ट को वोट करने का मौका भी है आपके पास, डबल एम, और उसके बाद अपने आर्टिस्ट का नाम आप हमें लिख भेजें। और आज के हमारे कलाकार जो हैं इस फेमिलियर एंड पॉपुलर बोथ अमंगस्ट जितने भी हम लिसनर्स हैं, और ये हैं नील पटेल।

0: दाल टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
2: 80s के रेट्रो गाने.

0: Find out more. As ordered by Open Signal requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
1: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
2: Hi, Stephen Fleming here. I used to be a captain, but most people know me as the Fujitsu guy. We're now General. We've changed our name, but not who we are. You can expect the same trusted quality and service that has made us New Zealand's favourite air. So, there you have it. Other than our name, nothing's changed. Not even me. Except now I'm the General guy. Come home to comfort. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
3: Get a General.
4: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
5: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
7: What's your take?
8: What's your take? वक्त अब हो चुका है on the breakfast show with Vijay and Pooja और lines हम आपके लिए खोल रहे हैं. आज एक बड़ी सिंपल चीज के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं. किसी के एक सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिसके बाद हमने चलकर सोचा चलो आज आपसे भी पूछ लेते हैं और एक ऐसा टॉपिक भी हो जाएगा जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. सो इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा था, जिसके बाद मेरे मन में सवाल जो है ये उठा कि हम जितने भी हैं, बचपन में हम सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है. कुछ लोगों के सपने जो हैं वक्त के साथ बदलते रहते हैं, कुछ लोग एक ही सपने को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ का पूरा होता है, किसी का नहीं होता है. तो जब हम छोटे थे उस समय पर बड़े होकर क्या बनने का सपना हम देखते थे और व्हाट हैव यू एक्चुअली बिकम प्रोफेशनली, जो है इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं कि कोई जब छोटा होता है तो सोचता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा, कोई बोलता है कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन बड़े होते होते कई लोगों के एम्बिशंस और विजन्स, ड्रीम्स, सपने जो है ये चेंज हो जाते हैं. कुछ लोग उसी सपने को लेकर चलते हैं, कुछ जो सपना देखते हैं वो पूरा होता है, कुछ का नहीं होता है. तो वही सपने के बारे में या आपके ख्वाब के बारे में, जो ड्रीम के बारे में हम आज आपसे जानना चाहेंगे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. आओ 800 00, हम आओ 800 00 4866, ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी अपना जो सपना आपने शायद बचपन में देखा था और अभी आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें बता सकते हैं. तो लाइंस अब हम खोल चुके हैं, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है. जो भी बचपन में था आपके लिए और जो भी अभी है उनके बीच एक सफ़र जो है ये आप तय करते हैं. हाउ थिंग्स इवॉल्व फॉर यू. अगर आपके सपने चेंज हुए, बचपन में आपने सोचा था कि आप एक टीचर बनेंगे और अभी आप एक वकील बन गए, तो हाउ डिड थिंग्स चेंज फॉर यू. आप पायलट बनना चाहते थे, अगर बन गए तो बहुत बढ़िया बात, कैसे आपने ये अचीव किया, और अगर चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ. हाउ डिड थिंग्स चेंज फॉर यू. क्यों आपका इंटरेस्ट जो है जैसे जैसे आप बड़े हुए उससे चेंज होता गया. लाइंस खोल चुके हैं हम और अक्सर ऐसा होता है कि लाइंस खोलने के काफ़ी देर बाद आप कॉल करते हैं, उस वक्त तक हमारे पास बहुत टाइम भी नहीं बचता है. तो अभी जब आपके वक्त, आपके पास समय है, वक्त है, आप कॉल कर सकते हैं हमें और बता सकते हैं कि क्या आपने सोचा था और क्या आप बने. मैनी का मैसेज आया है, आई वॉन्टेड टू बी अ पायलट बट आई एम अ ट्रक ड्राइवर बट आई लव माई जॉब. थैंक यू सो मच मैनी आपके मैसेज के लिए. आओ 800 00 4866, ये हमारा नंबर है. गुड मॉर्निंग. हेलो.
9: गुड मॉर्निंग विजय भाई. जब आई वॉज यंगर आई वॉन्टेड टू बी अ स्कूल टीचर
8: जी.
9: तो फिर स्कूल फिनिश किया एंड देन फिजी में कू हो गया था 2000 में, तो फिर माय आंटी मेरी मौसी यहाँ पे थी, तो बोला कि निकलो, देन अच्छा वहाँ पे छोड़ के देना टाइम दिया, देन थोड़े दिन कुछ नहीं किया, 6 महीने वेटेड फॉर माय वीजा एंड एवरीथिंग, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम दैट टाइम. तो फिर वहाँ पे आई शो के सिटी, तो वहाँ पे PwC टावर था, तो वहाँ पे 27th फ्लोर पे ऐसे मन में था कि वहाँ पे काम करना है, देन आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर. तो फिर एनरोल किया, दो पेपर किए, फिर देन थोड़ा बोरिंग लगा, फिर मैंने मार्केटिंग का चेंज किया, फिर बिजनेस का चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, एंड देन आई स्टार्टेड इन वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री और अभी फ्रेट फोर्डिंग.
8: वाओ, सो यू वांटेड टू बिकम अ टीचर एंड देन यहाँ आकर लोया बनना है. आपने शुरू भी कर दिया अपनी जर्नी.
9: आई डिड इन 2003 आई डिड स्टार्ट स्टडिंग, एंड देन फिर जैसे माय पेरेंट्स वर बैक इन फीजी, तो आई मीन आई हैड रेजिडेंस बाय देन, तो स्टूडेंट लोन मिल सकता था, बट वो एक लाइफस्टाइल चॉइस भी हो जाती है, जब कोई नहीं होता एंड यू स्टार्ट रेंटिंग, एंड इन दैट टाइम रेंट एंड एवरीथिंग वाज मच हायर देन. आई यूज टू स्टे इन डिलवर बिल्डिंग, हमारी रेंट दो लड़कियों की थी $440 अ वीक. इट वाज हार्ड.
8: ओके, सो देयर वर सम चॉइसेस दैट यू हैड टू मेक एट दैट पॉइंट इन टाइम.
9: यस.
8: ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. यू हैव अ गुड डे. आपका स्वागत है. गुड मॉर्निंग. हेलो.
7: गुड मॉर्निंग विजय भाई, हाउ आर यू?
8: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
7: मैं ठीक हूँ, थैंक यू.
8: जी बताइए.
7: जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वॉज मे बी 5 or 6, तो आई यूज टू प्रिटेंड टू बी अ चेकआउट गर्ल.
8: ये बहुत सारे बच्चे ये खेल खेलते हैं ना.
7: ओ माय गॉड, इट्स सो मच फन. कैलकुलेटर लेके, एंड देन आई वुड प्रिटेंड टू डू द टीट टीट विद माय यू नो माय ओन बॉय. एंड बिकॉज़ आई यूज्ड टू, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, द वे दे यूज्ड टू डू दैट एट सुपरमार्केट ग्रोइंग अप इन फिजी एट आरबी पटेल.
8: ओके.
7: Yeah, but then my ambition changed. I wanted to be a teacher. I had a very long stick and I used to talk to my dolls, aise aise karke ki main aise aapko sikhaungi, you know, padhaungi wagera wagera. And then I wanted to be a doctor for a while. Fir wo to bilkul badal gaya when I went to do study and realized how tough and competitive it was.
8: Okay.
7: Fir main research mein hali and I worked as a researcher yahan par Auckland University mein, and then wo वेरी सून आई रियलाइज की ये तो बहुत ही मतलब बोरिंग टाइप है, दिस इज इन क्वाइट मी, सो आई री स्टडीड एंड नाउ आई एम अ काउंसलर.
8: वाओ, फ्रॉम चेकआउट टू टीचिंग टू डॉक्टर टू रिसर्च टू अ काउंसलर.
7: करेक्ट.
8: एक टाइम शायद ऐसा था जब आपको खुद काउंसलिंग की जरूरत थी.
7: It's all right.
8: Interesting. Thank you so much. आपके कॉल के लिए. You have a wonderful day. और आपका स्वागत है. Good morning. Okay. Please भाई अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा धीमा कर लो.
10: हेलो.
8: जी हेलो हेलो.
10: हाँ विजय भाई,
8: कैसे हो भैया?
10: बढ़िया, आप सुनाइए.
8: मैं भी ठीक हूँ. अच्छा, वो सोच रहा हूँ कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, क्या बने अभी?
10: बचपन में मेरा सपना शुरू से ही क्रिकेटर बनने का था.
8: अच्छा.
10: हाँ, मगर आपको पता है जब हमारे टाइम पे तो इतना वो नहीं था स्पोर्ट्स का. तो माँ बाप जो है वो प्रेशर पढ़ाई पे ही रखते थे. अब तो खैर काफी ट्रेंड चेंज हो गया है. तो हमारे टाइम पे तो पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर दिया जाता था, तो इसलिए मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया. कोशिश की थी, मगर ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिला फैमिली की तरफ से ना, जैसे शुरुआत में सपोर्ट की जरूरत होती है. तो फिर प्रेशर भी था पढ़ाई का, तो नहीं कर पाया. मगर अब मैं जैसे न्यूजीलैंड आ गया, तो मैं यहाँ पर क्लब से खेल रहा हूँ क्रिकेट. और मैं जो मतलब क्लब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मैं लास्ट सीजन तो मेरा गया है, मैंने हाईएस्ट रन बनाए थे, उसमें एक सेंचुरी भी थी मेरी.
8: अच्छा.
10: तो अब मैं अपना सपना यहाँ पूरा कर रहा हूँ.
8: ओके. क्रिकेट खेलने का आपका वो सपना पूरा हो रहा है. लेकिन जिंदगी चलाने के लिए क्या कर रहे हैं?
10: जिंदगी चलाने के लिए मैं जॉब करता हूँ.
8: अच्छा.
10: आई एम ड्राइविंग, कुरियर ड्राइविंग. वो है कि ये है कि अपना सपना भी पूरा कर रहा हूँ और साथ के साथ परिवार को भी पाल रहा हूँ.
8: That's nice. At least you get to fulfill your dreams. Na, शायद उस लेवल पर नहीं, professionally full time नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस अपना passion जीने का मौका आपको मिल रहा है.
10: हाँ, ये है कि मैं जो जो मैं करना चाहता था वो मैं अब कर रहा हूँ. बहुत लेट हो गया वैसे तो, मगर है कि हाँ अंदर कुछ एक वो कसक नहीं रहेगी, अंदर जो है कसक रह जाती है.
8: हाँ.
10: वो चीज नहीं रहेगी मेरे अंदर अब कि यार मैं ये नहीं कर पाया या नहीं खेल पाया.
8: पापा क्या चाहते थे कि आप बने?
10: पापा तो बिजनेसमैन थे.
8: अच्छा.
10: बिजनेस करते थे अपना, मगर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी. मुझे अपना जॉब ही करना था. क्योंकि मुझे बिजनेस में थोड़ा टेंशन लगती है कि सारी चीज देखना, लुक आफ्टर करना, तो मुझे हैक्टिक लगता है. अपना वही 8-9 घंटा नौकरी करो और अपने टेंशन फ्री होके घर चले जाओ. वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है.
8: वीकेंड के बारे में सोचना.
10: हाँ, क्योंकि बिजनेस में है ना आदमी को घर जाके भी टेंशन ही रहती है. वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में घूमता ही रहता है ना. अब जॉब में तो आप जब जॉब पे आएंगे तो 8-9 घंटा आप जब तक जॉब पे हैं जब तक ही आपके दिमाग में वो रहेगा, उसके बाद घर जाके आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो. वो चीज तो वो ये चीज मुझे बहुत रिलैक्स करती है.
8: चलो, थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू. यू हैव अ गुड डे. गुड टू नो कि आप अपना जो करियर है उसमें भी कुछ कर रहे हैं, साथ में क्रिकेट आपका पैशन था वो भी पूरा करने का कुछ समय आपको मिल रहा है. और 800-004-866 हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. और भूपिंदर, अभी थोड़ी देर पहले आपका कॉल चौरंगा से आ रहा था और वीकेंड पर आपके बारे में मैं सोच भी रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया आपका कोई कॉल जो है ये नहीं आया. एक और मैसेज जो है ये हमारे पास किसी ने भेजा है कि पहले मेरा सपना था कि अमीर बन के सारे डॉग्स कैट्स को अडॉप्ट करके शेल्टर दूंगा और गरीबों की मदद करना चाहता हूँ. अच्छा, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ. नाउ आई एम वन ऑफ देम. अब भी कमा लें तो आप भी चाहें तो अपने जो मैसेजेस हैं अब 5599 पर हमारे पास भेज सकते हैं. बताइए कि बचपन जब था, कई चीज़ें जो हैं बचपने में हम सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, बड़ा होकर वो बनूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा. एंड एज वी ग्रो अप, ये भी आपने नोटिस किया होगा कि हमें से बहुत सारे लोगों के चॉइसेस जो है विद एज चेंज होते गए. गुड मॉर्निंग भूपिंदर, कैसे हो?
11: बढ़िया जी. विजय जी, आप कैसे हो?
8: मैं ठीक हूँ. अभी मैं वही बोल रहा था कि ओवर द वीकेंड भी मैं आपके बारे में सोच रहा था कि काफी टाइम हो गया आपसे कोई बात नहीं हुई.
11: जी जी, मैं थोड़ा सा बिजी था वर्किंग में, इस वजह से नहीं हो पाया. एक मेरे इसको प्रॉब्लम आ रही थी, ये मैंने ना फोन अपना चेंज किया है, उस पे मैंने डाउनलोड तो किया, उसका साइन अप आपका नहीं हो रहा था, तो मेरे को वो करने का दिक्कत. अब तो आज बेटे मेरे ने वो मेरे को सेट करके दिया, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं उनसे बात करूँ. हम मॉर्निंग में जब भी जाता हूँ बच्चों को ड्रॉप करने, पहले आपके बारे में सोचते हैं कि छोटे वाला बोलता है विजय पूजा का शो कहाँ पर है, विजय पूजा का शो कहाँ पर है. अभी उसको मैं डाउनलोड कर, तब तक टाइम चला जाता था तो इस वजह से नहीं हो पाया, सॉरी उसके लिए.
8: अरे चलो कोई नहीं.
11: तो मैंने कहा चलो आज करके देखते हैं.
8: थैंक यू सो मच. और सब ठीक?
11: मैंने आपको आज का मैंने टॉपिक सुना था, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने व्यू उसमें डाल दूं. तो मेरा, मैं इंडिया में था तो मेरा पहले की मेरी लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने क्योंकि मूवी वगैरह में देखता था ना, तो उसमें बहुत लॉन्ग कोट पहनते थे, मेरे को उसका बहुत इंटरेस्ट था. इलेवंथ तक, टेंथ तक जब गया तो फिर सोचा नहीं यार ये मेरे बस का नहीं होगा, इससे अच्छा है तो मैं प्रोफेसर बनूंगा. प्रोफेसर का मैं स्टडी करूंगा, वो अच्छा जॉब है. तो प्रोफेसर तो नहीं बन पाया, पर मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन कर ली, तो सेकेंडरी स्कूल का टीचर तो मैं बन गया. मैं उसमें सेटिस्फाई था इंडिया में, बट इंडिया में था तो यहाँ आने के बाद वो सारा कुछ चेंज हो गया, सब प्लान सब कुछ. अब तो ये था कि हाँ मिलियन बड़ा काफी पैसे वाला बनना है, तो कुछ भी जॉब करेंगे तो अच्छा होगा. तो 2019 में मैंने काफी अच्छा था, पहले घर का प्रेशर था कि घर लेना है, तो कुछ नहीं सोचा. जॉब जो भी हुआ जॉब करते रहे, पर 2019-20 में मैंने सोचा चलो अब मेरा घर का प्लान हो गया है तो अभी मैं टीचर्स का फिर दोबारा से शुरू करता हूँ. तो मैंने अपना सब कुछ भेजा तो रजिस्ट्रेशन में भेजा तो उन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी टीचर हो बस आईएलटीएस में आप 7-8 लेके आओगे तो आप ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर हो जाओगे. तो अभी उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करा है पर लग रहा है कि 50 तक पहुंच गया हूँ तो वो क्लियर होगा तो मेरा वो ड्रीम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा.
8: दैट्स रियली स्वीट.
11: ये जर्नी
8: बहुत बढ़िया भूपिंदर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए एंड आपके टाइम के लिए. थैंक यू जी. एंड किसी और का मैसेज आया है. हाई विजय, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन ऑडिटर एंड टूडे आई एम फूड सेफ्टी ट्रेनी ऑडिटर. आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस बट नाउ एट दिस टाइम आई प्रे टू गॉड टू डू वट इज़ बेस्ट फॉर मी. आई थिंक दैट्स द स्टेज वट वी कॉल विजडम. अपूर्व का ये मैसेज आए हैं. अपूर्व थैंक यू सो मच. कुशाले का मैसेज है, आई वॉन्टेड टू बी ए फिजिस्ट बट नाउ आई एम इन साइबर सिक्योरिटी. कमाल है भाई. गौरव का मैसेज आया है, आई वॉन्टेड टू बी एन आर्किटेक्ट बट एंडेड अप बिकमिंग ए फिजियोथेरेपिस्ट. भाई कहाँ आर्किटेक्ट और कहाँ फिजियोथेरेपिस्ट. थैंक यू सो मच गौरव. गुड मॉर्निंग विजय भाई एंड पूजा दी, आई हैव अ ब्लेस्ड डे. आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बट नाउ आई गॉट माई क्लीनिंग बिजनेस एंड आई एम हैप्पी. इट्स गुड दैट यू आर हैप्पी. तो 5599 हमारा नंबर है जिस पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि बचपन में आपका सपना क्या था, क्या आपने सोचा था कि बड़े होकर बनेंगे, और वो तो सपना था, हकीकत अभी क्या है, वो आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं.
5: Hollywood's most wanted.
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
13: मैं लाऊं अपना A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Accurate traffic.
2: Get free sports gear for your school.
3: A high of 18, fine and sunny for us all day. Into the city, we're starting to ease northern, 30 minutes in from Constellation Drive, 47 from Silverdale, heavy gravel to Takapuna and slow to the bridge. Northwestern, 34 minutes in from Massey, slow from Te Aratu with some heavier patches. Southern, 38 in from Manukau, slow Takanini to Manurewa, fine to Otahuhu, then heavy on and off from there. Southwestern, heavy northbound.
2: Time to crunch on yummy apples and collect yummy stickers for your school.
4: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
5: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
6: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
7: Autumn's arrived, but the house needs work. Heat pump to clean, gutters are full, that laundry tap still drips.
8: Don't worry, AA Home can help with tasks at your place. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
9: Right now at Guthrie Bowron, take 25% off a wide range of wallpapers. Plus, enjoy a $20 New World voucher for every $150 spent on Dulux or Berger paint. Guthrie Bowron, inspiration starts here. T's and C's apply.
10: If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
11: noodles,
10: or fashion,
11: gorgeous,
10: or even a shiny new appliance,
11: shiny,
10: money loops back. Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
12: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
14: The Rush Hour, aapke liye jaari hai on hum playing Bollywood's biggest hits. Thodi der baad, latest news and sports update aapke liye hum lekar aayenge.
15: और बिफोर द थ्रोबैक आपके लिए आज एक बहुत ही जरूरी स्टोरी, जहां पर AI इसके बारे में कुछ बातें हो रही है. एक नया AI सिस्टम है जो साइबर सिक्योरिटीज को काफी चिंता में डाल रहा है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, क्योंकि ये पता चला है कि दिस पर्टिकुलर AI सिस्टम कैन एक्चुअली फाइंड कंप्यूटर वीकनेसेस मच फास्टर देन ह्यूमंस. ये AI दरअसल सर्च कर सकता है फॉर सिक्योरिटी फ्लोज ऑटोमेटिकली, ब्रेक इनटू वीक सिस्टम्स क्विकली एंड कीप वर्किंग ऑन इट्स ओन विदाउट मच ह्यूमन हेल्प. क्योंकि ऐसे में अब क्या होगा कि US बैंक्स जो है उन्होंने रश किया है टू फिक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, और गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर मोर साइबर अटैक्स. न्यूजीलैंड में साइबर एजेंसी जो है उन्होंने साइबर एजेंसी की जो कंपनीज है उन्होंने कहा है कि कंपनीज शुड अपडेट देयर सॉफ्टवेयर फास्टर, स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड वॉच फॉर हैकिंग अटेम्प्ट्स मोर केयरफुली. ये कंसर्न्स इसलिए क्योंकि हैकर्स कुड इवेंचुअली यूज दिस AI टूल्स टू लॉन्च बिगर एंड फास्टर साइबर अटैक्स. और ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड में ऐसा पहले नहीं हुआ है, ऐसा डेफिनेटली हुआ है, बहुत बार हुआ है. और ऐसे में अगर इतना स्ट्रॉन्ग AI टूल जो है अगर किसी के हाथ लग गया तो डेफिनेटली चीजें और खराब हो सकती है. एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि द सेम AI could help defend fixed problems faster in future as well. पर फिलहाल के लिए हर किसी को अपना अपना जो सिस्टम है इसे थोड़ा और स्ट्रेंथन करना जरूरी है.
14: तो अगर आपके पास है ये सुविधाएं and you need to strengthen your security, make sure you get that done as quickly as possible.

0: Powered through Mass with Morning Fresh.
1: Here for your long weekend. The roadies, the snack stops, and are we there yet? Ice cream will fix that. Whatever you're up to this long weekend, we're here for that too. Foursquare, what'll it be today?
2: Oh no, we'll be late.
3: We'll be alright. I'll call the AA.
4: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
8: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
9: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
10: And award goes to Indelible Homes.
9: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
11: Kahani of Indelible Homes.
12: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं.
13: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The government is being accused of a cover-up over proposed changes to climate law. Court documents show the PM's office was lobbied by top emitters like Fonterra and NZ Energy. Climate activist Mike Smith says these meetings weren't disclosed.
15: Dishonesty is the issue that we've identified. You know, our legal team applied for information under the Official Information Act and it wasn't supplied to us.
14: The Prime Minister's office is standing by its claim. There is no record of the meetings nor briefing notes. It says stakeholders on all sides request to meet with staff, but in this case, Cabinet made its own decision. An ASB study suggests most consumers don't realise just how much of their budget has been impacted by the Middle East conflict. Senior economist Kim Mundy says there's been a serious supply chain shock.
16: Even if you don't spend a lot of money on fuel yourself, it is likely that your suppliers or their suppliers do.
14: The government has announced tweaks to its so-called golden visa scheme for wealthy foreigners. The minimum investment remains $5 million. However, philanthropist gifts of up to 20% can now be made to charities. Another adjustment will see the minimum English language requirements extended under the accredited employer work visa. In sport, motorsport with Megan Turbo's 80,000k tyre warranty. Scott McLaughlin's finished third at the Indy 500. Fellow Kiwi driver Marcus Armstrong was in the lead when the race restarted with two laps to go, but was passed by the winner Felix Rosenqvist.
17: Good job to Marcus and David at the end. They raced really cleanly.
14: Armstrong finished fifth with Sir Scott Dixon 15th. And after 14 years in the top flight, West Ham have been relegated on the final day of the Premier League football season.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari good brands bhi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: 12 and a half degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 18, overnight kam se kam 7 degrees rahega. Subah ke waqt kuch badal chhaye rahenge, anyatha mausam saaf rahega. Sunset 5:17 pm par aaj hoga.
13: Breakfast show with Vijay and Pooja,
19: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
13: What's going on? क्या बकते हो?
20: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. Only on हम playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM और रोवर पर. इस घंटे तो अपने आसपास हम देखेंगे कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, बाकी चीज़ों की जानकारियां जो हैं ये भी आपको हम देने वाले हैं. खबरों में क्या कुछ है इस पर भी आपको अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड हम रखेंगे.
21: लेकिन फिलहाल के लिए इस घंटे की शुरुआत क्या बकते हो इसके साथ हम करते हैं. और कभी ऐसा हुआ कि क्लासरूम में आपने चोरी छिपे जब टीचर पढ़ा रहे हो तो आपने कुछ खाने की कोशिश की हो?
12: नहीं, आई हैव नेवर डन दैट.
21: Never?
12: No.
21: मैंने तो बहुत किया है. You know, हमारा स्कूल कैंटीन में बहुत यमी वो आलू भाजी, आलू का जो भजिया होता है ये मिलता था. वेरी नाइस वन. और समोसे मिलते थे वहाँ पे, लेकिन आई थिंक द मटर स्पाइसी पीज और साथ में जो आलू भाजी है, दिस वर द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स जो बच्चे खरीदते थे. एंड जैसे ही हमें ब्रेक मिलता है हम वो क्या करते हैं, खरीद के रख लेते थे. बिकॉज अभी ब्रेक भी कम होता है, टाइम इनफ नहीं होता है, इतनी लंबी लाइन होती है तो कभी कभी खरीदते खरीदते घंटी बज जाती है. So we buy it and we keep it. And teacher अगर यहाँ पर सामने blackboard में कुछ लिख रहे हैं घूमकर, and their back is facing us, so we'll secretly put something in our mouth and start eating as quickly as possible. So उसका अलग ही मजा होता था. You know, it was something fun we used to do. At least we are not doing something very wrong. But
12: very wrong?
21: हाँ, उतना गलत नहीं था वो ना.
12: It was
21: cheating. Cheating नहीं कर रहे थे हम exams में.
12: No, you were cheating.
21: No, we were not cheating in exams and all. पढ़ाई के मामले में चीटिंग नहीं कर रहे थे हम, बस ऐसे ही टीचर की आंखों में धूल झोंक कर अपना पेट भर रहे थे, वो कर रहे थे हम. But it was really nice and fun to do. लेकिन अगर आपने ये कभी किया है तो आपको पता होगा कि इसका मजा क्या होता है. अभी आपने नहीं किया तो मैं आपसे क्या ही बोलूं, क्योंकि जिन लोगों ने किया उनको तो पता ही है. लेकिन ये जो बचपन में सीक्रेटली क्लासरूम में खाने का जो आपका भी अगर हैबिट रहा हो, ये दरअसल चाइना में अब एक रियल कंपटीशन बन चुका है. इस कंपटीशन में 2000 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया. और यहाँ पर चाइना के एक छोटे से टाउन में निंगोबो, मेरे ख्याल से दैट्स हाउ
12: दैट्स द प्लेस, दैट्स द
21: प्लेस, यू डोंट रियली नो इट इज सेइंग इट. तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एवर सीक्रेटली राइस पोरेज ईटिंग कॉन्टेस्ट जो है ये रखा. एक शॉपिंग मॉल में ये रखा गया था, जिसके लेवल वन को, ग्राउंड फ्लोर को, इन्होंने एक फेक क्लासरूम में पूरा का पूरा तब्दील किया. दे हैड द डेस्क, दे हैड द ब्लैक बोर्ड्स, दे हैड टीचर्स जो घूम रहे थे क्लासरूम में मॉनिटरिंग, यू नो, व्हाइल द किड्स और द कंटेस्टेंट्स वर ट्राइंग टू ईट द राइस पुडिंग छिप छिप कर. सो कंटेस्टेंट्स के पास 10 मिनट का टाइम था टू सीक्रेटली फिनिश अ बाउल ऑफ जो वहाँ का लोकल स्टाइल राइस पॉरिज है इसे, विदाउट गेटिंग कॉट कि आप वो चोरी छिपे खा रहे हो. एनी वन जिसको अगर स्पॉट कर लिया जाता हैड टू स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम और एट देयर टेबल फॉर 30 seconds. एंड गेटिंग कॉट 3 times का मतलब ये होता है कि आप एलिमिनेट हो चुके हैं.
12: Okay.
21: पहली बार, दूसरी बार हुआ देन यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, बट तीसरी बार में यू विल जस्ट बी एलिमिनेटेड. पार्टिसिपेंट्स रेंज्ड फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, जिनमें स्कूल बच्चे, रिटायर्ड पीपल और यहाँ तक कि कुछ यू नो टीचर्स भी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. वेल अदर्स वेटेड फॉर द टीचर्स टू टर्न अराउंड एंड बिफोर द टीचर्स लुक एट देम, वो जल्दी जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे. लोकल रिपोर्ट्स ने ये कहा कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स वर अनएक्सपेक्टेडली द बेस्ट एट दिस चैलेंज. इनफैक्ट बहुत से ऐसे जो बच्चे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो शुरुआती दौर में बिल्कुल भी पकड़े नहीं गए, इवन एक बार भी नहीं. बट ये पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन एक सेठी या ओल्ड व्यक्ति ने जीता. Who won the competition what the organizers described as fast, accurate and steady, क्योंकि ये एक बार भी नहीं पकड़े गए. एंड उनके जो ईटिंग टेक्निक्स थे, स्नीकी ईटिंग टेक्निक्स थे, वो इतना कमाल का था कि इनके इनको जबकि एक बार भी नहीं पकड़ा गया तो ही एक्चुअली won this. उन्होंने इनफैक्ट 1 gram का जो गोल्ड राइस ग्रेन है ये जीता. और ये 1 gram का गोल्ड राइस ग्रेन वॉज वर्थ if I'm not mistaken, $250 के आसपास, $250 New Zealand.
12: Wow.
21: इसके आसपास.
12: Amazing. क्या कुछ कर गुजरते हैं लोग. वैसे थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है और इसकी जानकारियां हम आपको देंगे. कहीं

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: क्या हो रहा है हमारे आसपास और क्या आने वाले दिनों में होने को है, इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। और श्री राधा कृष्ण मंदिर के 25th एनिवर्सरी के मौके पर श्री राधा कृष्ण मंदिर और ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। और ये भागवत कथा 5 से लेकर 11 तारीख जून तक होगी, महात्मा गांधी राधा कृष्ण मंदिर, महात्मा गांधी सेंटर, 145 न्यू नॉर्थ रोड, ईडन टेरेस में। तो आप जाकर इसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं।
3: और इसके अलावा ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की ओर से जो उनकी मासिक रामायण कथा है, ये इसी फ्राइडे यानी 29th ऑफ मई को रहेगा फ्रॉम 7:15 PM IRST कम्युनिटी हॉल, 53 स्किप्टन स्ट्रीट, मैंगरी। इसके लिए आप पहुंच सकते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए।
2: और आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो आप और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें आप हमारे पास भेज सकते हैं buzz@humfm.com पर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: देखो हम आ गए।
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras Manukau and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
8: Woolworths has savings in every aisle, like V Energy 250ml 4-pack at just $4.74, or Arnott's Tim Tam Biscuits 165 to 200 grams, $2.69 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
9: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. Plus, enjoy free delivery until Monday. On now. Only at Freedom.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
14: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
15: क्यों, क्या हुआ?
14: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
13: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
16: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है? ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार। क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st May तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
17: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
13: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
17: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
13: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 21 मिनट हुए हैं अभी 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच. पिछले घंटे आज व्हाट्स योर टेक में हम बातें कर रहे थे अबाउट ड्रीम्स एंड रियलिटीज. बचपन में क्या कुछ सपना आपने देखा, तो एक मैसेज जो है ये आया था. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, आई एम गीता. माई ड्रीम वॉज टू बी एन अकाउंटेंट बट माई डैड्स ड्रीम फॉर मी वॉज टू बी अ नर्स. सो आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स एंड आई लव माई जॉब. ये इन्होंने मैसेज किया.
3: That is very sweet. Hi Vijay bhai and Pooja. I always wanted to become a police officer but became a teacher in Fiji, and after moving to New Zealand became a radio announcer in a Hindi radio station but left due to some reasons, and now driving Uber and trying my best to become a teacher again. Krishneel ne ye message kiya hai. That is a very interesting journey, I would say, Krishneel. And we wish you all the very best ki aapka ye jo safar hai teacher banne ka ek baar phir wo aap successfully pura kare.
2: Yes, all the best. आपको भी हम कहना चाहेंगे. और तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं और इनकी जानकारियां जो है कि आपको हम पर हम देते रहते हैं. एक इंडियन डॉक्टर हैं इन वुहान. इनके बारे में एक खबर जो है ये आई है. इन्होंने 3000 किलोमीटर्स दूर से हैदराबाद में एक पेशेंट की सर्जरी की. ही वॉज इन वुहान.
3: How can he do a surgery? China में रहकर हैदराबाद में patient की surgery कैसे कर दी इन्होंने?
2: Yes.
3: Physically तो नहीं की होगी, guidance दिया होगा probably ना?
2: ये एक urologist है जिन्होंने successfully carry out किया एक robot assisted surgery on a patient from लगभग 3000 kilometers away, robot के सहायता से. डॉक्टर साइद मोहम्मद गौस, इन्होंने ब्लैडर रिकनेक्शन सर्जरी की एक पेशेंट पर जो हैदराबाद में थे, ऑपरेटिंग रिमोटली फ्रॉम टोंगजी हॉस्पिटल जो कि वुहान चाइना में है. इन्होंने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसे चाइना में डेवलप किया गया था, एंड हाई स्पीड 5G कनेक्टिविटी. ये सर्जरी लगभग एक और आधे घंटे तक चला अकॉर्डिंग टू चाइना डेली. और ये डेवलपमेंट जो है इसे काफ़ी वाइडली इसके बारे में बातें जो है ये भी की गई हैं. और जो चाइनीज़ एम्बेसी है इन इंडिया, उन्होंने भी जाकर इसके बारे में खबरें जो है ये दी. इंडियन यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस स्टेशन इन वुहान सक्सेसफुली परफॉर्म्ड ए रोबोट असिस्टेड यूरेट्रल रीइम्प्लांटेशन इन जस्ट 90 मिनट्स ऑन अ पेशेंट 3000 kilometers away in Hyderabad, India, thanks to China developed robotics and 5G technology. Ye inhone likha hai.
3: That is very interesting. My goodness, technology and science is doing so amazing these days. कुछ ना कुछ ऐसा extraordinary होता ही रहता है, और ऐसी खबरें जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, it actually gives you a lot of hope as well, ना कि if things will get tougher in days to come as far as medical चीज़ें concerned है, तो कोई ना कोई एक ऐसा तरीका ज़रूर निकल आएगा, because technology and science are going hand in hand, और बहुत ही extraordinary measures जो है ये लिए जा रहे हैं to get some interesting updates.
2: एग्जैक्टली 25 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर कुछ और खबरें हैं जो थोड़ी देर बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे.
0: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आपके लिए ये बड़ा ही आई थिंक अ सॉन्ग फिल्ड विद वाइब ये हम लेकर आ रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, हमारा जो आज का बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड रहा. एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, इनफैक्ट इसके बारे में आपसे कुछ बातें जो ये हम करना चाहते हैं. आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस सो मच कि मुझे ये गाना सुनते ही ऐसे यू नो एकदम ऐसे डिफरेंट सा मूड हो जाता है, ऐसे एंजॉय करने का दिल करता है. इट फील्स लाइक आई एम जस्ट एंजॉयिंग अ लॉन्ग ड्राइव लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, या फिर मैं कहीं किसी बीच किनारे आई एम जस्ट एंजॉयिंग अ नाइस मॉकटेल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग एंड जस्ट वाइबिंग टू इट. ऐसा वाइब मेरे को इस गाने से मिलता है. नाउ द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज नॉट बिकॉज कि मुझे ये गाना कितना पसंद है, बट द फैक्ट कि इस गाने को अगर हम देखें तो गाया किसने है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं. इट हैज़ बीन संग वेरी ब्यूटिफुली बाय राघव चैतन्य, बहुत ही कमाल के सिंगर है ये. रूअक है और साथ में महमूद, इन्होंने मिलकर इस गाने को गाया है. डिफरेंट वोकल्स जो है ये इन्होंने दिए हैं. एंड द सॉन्ग हैज़ बीन कम्पोज बाय नन अदर देन प्रीतम चक्रवर्ती. इफ यू रिमेम्बर लास्ट वीक ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम बातें कर रहे थे अबाउट द फैक्ट कि इनके ऊपर वापस से प्लेजरिज्म के सवाल उठाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लग रहे हैं, काफी ट्रोल किया जा रहा है इनको फॉर यू नो यूजिंग सम म्यूजिक फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंड उसको ये रिक्रिएट कर रहे हैं हिंदी में, या फिर उसे ये हिंदी में बना रहे हैं बट नॉट रिवीलिंग की इट्स एन इंस्पिरेशन बेसिकली, इसे एज ओरिजिनल ये प्रेजेंट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला. सो दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से वापस से ये चीजें उठ रही हैं फिलहाल. दिस इज द सॉन्ग माशूका जिसको लेकर काफी बातें हो रही हैं, दैट इट इज अगेन अ वॉक ऑफ प्लेजरिज्म बाय प्रीतम चक्रवर्ती. बट एज आई सेड इट कुड बी, बट आई डोंट नो ओरिजिनल गाना कौन सा था, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कब रिलीज हुआ था, कितना कॉपीड है, हर एक म्यूजिक कॉपीड है या नहीं, नो आइडिया. बट आई लव लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. सो अगर आपने ये नहीं सुना, इट रिलीज रिसेंटली लास्ट वीक ही रिलीज हुआ इनफैक्ट ये, और आज आपके लिए से बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में हम लेकर आ रहे थे. तो ऑन हम ये आपको बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में सुनने का मौका जरूर मिलेगा. अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2.
1: सो लेट्स सी प्लेजरिज्म को लेकर जो बातें हुई, प्रीतम ने भी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो है ये तो बताया ही है, बट एज टाइम मूव्स ऑन गाने की पॉपुलरिटी डेफिनेटली और बढ़ेगी, बातें भी और होंगी और वो बातें हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे.
2: थोड़ा सा हॉल बना दे.

0: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
2: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates, and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
3: Schools use fibre to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
5: What's going on?
6: 22 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट. पिछले घंटे हम लोग बातें कर रहे थे आई थिंक लास्ट आवर में ना कि कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर ये आ रहे हैं ऑकलैंड.
7: Yes, absolutely. हमने आपको बताया on the 18th of July the great comedy night ये होने जा रहा है सुपर सिटी ऑकलैंड में विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर ये रहेगा. एंड एज वी हैव ऑल्सो इन्फॉर्म्ड यू कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टिकट्स जो है दे आर गॉन, विच मीन्स कि नाउ यू लिटरली हैव टू फाइट फॉर योर सीट. यू हैव टू ग्रैब योर टिकट्स ASAP ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मिस हो गया. bookmyevent.co.nz यहाँ से आप टिकट्स जो है जरूर ग्रैब कर सकते हैं. एंड देन बी सेटिस्फाइड एंड रेस्ट अश्योर्ड कि अच्छा वी आर सॉर्टेड एंड वी कैन हैव अ वंडरफुल नाइट ऑन द 18th ऑफ जुलाई विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर.
6: तो हमने ये भी कहा था कि आज हम खास बातें जो है ये भी करेंगे ट्राइविजन एंटरटेनमेंट और ट्राइविजन इवेंट्स के धर्मेंद्र शाम से. धर्मेंद्र, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो.
8: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा जी,
6: कैसे हो?
8: एकदम मस्त है.
6: यू नो सो फार आउट ऑफ द इवेंट, यू नो टू मंथ्स लगभग बाकी है, 30% ऑफ द टिकट ऑलरेडी गोन. तो कैसा अभी यू नो इनिशियल मोमेंटम जो है इसकी बात ही करें, हाउ आर थिंग्स शेपिंग अप फॉर द इवेंट?
8: मामला एकदम गर्म है और जिस तरह से रिस्पॉन्स है 30% से ज्यादा ही टिकट्स अब तो चले गए हैं क्योंकि वीकेंड में बहुत जोर रहा है टिकट्स का. और अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि शोज करते रहते हैं और आपको भी पता है शोज आप भी करते हैं तो टिकट्स जो होता है हमेशा आखिरी मोमेंट पर जाता है. लेकिन इस शो के लिए सरप्राइजिंगली टिकट्स जो है ये डे वन से बहुत जोरों से जा रहे हैं और बहुत ही मतलब लोगों का जो रिस्पॉन्स है यहाँ तक कि जो हमारे रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स है ये बहुत ही बेहतरीन है और वन ऑफ इट्स काइंड रिस्पॉन्स इस शो के लिए मिल रहा है.
6: और अभी 18th ऑफ जुलाई कृष्णा अभिषेक राजीव ठाकुर, क्या सोचकर आपने ये कॉम्बिनेशन जो है ये बिल्ड किया है?
8: ये कॉम्बिनेशन अभी तक जो बाकी के फनकार आए हैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा म्यूजिकल नाइट्स होती है, संगीत से भरा होता है और सिर्फ म्यूजिक होती है या तो एक आर्टिस्ट आता है उन्हीं पर आधारित होता है, एक कलाकार खड़े होकर गाना गाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है. लेकिन इसमें हमने सोचा कि लोगों को थोड़ा मसाला होना चाहिए और कैरेक्टर अगर एक बुलाएंगे तो भी अधूरा रहेगा. तो हमने सोचा कि इनका कॉम्बिनेशन अभी हाल ही में काफी स्टेज शोज पर भी मैंने देखा. राजीव ठाकुर जो कि कपिल शर्मा शो में बहुत सारे किरदार निभा चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया ये स्टैंड अप कॉमेडियन है. तो राजीव ठाकुर जो है ये तो खुद सभी पर भारी है, लेकिन कृष्णा जो है कृष्णा तो कृष्णा है, तो कृष्णा के साथ राजीव ठाकुर का जो कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन मैंने देखा. और लोगों के लिए हर दिन के दौड़ भाग, नौकरी, काम पर जाना, वापस आना, परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करना, फिर पे करना, तो इससे थोड़ा सा फुर्सत लोगों को चाहिए थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए, और इसी बात को मद्देनजर रख करके हमने ये जो शो है इसकी तैयारी की है। और लोगों को हम बता दें कि शो में कुछ और तड़का भी लगने वाला, कुछ शायद सरप्राइज बहुत ही जबरदस्त होने वाला है जो हम ऐलान नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन वो शो के दिन इनको पता चलेगा।
6: अच्छा, शो के दिन पता चलेगा। That's quite interesting to know. और ये भी मैंने देखा कि टिकट्स जो है बहुत तेजी से, जैसे कि आपने बताया, बिक रहे हैं। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर इज एन अमेजिंग वेन्यू। तो टिकट प्राइसेस जो है इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, व्हाट इज द स्टार्टिंग रेंज?
8: टिकट प्राइसेस जो है ये $49 से लेकर के है, और फिर 49 से लेकर के 59, 69, 79, और जो VIP सीट्स, ये शायद इसी वीक में खत्म ना हो जाए, बिकॉज वन बस कुछ ही, मतलब दो या तीन टिकट्स या चार टिकट्स बाकी रहेंगे। तो जो VIP एक्सपीरियंस लोगों का रहेगा वो टिकट्स निकल सकते हैं। इसके बाद में जो प्रीमियम सीटिंग है वो भी टिकट्स बहुत जोरों से जा रहे हैं। कल मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो VIP और प्रीमियम सीटिंग्स ले रहे थे। तो क्या होता है, लोग देर में तो टिकट्स लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल फ्लैट रेट टिकट्स होते हैं हमेशा बाकी के इवेंट में, तो लोग टिकट्स जानते हैं कि टिकट्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन ये जो वेन्यू है ये नंबर है, मतलब कि सीट नंबर है, और हर एरिया का सीट प्राइसिंग अलग है। तो लोग अगर देर करेंगे तो जो अच्छी जगह है बैठने की वो अपने हाथों से खो देंगे। तो इस तरह से जो टिकट प्राइसिंग है ये की गई है।
6: न्यूजीलैंड में एक ही शो होने जा रहा है इनका
8: पूरे इस टूर में, सिर्फ ये न्यूजीलैंड वासियों के लिए ही हमने इनको बुलाया है। तो ना ऑस्ट्रेलिया में है ना कहीं है, सिर्फ ऑकलैंड में एक ही शो हमारे ऑकलैंड वासियों के लिए ये हम कर रहे हैं।
6: ओके, सो देयर इज अपॉर्चुनिटी, एम्पल टाइम हम कह सकते हैं, स्पेशली टू दोज जो आउट ऑफ ऑकलैंड रहते हैं, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी एडवांस में, यू नो, अपने फ्लाइट्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप वेलिंगटन, न्यू प्लिमथ, अन्य इलाकों में रहते हैं तो वहां से आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, इवन फ्रॉम नॉर्थलैंड, टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल नाइट।
8: Yes, और एक और खास बात इस शो के लिए है, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने कभी किया हो या ऐसा मौका मिला हो लोगों को। इस शो के लिए जो टिकट्स है, हम जानते हैं कभी कभी हार्डशिप भी होती है लोगों को टिकट्स लेने में, पहले से लेने में। तो हमने इसके लिए स्पेशल लोगों को ये भी एक ऑप्शन दिया है पेमेंट के लिए, आफ्टर पे। तो लोग आफ्टर पे के जरिए भी टिकट्स ले सकते हैं bookmyevent.co.nc से।
6: Oh, that's amazing. तो VVIP वाले टिकट्स आपने कितना बोला है?
8: $199
6: तकरीबन $200 से $50 पे वीक में आप VVIP में बैठ सकते हैं, और ज्यादा बोझ भी एक टाइम पर ज्यादा आपको $200 पैसे भी नहीं ढीले करने पड़ेंगे।
8: राइट, सो 4 weeks के लिए, वो 4 terms के लिए पेमेंट होता है, तो ये इसके लिए भी एक बहुत ही सरलता पूर्वक लोग टिकट ले सकते हैं।
6: और जाने से पहले धर्मेंद्र, कुछ और डिटेल्स हैं जो अभी अभी तो बातचीत हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, दिस 2 month जर्नी जो हम ओवर टाइम अभी कंप्लीट करने वाले हैं, और कई और बातें होती रहेंगी इस संबंध में, लेकिन आज जाने से पहले कुछ और कहना चाहेंगे लोगों से?
8: बिल्कुल, यही कहना चाहेंगे कि ये जो शो है एक बहुत ही यूनिक शो है, और इसमें खासियत ये है, अभी हम अपने जो टीम मेंबर्स है उनसे बात कर रहे थे, आपने शायद देखा होगा जो पोस्टर लॉन्च रहा है, कितना बड़ा पोस्टर लॉन्च रहा है, कितने सारे लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। और ये हमने डिस्कस किया कि शोज तो हमेशा हम करते हैं, लेकिन इस शो में मुझे लगता है कि ये सुपर डुपर हाउसफुल जाएगा, ये एक बात है। लेकिन जब इतने सारे लोग आएंगे, और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो शो है, इसमें कुछ खामी रहेगी, कमी रहेगी, तो ये सही नहीं रहेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी लोग इस शो में आए, आखिरी में जब जाए तो वो हंसते मुस्कुराते हुए एक फुली फिल्ड शो लेकर के जाए, मतलब कि ना कि सिर्फ कृष्णा, ना कि सिर्फ राजीव, और भी जो सरप्राइजेस है इसके जरिए इनको ऐसा मजा मिले कि जितने पल, जितने क्षण वो स्टेज या फिर वहां पर जो बैठे हैं शो के सामने, इस स्टेज के सामने, उनको फुल एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिले, ये हम करने की अब कोशिश कर रहे हैं।
6: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र, एंड वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू द इवेंट कम 18th जुलाई, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा आपसे और भी बातें हम जरूर करते रहेंगे, एंड एज द टिकट्स सेल आउट प्लीज डू लेट अस नो।
8: थैंक यू,
6: थैंक यू सो मच। तो याद रहे 18 तारीख जुलाई को राजीव ठाकुर और साथ में कृष्णा अभिषेक ये रहेंगे bookmyevents.co.nz। जैसे धर्मेंद्र ने बताया, आफ्टर पे के जरिए भी टिकट्स आप ले सकते हैं। अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, ग्रैब योर टिकट्स नाउ, जो शायद बाद में कहीं आपको सिर्फ $49 वाले टिकट मिले, अभी अपॉर्चुनिटी है, आप VVIP टिकट्स ले सकते हैं आराम से, आफ्टर पे के जरिए अपने पेमेंट्स जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं।

0: ऐसा लग रहा है कि अभी बस सफर शुरू हुआ है। लो भाई, सफर बस अपनी मंजिल पर भी पहुंचने को है। दो बातों में आज की पहली बात, शायद इस नजरिए से हमने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं या सोचने की कोशिश नहीं की। तो सुने इसको कि यादें पीछे नहीं खींचती। अक्सर लोग कहते हैं ना कि तुम हमेशा पुरानी बातों पर ही फोकस किया करते हो, लेकिन यादें पीछे नहीं खींचती, वो बस बताती हैं कि हम कहां से चलकर यहां
1: तक
0: आए,
1: पहुंचे। नाइस, ट्रू।
0: और आज की दूसरी बात, इसके बारे में भी सोचे, जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता। कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं।
1: वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, इनसे कुछ सीख लीजिए, अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव कीजिए जो आपको और भी बेहतर से, जो कहते हैं ना, बेहतर से बेहतरीन बनाने में आपकी हेल्प करे। चले इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात ये होगी अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर, और ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा के साथ हम आ जाएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: टाइम आउट, टाइम आउट।
2: Okay, Macca's new Dunk McCrispy is here. Juicy chicken dunked in Korean sticky barbecue sauce. Plus Macca's sauce doesn't miss. Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
3: Oh yeah, Super Cheap Auto's Toolapalooza is on now. With super deals on quality auto tools, it's music to your ears. Make it super. Super Cheap Auto.
4: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. A plan to disestablish 27 roles at the Māori Development Agency is headed to mediation in Wellington today. It comes after the PSA filed legal action over a lack of consultation over the proposed restructure in breach of the collective agreement. The union says the cuts would result in a 20% reduction in Te Puni Kokiri's workforce after the earlier loss of 75 roles. A new survey has found a large majority of teachers and principals here feel the system is getting worse. The Aotearoa Educators Collective asked 418 workers in the sector for their thoughts. Spokesperson Linda Knight says the results are concerning.
6: There's quite a high level of pessimism. 89.4% felt their education was moving in the wrong direction.
5: Stewart Island is constructing a massive solar farm aimed at reducing the local community's reliance on diesel generators. Southland Mayor Rob Scott says the project has been touted since the 1990s.
7: Construction of the actual solar farm hasn't started yet, but the site clearance to get ready for it has.
5: And overseas, UK police are looking into claims Andrew Mountbatten Windsor behaved inappropriately towards a woman nearly 25 years ago. The incident allegedly happened at a racing event at Royal Ascot in 2002, the Queen's Golden Jubilee. In motorsport, with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty and the Formula One race in Canada on Sky Sport.
8: Lawson stays ahead of Gasly, seventh place for him.
5: Yeah, more points for Liam Lawson, seventh after starting 12th on the grid. Kimi Antonelli won the race for Mercedes. And in the States, a best ever result for Kiwi Scott McLaughlin at the Indy 500, finishing third behind the winner Felix Rosenquist.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: The highs of 18, overnight temperature of 7. Aaj ka focus bataya ja raha hai, kuch clouds hain aur kuch showers Fangapura ki taraf pad sakti hain. It feels like 14 degrees right now. 5:17 par sunset bataya ja raha hai.
4: Non-stop Bollywood.
10: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
4: hain. Hum playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
11: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
12: My Time with Kashika. Wow.
9: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 10:03 होने वाले हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ चुकी हूं. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. कशिश फूड्स के सौजन्य से ये 10 से 12 बजे के दरमियान आपका मेरा साथ बना रहता है मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पे मैं आपको महत्व बताती हूँ अपने आप के लिए, यानी हाउ इम्पोर्टेंट आर यू टू योरसेल्फ. सो अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए क्या आपने ओवर द वीकेंड अपने लिए टाइम निकाला या नहीं निकाला? देखो, बुरा वक्त जब आता है तो सब छीन लेता है, हंसी, भरोसा और अपने होने का एहसास. तो याद रहे, जिस समय आप बीमार पड़े या कुछ हो गए, आप खुद के ही नर्स, डॉक्टर, फ्रेंड्स जो भी कुछ हैं वो खुद के ही होंगे. तो सबसे पहले आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा. तो आपने आई होप अपना ख्याल रखा हो. बस इसी नोट पर आपके मी टाइम को अपने मी टाइम के साथ जोड़ते हुए मैं काशिका 12 बजे तक साथ देने वाली हूँ. थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ जाएंगे यहाँ राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स. कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. और मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा शेयर करूं जिससे कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया बातें हो जाएं। तो चाहे वो कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड हो या फिर हमारे म्यूजिक स्टेशंस, अरे भाई म्यूजिक स्टेशंस के बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता है कि हम अब बन चुका है ऑकलैंड का नहीं न्यूजीलैंड का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन, इंडियन रेडियो स्टेशन। तो ऐसे में आपके लिए एक खुशखबरी और, क्योंकि जहां हम इस जगह नंबर वन है नंबर्स के हिसाब से, हम रिवाइंड जो है हमारा नंबर वन बॉलीवुड का स्टेशन जो बन चुका है, 60s 70s के ट्रैक लेकर आता है, रोवा का नंबर वन म्यूजिक स्टेशन से, और साथ साथ 80s के जूक बॉक्स जहाँ 80s के नॉनस्टॉप ट्रैक्स आप सुन सकते हैं हमारे रोवा ऐप के जरिए। वेलकम ऑन माई टाइम मेरे साथ कशिका के साथ।
4: बचाओ क्या,

0: know how to do this, because this is something which has come out aaj subha, where the English requirement for accredited employer work visa expanded. Ab iske bare mein hame information puri ki puri samajhni definitely hai aur kis tarah se ye kiya ja raha hai. So I have our legal associates expert, which is Raj Pradeep Singh ji, very much online with me, and very good morning to you, sir. Kaise hain?
1: Good morning, Kashika ji. Bas, I'm just a little bit with cold and sneezing.
0: Nee, nee, take care of yourself. Mausam aisa hi hai, badalta hua. To sir, ye bahut ye ek pechida sa sawal aa gaya hai aur ye government ne you know extend kar diya hai. Ye kya hai, kuch batayenge?
1: हाँ भी, सुबह सुबह मैंने भी इस न्यूज में चेक किया है दैट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इज यू नो चेंजिंग दिस इंग्लिश रिक्वायरमेंट रूल्स फ्रॉम 1st of June. इट मींस ये जो भी आएंगे न्यू ऑक्यूपेशंस, मतलब जो ऑलरेडी इसके लेवल 3 के, तो अभी तक तो सिर्फ लेवल 4 और 5 पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी, बट नाउ अब इन्होंने लेवल 3 पे भी कर दी है. तो जो लेवल 3 के ऑक्यूपेशन है, इसमें ऑफकोर्स कम्युनिटी के काफी लोग हैं जो काम करते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट उनके लिए बढ़ जाएगी. ऑफकोर्स फ्रॉम इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के भी उनको लगता है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इसलिए अच्छी है, एक तो जो आपकी उनकी वर्क कंडीशन है वो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, और दूसरा जो कम्युनिटी है लोकल उनके साथ वो अच्छी तरह इंटरेक्ट कर पाएंगे, और अपना जो वर्क है जहाँ काम करते हैं वहाँ पे अच्छी तरह वो अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे. तो जो लेवल 3 के ऑक्यूपेशन है उसके अंदर जैसे कुक है, स्कैफोल्डर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एक्सकवेटर ऑपरेटर या मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, इस तरह की जो मशीन्स है या कुकिंग का है, ये आएंगे इसके अंदर. इन लोगों को अब 1st of June, इट मींस 30th of May तक जितने भी ये कर पाएंगे उतना बेटर है. उसके साथ में सीएनसी मशीन ऑपरेटर वगैरह है ना, कॉन्क्रीटर कैबिनेटी, तो मोस्टली जो अपने स्किल लेवल 3 के जो ट्रेड के जॉब्स है, कारपेंटर वगैरह, तो वो सारे इसके अंदर आएंगे. आउटडोर जैसे सुपरवाइजर अब काफी हो गए थे, फ्रूट प्रोडक्शन सुपरवाइजर वगैरह, जितने भी नए एनुअल नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशन आए थे, बहुत सारे हमारे फार्मिंग के भी आए थे, तो वो सारे इसके अंदर अब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो जाएगी. सीनियर टायर टेक्नीशियन ये भी पोजीशन है, नर्सरी प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन है इसके अंदर जो ट्रेड से रिलेटेड है, जो इन्होंने अभी जो पाथवे भी बनाया है लेवल जो अभी अगस्त में चेंज आएगा, जिसके अंदर 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 2.5 साल न्यूजीलैंड से बाहर और 1.5 साल न्यूजीलैंड में. सो लेवल 3 के अब जितने भी ऑक्यूपेशन है जो भी वर्क वीजा अप्लाई करेगा तो उनकी रिक्वायरमेंट वही होगी, IELTS 4.0 या PT 29. एंड ऑफकोर्स क्योंकि अभी लागू नहीं हुआ, अभी भी दे गॉट अराउंड 1 week, अगर किसी के पास टोकन है and they are ready to submit their visa applications, तो probably वो 1 जून से पहले submit कर सकते हैं 31st May तक, ताकि उनके ऊपर जो ये नए changes हैं वो लागू ना हो. और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 4.0 या PT is a basic English requirement. अगर आप न्यूजीलैंड में काम करना चाहते हो या न्यूजीलैंड में ऑलरेडी काम कर रहे हो पिछले 2.5-3 साल से, तो easily you can get this kind of English requirement. और अगर किसी को इस मामले में हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स कशिका जी, वी आर देयर टू हेल्प देम, गाइड देम.
0: बिल्कुल बिल्कुल, एंड द नंबर इज 0927994399. legalassociates.co.nz के आप वेबसाइट पे चले जाएं, अपॉइंटमेंट बुक करें अगर आप में हैमिल्टन या ऑकलैंड से सुन रहे हैं. एंड डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पूरे हफ्ते भर में. अगर आपको टोकन मिला है, एज राज जी है सेड, आप प्लीज़ लीगल एसोसिएट्स में जाएं इसको हरी अप करने के लिए, ताकि आप उस कैटेगरी से भी बच सके. एंड दैट्स व्हाट वी ऑल प्रे, दैट हमारी कम्युनिटी में ये और भी जल्दी इजी हो जाए. थैंक यू सो मच टुडे राजी, आई नो यू नॉट वेल, स्टे वार्म एंड कीप ड्रिंकिंग हॉट वाटर, वार्म वाटर.
1: चीयर्स, थैंक्स अ लॉट,
0: बाय बाय.
2: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं.
0: याद रहे ऑफिस शाउट आउट का भी टाइम आ रहा है, 5599 पे टेक्स्ट करें, 0800 00 हम पर मुझे कॉल करें.
4: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे.
5: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने.
4: राज गजानन जाऊंगा।
5: हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुनें।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
10: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
9: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
10: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
9: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
12: Martin didn't think he needed a DVS system.
13: I've got a brand new home.
12: Does your brand new home have condensation?
13: Yeah.
12: New homes are often built tight, but a healthy, comfortable home needs to be able to breathe.
13: Is that what DVS does?
12: Yeah. DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology will make your home drier, healthier and more comfortable.
14: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
15: Beating pump prices is easy when you take a bus, and you won't even have to wait long. There are 45 bus routes around Auckland that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week, and a whole bunch that keep running till midnight with reduced frequency, so you can spend your money on a night out instead of just getting there. Chances are, there's a frequent or late night bus that's going your way. Check the AT Journey Planner, then just turn up and go.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
16: Office shout out.
0: So big thank you to you, Mitesh from Web Tigers. आप Hamilton से हमें सुन रहे हैं, and that too from Rova app. Isn't that very interesting? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि अच्छा regular आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो हमें Rova app के जरिए सुन रहे हैं? बहुत सारे होंगे. I know, वो तो हमें numbers आपके पता चल ही गए थे जब हम लोगों ने अपना एक बहुत ही beautiful सा Fiji की ticket के लिए जो details हम आपके साथ share कर रहे थे Flyaway Frenzy में, उसमें हमने देख लिया कितने Rova के listeners हैं हमारे. और साथ साथ हमारे listeners और भी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे 80s के jukebox को number 2 position पर ले आए हैं, म्यूजिक स्टेशन को, और हम रिवाइंड को number 1 position पर ले आए हैं. So yeah, thank you.
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ब्रांच भी है।
1: बाय द वे, आज वर्ल्ड फुटबॉल डे है और कल ऑकलैंड एफसी ने एक ए लीग भी जीता है, वी ऑल नो दैट। लेकिन ऐसे में पता है किसने चौके पे छक्का मारा यहाँ मैं कहूँ किसने गोल मारा, दैट वॉज नन अदर देन हमारे अवी, जो कभी कभी आपके लिए, ऑफकोर्स सैटरडेज को वीकेंड्स में तो होते हैं, लेकिन कभी कभी वो नाइट कैफे भी आपके लिए लेकर आते हैं। इन्होंने क्या किया, ऑकलैंड के जो एफसी के कोच हैं इनके साथ ये सडनली आई थिंक इनके साथ भिड़ गए या उनकी मुलाकात हो गई। इवन दिस टर्न्ड आउट टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसे कभी कभी जैसे कोच स्टीव कोरिका से जैसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने एक पल नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने कहा अरे भाई मैं इनसे बात ही कर लेती हूँ कि जीतने के बाद कैसी फीलिंग हुई, एंड दिस वॉज सो अमेजिंग। तो हमारे फेसबुक के पेज पर आप पहुँच सकते हैं जहाँ अवी ने बातचीत करी विद नन अदर देन ऑकलैंड एफ सी के कोच स्टीव कोरिका के साथ, एंड हैप्पी फुटबॉल डे टू ऑल।

0: नाली है, पब्लिक मवाली है, देरेली गाली है, रस्ते पे खड्डे है, बैलों के अड्डे है, सड़गले मसले, ए तू असले कंगन किधर है बेलाला।
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: वैसे ड्रीम डायरी मेरी खुलने वाली है, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी ड्रीम है जो आप शेयर करना चाहते हैं, 0800 00 हम पर मुझे कॉल करें या 5599 पे ज़रूर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाय द वे, जब मैं बात कर रही हूँ अबाउट वीकेंड के मूड की, जो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, लेकिन ऐसे में क्या आपने भी पिक्चर देखी थी चांद मेरा दिल? कहा जाता है, आई मीन जेन ज़ी कैन रिलेट टू अनन्या पांडे, और ऐसे में चांद मेरा दिल में उनका एक इमोशनल एस्पेक्ट देखा गया, कैसे अपने आप को उन्होंने ऑन स्क्रीन रीशेप किया और एकदम से बढ़िया सी एक एक्ट्रेस बनकर ये सामने नज़र आई। और शायद इन्होंने कोई चांदनी का रोल अदा किया था, आई एम नॉट सीन इट, बट इनके इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में एक सरप्राइज एलिमेंट ये आ गया कि शी हैज़ बीन सीन एज अ ग्रेट एक्ट्रेस नाउ। लोग इन्हें कंसिडर करने लग गए हैं कि भाई शी इज़ नॉट जस्ट फॉर लाइट हार्टेड पॉप या रोमांस एंड दोज थिंग्स, बट शी कैन ऑल्सो डू मूवीज़ जो नोटिस की जाती हैं लोगों के साथ। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाके नज़दीकी सिनेमा में देख सकते हैं।
1: Gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Leandra's Bay on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store wide, including Manchester home decor, fabric, sewing, craft, knitting, yarn, party, curtains, and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store wide. Say love now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
2: Roadside drug testing is here. New Zealand Police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug driving.
3: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
4: तो ये बड़ी पेचीदा सी ड्रीम है जहाँ इन्होंने देखा कि इनकी सिस्टर यू नो जो उनको विजिट करने आई थी शी पास्ड अवे और उन्होंने कहा उनका फोकस था इस बात पे कि क्या ये शॉक में आ गई एंड शी वाज लाइक इन ग्रेट शॉक जब इनको ये सपना आया तो आई एम श्योर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट आप अपनी वो आपको विजिट उन्होंने किया लेकिन उसके बाद आपको सपने में आई कि वो you know she's passed away so if you're feeling anxious or stressed ki aisa kuch hua hai to yahi keh sakti hu that aapke kisi family member ko aap agar is tarah se dream karte it has a meaningful moment jahan pe aap agar dekha jaye to aise log jo hote hain bade strong emotions aapke unke sath hain and it's not a surprise agar aapke wo emotions aapke dream mein nazar aate hain khas taur pe jab aapko lagta hai ki kya aisa to nahi main inko kho dun you know the feeling of losing someone कि ये हमेशा मेरे साथ रहें और एक ऐसी फीलिंग रह जाती है तो कभी कभी हो सकता है कि वो ड्रीम इस तरह से आया हो बट मैं इतना ही कह सकती हूँ यू मस्ट कॉल अप योर सिस्टर एंड स्पीक टू हर एंड गिव हर एन अश्योरेंस दैट आप उनके साथ हैं बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है इन बातों से और उनका बॉन्ड आपके साथ जो बना होगा जो आपकी जो छुट्टी रही होगी उसमें भी वाकई ही कमाल की ही चीज़ें रही होंगी लेकिन एक बात बताती हूँ ऑन अ लाइटर नोट आई वुड लाइक टू ब्रिंग समथिंग टू योर नोटिस हंसना है थोड़ा सा हमें ठीक है ये थोड़ा सीरियस हो गया ना मुद्दा लेकिन जब तक हंसना है जब तक आपका पेट दर्द नहीं हो जाता ये करने के लिए आपके लिए आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने के लिए मतलब मैं आई टेल यू ऑनेस्टली मैं फ़ैन रही हूँ कृष्णा अभिषेक की जब से मैंने इनको झलक दिखलाजा में देखा था तो कोई भी एक अगर आप इनको जैसे कपिल शर्मा शो में देखते हैं कहीं पे भी देखते हैं ग्रेट कॉमेडी नाइट में आपने इनको देखा तो ये पहली बार न्यूजीलैंड आ रहे हैं एंड आई कैन से दैट टिकट्स आर गेटिंग सोल्ड वेरी क्विकली अब डेट नोट कर लो 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आपको पहुंचना है आप कहेंगे काशिका इतनी बातें बता दी ये भी तो बता दो कि टिकट कहां से खरीद सकते हैं ठीक है तो आप bookmyevent.co.nz के ज़रिए टिकट खरीद सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई इश्यू हो रहा है तो धर्मेंद्र श्याम जी से आप बातें करें 0210432720 में अगर आपको लगता है कि इस समय आप पे नहीं कर पा रहे isn't that nice that what they have done is after pay option इन्होंने आपके लिए रेडी करा है तो ठीक है जाके उनसे बात कीजिए और bookmyevent.co.nz के ज़रिए आप बिल्कुल ट्राई विजन इवेंट्स के धर्मेंद्र श्याम और उनकी टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं

जिस फिल्म का गाना मैं बजाने वाली हूँ ना, मैं आपको ये बता देती हूँ, इस फिल्म में हीरो हीरोइन दोनों आपस में शूटिंग के दौरान बात नहीं कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि जैसे शूटिंग करने आए, अपना काम किया और अपने डायलॉग उठाए और बात शॉट दिया, उसके बाद चले जाते थे। अब ये फिल्म कौन सी थी आप सोच रहे होंगे, और ये हीरो हीरोइन कौन से थे? वेल गेस मत करें, कोई बात नहीं, मैं आपको बताने ही वाली हूँ। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। 1998 में ये फिल्म बनी थी, एंड इस फिल्म में सलमान खान एंड ट्विंकल खन्ना थे, और फिल्म अच्छी चली। एक्चुअली मैं ये कह सकती हूँ ये 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, एंड लोगों को लगा कि इस फिल्म में यू नो और क्या क्या ऐड हो सकता, बट मूवी वॉज नाइस। एक्चुअली आई डू रिमेंबर दैट ये फिल्म अच्छी चली थी और लोगों को पसंद भी आई थी। गाने इस फिल्म के वाकई ही कमाल थे। तो जब बात करते हैं गानों के बारे में, तो चलिए लेके आपको चलती हूँ उस बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ। कहा जाता था कि इस फिल्म में यू नो मोस्टली रमेश तुरानी जी अपनी फिल्म में स्विट्जरलैंड वगैरह जाया करते थे मूवी के शॉट्स लेने के लिए, करने के लिए। एक जगह उन्होंने ऊटी दिखाई थी कि ये ऊटी का रेस्टोरेंट है, लेकिन वो ऊटी का रेस्टोरेंट नहीं था, दरअसल वो मुंबई का एक कैफ़े था। तो चलो आपको चलते हैं थोड़ी सी रियलिटी चेक देने के बाद, कुछ ट्रिविया बताने के बाद इस लवली से ट्रैक की तरफ।

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है कि मैसेज
3: बहुत
2: कर
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
5: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
6: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
0: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. And first, a sad loss for New Zealand. Dame Jewel's top one half of the Top Twins has died after a battle with breast cancer at the age of 68. In a statement, her sister Dame Linda says, "It's with deep sorrow and unimaginable grief we announce the passing of my beloved twin sister Jewel's." A person is dead after a boat capsized off the coast of Kaikoura. Emergency services were rushed to the water just after 7 this morning. 2 people were on board. 1 made it to shore safely. The second was found on the beach about an hour later. They were pronounced dead at the scene after unsuccessful efforts to resuscitate. A single vehicle crash near Whangarei has killed one person and seriously injured another. Emergency services were sent to State Highway 1 in Oakley around 1:30 this morning. Inquiries have been launched into what happened. And organisers have confirmed a photographer has been bitten during the men's semi-finals at the World Surf League event in Raglan. Vice President Renato Hickel says the event's on hold while they look into it.
9: We're going to assess the situation and the next call will be at 12 noon for a possible 12:35 p.m. restart.
8: In motorsport, with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, Liam Lawson has matched his best result this Formula One season. The RB driver has finished 7th at the Canadian GP, but admits it was nervous times having to hold off Pierre Gasly.
10: It was tricky going into the last chicane, but with a good efficiency, good straight line speed, so helped me today.
8: Kimi Antonelli won the race for Mercedes. And in tennis, Novak Djokovic has come back from a set down to win his first round match at the French Open.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
11: Hum par shok soochnaein aap tak laate hain. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
12: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय वर की वारिद की पुत्री तथा स्वर्गीय कृष्ण नायडू की पत्नी डेविड नायडू, जॉन नायडू, कैथरीन आयरीन एलिजाबेथ ऑफ फ्लाविया की मां वर्जीना नायडू की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज शाम 6 बजे होली क्रॉस चर्च करूथ रोड पापाटोयटो में किया जाएगा। प्रार्थना सभा कल सुबह 11 बजे होली क्रॉस चर्च पापाटोयटो में होगी, जिसके बाद 1 बजे मैंग्री लॉन सिमेट्री मैंग्री में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने, स्वर्गीय वर की वारिद की पुत्री तथा स्वर्गीय कृष्ण नायडू की पत्नी डेविड नायडू, जॉन नायडू, कैथरीन आयरीन एलिजाबेथ और फ्लाविया की मां वर्जीना नायडू की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार के लिए आप आज शाम को 6 p.m. अंतिम दर्शन के लिए, माफ़ कीजिएगा, आप आज शाम को 6 बजे होली क्रॉस चर्च पापाटोयटो पहुंच सकते हैं। प्रार्थना सभा मंगलवार को सुबह 11 बजे होली क्रॉस चर्च पापाटोय में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार 1 बजे दोपहर को मैंग्री लॉन सिमेट्री में किया जाएगा। सूचित किया जाता है कि लाउटुका फिजी के स्वर्गीय तुलसी राम के पुत्र, ऑकलैंड के प्रनील और केशनी के पिता, मुनी लक्ष्मी के पति नरेंद्र कुमार उर्फ बॉबी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार 27 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 02112642283 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, लव टू कॉफी जी के स्वर्गीय तुलसी राम के पुत्र ऑकलैंड के प्रनील ओकेशनी के पिता मुन्नी लक्ष्मी के पति नरेंद्र कुमार उर्फ बॉबी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार 27 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 02112642283 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि टोवू लाटुका फिजी के स्वर्गीय निर्भय चंद की पत्नी बाफी जी के जयराम तथा स्वर्गीय राम दुलारी की पुत्री कार्पेंटर्स मोटर्स फिजी के परमेश चंद ड्रासा लाटुका फिजी के शैलेश चंद फिजी में तवराओ प्राइमरी स्कूल के मास्टर नीलेश चंद स्वर्गीय रविनेश चंद और ऑकलैंड के न्यूजीलैंड के विमलेश चंद की माँ तुवू लाटुका फिजी की निर्मला देवी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 27 मई के दिन दोपहर 1 बजे फिजी के समय अनुसार किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने, सूचित किया जाता है कि तुवू लाटुका फिजी के स्वर्गीय निर्भय चंद की पत्नी बाफी जी के जयराम तथा स्वर्गीय राम दुलारी की पुत्री कार्पेंटर्स मोटर फिजी के परमेश चंद द्रासा लाटुका के शैलेश चंद फिजी में तवराओ प्राइमरी स्कूल के मास्टर नीलेश चंद स्वर्गीय रविनेश चंद और ऑकलैंड के विमलेश चंद की माँ तुवू लाटुका फिजी की निर्मला देवी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार इसी बुधवार के दिन 27 मई को दोपहर 1 बजे फिजी में किया जाएगा।
11: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज वैसे ठंड पड़ने वाली है, वैसे दी हाइज ऑफ 18 भी रहेगा, लोज ऑफ 7 होने वाला है. इट फील्स लाइक 14 डिग्रीज राइट नाउ. 5:17 पर सनसेट बताया जा रहा है. सुबह के समय कुछ क्लाउड्स आपको नजर आए, वैसे दिन सुहाना रहेगा.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर, लिव बेटर.
2: मिड मॉर्निंग मजा.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. अभी आपने अगर ट्यून इन किया है तो मैं कशिका आपके साथ 12 बजे तक निभाने वाली हूँ. माय टाइम आपके लिए कशिश फूड्स की ओर से मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान आ जाता है. वैसे इस घंटे में 6 वर्ड स्टोरी होगी. रीयूज, रिसाइकिल क्या कर सकते हैं बताओ, कोई आइडिया दो. 5599 पे या कॉल करो 800 हम पर. डेफिनेटली मैं आपका आइडिया इनकॉर्पोरेट करूँगी. अच्छा, इसके साथ साथ हमारा एनजेड म्यूज़िक मंथ जो है वो इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे में हमारे आज के जो कलाकार हैं ना, वो वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स हैं. तो डेफिनेटली आप सुनना चाहेंगे कौन है ये मेरे पर्सनल फेवरेट. और इनके गाने हम सब बहुत बहुत पसंद करते हैं, जब भी ये गाते हैं. ठीक है, चलो ये तो आपके लिए सेटअप कर ही दिया है मैंने. ऑफकोर्स 6 वर्ड स्टोरी. अरे आज की 6 वर्ड स्टोरी कोई तो शेयर करो 5599 पे. ओके, एंड आई विल ट्राई एंड रीड दैट 6 वर्ड स्टोरी आउट. देखेंगे उसमें कितना सार या कितना मीनिंग निकल कर आता है. हाँ, बहुत सारी मीनिंग वाली बातें हैं. कम्युनिटी में क्या खास होता है ये भी हम आपको डेफिनेटली बताना चाहेंगे. एंड ऑफकोर्स कोई इधर उधर की जो न्यूज़ है आप वो तो जानेंगे. हमारे पॉडकास्ट के बारे में आपको बता देती हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट शो में कुछ कैचअप करना है या ड्राइव शो का कुछ कैचअप करना है तो आप BF लिख के भेज सकते हैं, ड्राइव लिख के भेज सकते हैं, ताकि आपको इनके पॉडकास्ट और इनके जो भी शोज़ हैं मिस किए हैं आप डेफिनेटली वो सुन सकते हैं. चलिए ये तो यहाँ आप तक बता ही दिया. म्यूज़िक स्टेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया. तो फीजी भजन चढ़दी कला, तो फीजी कीर्तन संग्रह और राहत फतेह अली खान जो बहुत जल्द हमारी सुपर सिटी में आने वाले हैं, वैसे इनके लिए भी एक म्यूज़िक स्टेशन बना है. तो रुवा ऐप पे अगर आप हमारे साथ हम कर रहे हैं सो दिस इज़ द टाइम टू हेयर अस आउट, क्योंकि बॉलीवुड के जो भी स्टेशन हैं उनमें मैं कह सकती हूँ हम रिवाइंड 1 पोजिशन पर है. जहाँ 60s 70s के आप ट्रैक सुनते हैं, रोवा का 1 म्यूजिक स्टेशन, ऑफकोर्स ऑकलैंड का क्या, न्यूजीलैंड का 1 स्टेशन आप सुन रहे हैं मेरे साथ काशिका के साथ. बजाऊं क्या?

0: celebrating local artists.
1: Back your backyard beats.
2: तो ये आर्टिस्ट इतने खूबसूरत हैं, इतने बढ़िया हैं, जो इनके बारे में काबिले तारीफ़ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये सच्ची बताओ जब हम ये गानों को सुनते हैं और इनको आप तक लेकर आते हैं, सो दीज थिंग्स इज सच बिग एफर्ट व्हाट दे मेक. और ये एफर्ट मैं कह सकती हूँ हमारे एनजेड म्यूज़िक मंथ में दिखाई दिया इस बार, जहाँ हमारे पास कुछ नए नए आर्टिस्ट भी आए हैं और कुछ पुराने कलाकार इन्होंने भी अपनी एंट्री हम तक पहुँचाई है. और उनमें से एक कलाकार है जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मैंने हमेशा सुनती हूँ. पहले मैंने कुछ जैम लाउंज में सुना और उसके बाद देन आई जस्ट टोटली कुड रिलेट टू हिम लाइक अ सोनू निगम टाइप ऑफ अ वॉइस. दैट्स नन अदर देन नील पटेल. अब नील पटेल क्या कमाल का गाते हैं, इतनी सॉफ्टनेस उनकी आवाज़ में है. भाई इनका गाना सुने, और मैं चाहती हूँ अगर आप इनका गाना पसंद कर रहे हैं तो इनको वोट करके दें. 5599 पे MM लिखें और नील पटेल लिखें, इनको टॉप 3 में अगर आप लाना चाहते हैं. लाइक कमेंट शेयर कीजिए अगर इनकी कोई पोस्ट आप देखते हैं, फेवरेट आर्टिस्ट आप इन्हें अपना बनाना चाहते हैं. टोटल इंगेजमेंट इनका जो रेडियो के वोट्स और सोशल लव है उस पर टोटली डिपेंड किया जाएगा. सो हियर वी आर, नील पटेल for you, ladies and gentlemen.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स My Time with Kashika brought to you by Kashish Foods Eat better, live better
2: वैसे एक बात तो है कि हम लोग मैं अपनी मम को खास तौर पे देखती थी वो जो वेइंग स्केल होता था उस पे खड़े होके हर रोज चेक करती थी कितना वेट मेरा वो कम हुआ कितना वो हुआ शी टू ऑलवेज डू दैट बट उसके बाद क्या होना शुरू हो गया हम लोगों ने वो स्टेप्स लेने शुरू किए कि ये स्टेप्स लेंगे तो इतने स्टेप से क्या होगा तो एक पैटर्न हमने फॉर्म किया कि भाई इतने स्टेप्स लेंगे तो वो जो वॉच होती है जिसमें आपके स्टेप्स मॉनिटर किए जा सकते हैं यू स्टार्ट वेयरिंग दो स्मार्ट वॉचेस वो कुछ ऐप्स आने लग गई क्या क्या होने लगा इस तरह से एक हेल्थ एंड वेलबींग की अवेयरनेस बढ़ती चली गई बट How many steps are we taking? Actually, अगर आप अपने नींद को भी ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आपके न्यूट्रिशन में आपको कितना क्या लेना है आप स्कैन कर सकते हैं तो आपको बता सकता है कि ये आपके में इतनी इसमें इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं इतने एडवांस हो चुके हैं हम लेकिन एज फार एज एक्यूरेसी इज़ कंसर्न हम लोग कहाँ तक इसमें एक्यूरेट हो जाते हैं कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शायद पता भी नहीं चलते बट ये एक्यूरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या कर सकते हैं वो खास तौर पे हमें स्टेप्स के ज़रिए ज़रूर पता चल जाता है कि कितने स्टेप्स हम लेते हैं पता है मेरे सबसे ज़्यादा स्टेप्स कितने हुए थे मैं तो फेंट हो गई थी सुन के कि अरे 13,000 स्टेप्स मैं डिज्नीलैंड गई थी ना उस समय मेरी हालत ख़राब हो गई बट हाउ आई वेंट हाउ आई डिड दोज 13,000 स्टेप्स इज स्टिल अ हिस्ट्री टू मी डोंट लाफ बट ऐसा होता है बट अपना वेट वगैरह आप जो है ये चेक डेफिनेटली कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना इसमें वजन है कितना आप में आपने गेन किया क्या नहीं किया आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ रियली गॉन वेरी फार हाँ भाई बॉडी मूव करते हैं तो भी वो स्टेप्स काउंट कर किए ही जाते हैं शायद आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग
0: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ
5: अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
8: A love story that's not perfect, not planned, just a little real. Chand Mera Dil, starring Ananya Pandey and Lakshya.
9: Pyar mein thoda pagal to hona hi padta hai.
10: Hamari love story to legendary ban gayi.
8: An intense love story of the year, Chand Mera Dil, now showing in cinemas.
11: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
8: Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
12: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
13: क्यों क्या हुआ
12: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424
14: Martin didn't think he needed a DVS system.
15: I've got a brand new home.
14: Does your brand new home have condensation?
15: Yeah.
14: New homes are often built tight, but a healthy, comfortable home needs to be able to breathe.
15: Is that what DVS does?
14: Yeah, DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology will make your home dry.

0: Crossword Story.
1: Failure is the best path to success. Failure is the best path to success. I think this is so right. But मैं जब इन words को count कर रही हूँ तो आज आपने जो मुझे भेजा है, big thank you to you, 2204. तो आपने मुझे भेजा failure is the best path to success story, 7 words. But आज के लिए माफ, ठीक है? क्योंकि actually देखा जाए तो it is the best path to success. जब तक आप गिरेंगे नहीं, उठना कैसे सीखेंगे? है कि नहीं? I think these kind of things matter a lot. By the way, it also matters जब आप अपना वोट देते हैं. So Binafa, thank you very much. आपने, his name is not Mihir Patel, his name is Neel Patel, N-E-E-L, Neel Patel, जिनका गाना भी थोड़ी देर पहले आपने सुना. So आपने लिखा, वी लव यू, गॉड ब्लेस Binafa, थैंक यू सो मच. दिस मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस, यू नो, जब आप किसी आर्टिस्ट को यू नो इनकरेज करते हैं. और आप आर्टिस्ट को क्या, हम लोग जब रेडियो पे बात करते हैं और आप हमें मिलते हैं, आप हमें प्यार से गले लगाते हैं, और जब आप हमसे मिलते हैं ना, मैं कहती हूँ वी अर्न दैट. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Akashica.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: वैसे न्यूज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो काफ़ी मेजर जो बैंक्स हैं वो इस समय डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक इज थिंकिंग ऑफ रेजिंग दी ऑफिशियल कैश रेट OCR दिस वीक, बट ये वेडनेसडे को पता चलेगा एक्चुअली कि क्या होता है. दी करेंटली OCR जो हमारा है वो सेट है 2.25 और इसका अगला रिव्यू 27 तारीख को यानी कि परसों होने वाला है. बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये डिसीजन जो है ये कुछ मॉनिटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट के साथ जुड़ने वाली है, जहाँ पर रिजर्व बैंक जो हैं ये कुछ फोकस करने वाले हैं फॉर द इकोनॉमी एंड यू नो सिग्नल फॉर फ्यूचर इंटेंशंस. ऐसे में क्या लेआउट, क्या ग्राउंड वर्क किया जाने वाला है जहां OCR हाइक हो सकता है. अब भाई OCR अभी हाइक नहीं हुआ तो जुलाई में क्या लगता है कि यह हाइक हो जाएगा. फाइनेंशियल मार्केट की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है, लेकिन करेंटली जो प्राइसेस हैं इन बिटवीन 100 टू 125 बेसिक पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं ओवर द कमिंग ईयर्स. तो क्या लगता है आपको कि क्या ये इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ये डिसीशन जो है ये जो है अभी कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी वजह से देखते हैं कि ये थर्ड बजट जो थर्सडे के दिन निकोला विलस जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर ये देने वाली हैं, क्या उससे उस पर फ़र्क पड़ सकता है या नहीं, वी विल गेट टू नो. बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये OCR जो है आपके लिए यह हर बार आता है और हमेशा चेंजेस जब लेकर आता है तो कुछ लोगों के लिए राहत होती है, कुछ लोगों के लिए फायदा होता है.
4: Drive show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
7: अच्छा आप दिलजीत तो
6: आए आए बताओगे यार.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. King's Birthday Sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku. पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
8: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी ओल्ड टुगेदर ओकलैंड.

रेस्क्यू मी रिसाइकल में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, यू नो हमारे फ्रूट्स घर पर आ जाते हैं और जब हमारे फ्रूट्स घर पर आते हैं ना, उसके बाद एक अलग सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि भाई इन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करो। कभी कभी ये जो फ्रूट्स होते हैं आपको लगता है ओह अब इनका तो ये तो वेस्टेज हो गई, अब इन्हें हम क्या करें, इनका हम कैसे वो करें, तो बनाना सॉफ्ट हो जाते हैं या पेयर्स जो होते हैं वो फिर थोड़े थोड़े ऐसा लगता है गलने लग रहे कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको बेक कर सकते हैं, यू नो लाइक जैसे मफिन और बनाना ब्रेड होती है, ठीक इसी तरह से आप कुछ कर सकते हैं और इनको सिमर कर सकते हैं एक पॉट में जिसमें थोड़ा सा आपने दालचीनी डाल दी और फिर कुछ एक वार्म फ्रूट सॉस या जाम जैसा इसको आप बना सकते हैं। सो ज़रूर इसको ट्राई करें, हो सकता है कभी कभी कब कुछ रिसाइकल के आइडियाज़ होते हैं, रीयूज़ करने के आइडियाज़ होते हैं वो हम लोगों के माइंड से निकल जाते हैं और आप कहते हैं अरे ये तो मुझे पता है। थैंक यू काशिका फॉर रिमाइंडिंग मी।

तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार। काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार। आने वाला हफ्ता आपके लिए और भी दमदार, जोरदार और शानदार बनाए। बस एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिस समय, उस समय कहा था बुरा वक्त जब आता है ना सब कुछ छीन लेता है, तो चाहे वो आपकी हंसी हो, भरोसा हो या अपनों का कोई भी एक एहसास हो, वो भी आपसे छीन लेता है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स ट्राई एंड यूटिलाइज आर टाइम। ठीक है, इसी नोट पे अभी के लिए चलती हूँ। कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। ये हफ्ता आपके लिए और भी जोरदार, दमदार और शानदार बना रहे। केतन कमिंग अप नेक्स्ट विद लंच बॉक्स, इनका साथ जरूर दीजिएगा। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। बाय।